बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप।

कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब। दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी बड़े एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है तिरुनेलवेली से।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

0: बम बम भोले की शरणम, शिव शंकर की शरणम और शिव सदा सहाय रहे। आपने सुना प्रोग्राम शिव भक्ति धारा और इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही थी जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। बहुत आभार धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जू रानू 16। पहले गीत में अर्जू रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: इसको ज्वाइन करें।
1: महान ऐसा दे रहे थे गीत, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जुन रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्जुन रानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना। और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं, ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्जुन रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत स्मूलियन के साथ अर्चु रानू।

360 के साथ अर्जु रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्जु रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जु रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें
1: दे रहे थे गीत तो आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर, भूमिका सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना, पहले कहा था हम न करेंगे प्यार और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमीन गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानु 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार प्रोग्राम में आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्चु रानू 16। पहले गीत में अर्चु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से सुन।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में। आपकी आवाज आपकी पहचान।

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जू रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्चु रानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं। ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्जुन रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत स्मूलियन के साथ।

360 के साथ अर्जु रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्जु रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जु रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें,
1: आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर, भूमिका सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

0: प्यार।
1: अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना। पहले कहा था हम न करेंगे प्यार, और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमीन गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानु 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार। प्रोग्राम में आवाज सुन तो तू है गीत मेरा।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज, आपकी आवाज आपकी पहचान। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज के नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित हैं श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर त्रिवेदी।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: रही श्वेता नायर त्रिवेदी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
2: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकालकर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तो है धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मनई लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसो पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती।

0: रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला, आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भिड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा, नाना, भैया, नानी, मामी, भौजी, बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी। जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहां मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाव, जेके देखे को होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। दुधुआ बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहां इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुंचाया। पड़ोसियों ने गरम राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियां मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गांव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गांव के लोग मुंह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गया, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा तो हर महतारी बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे कि मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखत हो बहनी, हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसके अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी है तब का तब देख जाई, अब ही चल तू दोनों महतारी पूत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कब्र में तो हर महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरे ही कह के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नाही माई, महतारी बाप को तिरही करे का फर्ज लड़का का होला। पहले तू मर जाती तो तोर तिरही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे, क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोकता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत के बात कहाँ से ले आईली? अभी तो हम 100 वर्ष जी अब, हा। और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
1: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकारां रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: अपना शहर, अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया? ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम?
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
4: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। ऐसे ही लम्हों को बटोर कर आपके लिए लाए हैं हम इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए हमारे साथ श्री ओपी शर्मा। मेरा मन सुकून पाता है जब ये दिल कोई गीत गुनगुनाता है, क्योंकि संगीत मानव जीवन की एक मधुर धारा है, जज्बातों की भाषा है। तो आज इसी भाषा के एक वैज्ञानिक से है हमारी बातचीत। 1998 में सारेगामा शो का मेगा फाइनल जीतने वाले अपने एल्बम से संगीत की दुनिया में ऐसे छाए कि यश चोपड़ा ने उन्हें साइन किया वीर जारा के लिए। आपको याद होगी वो कव्वाली,
6: जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ,

0: आया तेरे दर पर दीवाना, तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना। आया तेरे दर पर दीवाना।
1: जी हाँ, ये पुरकशिश आवाज जिसमें रागदारी भी है और रूहदारी भी, प्रिंस ऑफ गजल अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद वकील साहब की। नमस्कार मोहम्मद वकील
0: नमस्कार सुषमा जी, आप कैसे हैं?
1: जी। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज को सुनकर और भी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: सुकून सा मिल गया आपकी आवाज और ये
0: बहुत
1: सुर
0: शुक्रिया
1: सुन के। जी।

0: आज जब सुरों की होती है तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि वो कौन सी उम्र थी जब आप में सुरों की समझ पैदा होने लगी, संगीत आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया।
1: इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपके जितने भी लोग मुझे आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, संगीत की समझ तो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रोज रियाज करते हैं तब भी हम पूरी तरह संगीत को नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, संगीत पसंद जो आपने फरमाया, वो हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरी पैदाइश हुई, वो एक ऐसा परिवार जिन्होंने संगीत की इबादत की है। और जो जितने भी हमारे पूर्वज गुजरे हैं सबने भारतीय संगीत की सेवा की है, और उसी कदम पर, उसी विरासत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। और जो मेरे नाना जी थे, स्वर्गीय उस्ताद मोहम्मद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब भी बहुत बड़े फनकार थे महाराजा राम सिंह जी के जमाने में। उसके बाद
0: जी
1: फिर मुझे संगीत की शिक्षा मिली पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से। तो माहौल संगीत का मिला, तो इसलिए माहौल से इंसान को काफी फर्क पड़ता है। माहौल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों प्रभाव डालते हैं। तो बचपन से ही आंखें खोली तो संगीत का माहौल आसपास देखा, तो संगीत ये समझ लीजिए कि बचपन से ही पसंद बन गया।
0: बिल्कुल, आपके कानों में अजान के साथ साथ संगीत भी गूंजा, ये हम मानते हैं। तो वो एक ऐसा वक्त था मोहम्मद वकील जी, जब जबरदस्त रियाज पर ध्यान दिया जाता था, तो तब क्या मन करता था उस छोटे से मोहम्मद वकील का कि रियाज करूं या खेलने जाऊं बाहर दोस्तों के साथ?
1: जी देखिए, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आंखें खुली तो संगीत ही देखा और सुना। तो जो मेरे दोनों गुरुजी हैं वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे, मेरी उम्र काफी कम थी जैसा उन्होंने मुझे बताया। तो उस वक्त तो एक शागिर्द थे जब जिनको वो कुछ याद कर रहे थे अपनी कंपोजिशन, तो मैं भी कमरे में आके बैठ गया रूम में।
0: अच्छा,
1: तो उनसे कहा सिखाने के बाद कि भाई अब कल आप आइए और कल हमें सुनाइएगा। तो जब वो तो उसके बाद मैंने मुझे याद हो गई और मैं उसको थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लग गया अकेले में। तो उस्ताद जी ने चुपचाप से सुन लिया। तो नेक्स्ट डे जैसे वो शागिर्द आया तो बोले बेटा कुछ सुनाओ। उनको याद नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहा सुनाओ तो मुझे याद हो चुकी थी। तो
0: वाह।
1: उन्होंने उन्होंने फिर देखा कि इसको शौक है, तो बाकायदा सिखाना शुरू की। तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब आपको बचपन से ही आपको किसी चीज की अगर आदत हो जाए तो फिर वो हमेशा रहती है। और रियाज तो सुषमा जी, बड़े बड़े उस्तादों का, पंडितों का कहना है कि ये संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज रियाज करना पड़ता है, रोज अपने काम को ठीक करना होता है, उसमें परफेक्शन आए इसके लिए ही रियाज जरूरी है।
0: बहुत उसको पॉलिश करना
1: जी
0: होता है और हर दिन करना
1: जी
0: होता है। एकदम
1: जी
0: सही
1: जी
0: कहा आपने।
1: जी
0: गुरुओं की
1: जी
0: बात आपने की, मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब, दो बहुत ही बड़े नाम आपने लिए। गजल की दुनिया को महकाया है उन्होंने
1: जी
0: और आप उनके शिष्य रहे हैं। उस समय गुरु शिष्य परंपरा भी बिल्कुल अलग थी, तो कैसी थी
1: जी
0: वो और कौन कौन आपके गुरु रहे जिनकी वजह से गायकी का ये जो फन है वो आपने अपनाया?
1: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा इसलिए जरूरी है कि ये संगीत का जो सब्जेक्ट है इसमें पहले तो सबसे पहले गॉड गिफ्ट होना चाहिए। अगर आपको भगवान ने, अल्लाह ने आपको सुर दिया है, तो फिर गुरु का काम जो होता है कि उसको संवारना, उसको ठीक करना, उसको दिशा देना। और ये जो शब्द है गुरु, ये संस्कृत का शब्द है, और गुरु के जो मतलब है वो अंधेरा दूर करने वाला। तो गुरु गुरु आपको बताते हैं कि भाई ये राग है, ये सिस्टम है, ये ग्रामर है, ऐसे आपको गाना है, ऐसे करेंगे तो ये राग बनेगा। तो जो भी अपना एक सिस्टम है संगीत का, क्योंकि 10 थाट 12 सुर 22 श्रुतियों पर हमारा संगीत टिका हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि गुरु एक ही होना चाहिए। जो लोग बहुत सारे गुरु चेंज करते हैं ना, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिसगाइड वाला या थोड़ा कंफ्यूजन वाला चक्कर ज्यादा है। लेकिन लेकिन मेरे गुरु एक ही हैं, वो हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, जिन्होंने संगीत सिखाया और संगीत सिखाते हैं, और हमेशा मैं संगीत सीखता रहूंगा। तो ये परंपरा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गुरु के बगैर काम करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, एक मार्गदर्शन करने वाला बहुत जरूरी है
1: जी
0: और आप उसको दिल से गुरु मान लेते हैं तो फिर आपकी
1: जी
0: आवाज बहुत जादू क्रिएट करती है, ये
1: जी
0: आपने प्रूव कर दिया। और ये एक
1: जी
0: इबादत है, ये आपने ये बिल्कुल सही कहा। गायन के सफर का वो पहला मकाम हम जानना चाहेंगे जब लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया, मतलब आपके आपने जो सम्मान प्राप्त किया, लोगों के दिलों में एक खास जगह आपने बनाई, वो कब हुआ?
1: देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों की शुरुआत आकाशवाणी जयपुर से हुई है और मेरी भी शुरुआत

0: आकाशवाणी जयपुर से हुई है। 1991 में पहली बार आकाशवाणी से गाया और वो आकाशवाणी मेरे लिए हमेशा बहुत एक इज्जत का एक मकाम रखता है कि जिससे मेरी शुरुआत हुई। और मुझे याद है सुषमा जी के मेरा बड़ा तकलीफ का टाइम था और वो जो बी ग्रेड का जो चेक मिलता था 600 रुपीज का, उससे मेरे 6 महीने का गुजारा होता था। तो वो आकाशवाणी शुरुआत हुई, इसलिए आकाशवाणी को मैं हमेशा बड़ी इज्जत देता हूँ। कभी भी किधर भी गा रहा हूं मैं, अगर आकाशवाणी से मुझे बुलावा आता है तो मैं सारे काम छोड़ के पहले आकाशवाणी पे आता हूँ और गाता हूँ। तो ये तो रहा शुरुआत का सफर। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बड़ा जो चेंज आया वो जब आया कि 1997 में जब सारेगामा में ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया जयपुर में, तो मैं वहां ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और नवंबर नवंबर 1997 में मैंने पहली बार सारेगामा में पार्टिसिपेट किया और उसका फाइनल जीता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ही सारेगामा का एक मेगा फाइनल होने वाला है जो बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल क्योंकि जो आदमी फाइनल जीत चुका होता है वो ऑलरेडी अच्छा सिंगर होता है। तो
1: जी
0: फाइनलिस्ट का आपस में मुकाबला था और उससे ज्यादा बड़ा जो काम था वो ये था कि वो जो जजेस की जो पैनल थी, जो इन सबको जज करने वाली थी, हम सबको जज करने वाली थी, वो ऐसे महान हिंदुस्तान के लोग थे जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। और पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, अनिल विश्वास साहब, खयाम साहब, ओपी नैयर जी, नौशाद साहब, कल्याणजी आनंद जी साहब, जगजीत सिंह साहब, परवीन सुल्ताना जी, राजकुमारी जी, ये हमारे जजेस थे। और इन लोगों ने मुझे मेगा फाइनल विनर चुना और मुझे ट्रॉफी दी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जब जजेस का सम्मान किया गया कंपटीशन के बाद, तो जगजीत सिंह साहब को जो शॉल नारियल दिया गया था, वो शॉल और नारियल जगजीत सिंह साहब ने मुझे दिया कि मैं तुम्हें देता हूँ। मेगा फाइनल जीतने के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए।
1: बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो आपने नाम लिए हैं वो एक दिग्गज रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक की बात हो, सुगम संगीत की बात हो, हर क्षेत्र में वो दिग्गज नाम है। और वाकई आपने सही कहा कि उनसे उनको देखने के लिए हम तरस जाते हैं, और
0: जी
1: ऐसे जजेस का आपने दिल जीता, तो जयपुर को वाकई आपने एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया आपकी आवाज के साथ साथ। आपके एल्बम्स ने संगीत की दुनिया में एक विशेष जगह बनाई, क्योंकि आपने ये भी बताया था बातचीत के दौरान कि जगजीत सिंह साहब ने भी आपको थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिया इस क्षेत्र में। वो कैसे हुआ था?
0: जी एल्बम्स मेरे जब मेगा फाइनल हमारा हो गया तो हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था सारेगामा फाइनल्स का। उस एल्बम का नाम था सपने। और उस एल्बम में जो मैंने नज्म गाई थी वो एक भाईचारे को एक बढ़ावा देती है। निदा फाजली साहब की नज्म थी कि दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है। तो ये नज्म बहुत मशहूर हुई थी और आज भी लोग महफिल में मुझसे इस नज्म को जरूर सुनते हैं। तो वो एक सपने, पहला हमारा हमारा सपना था जो सपने एल्बम रिलीज हुआ था। वो उस्ताद अलरखान खान साहब ने, नौशाद साहब ने और ओपी नैयर साहब ने इसको रिलीज किया था। उसके बाद मेरे
1: वाह,
0: अब तक 20 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं। और आप यकीन मानिए सुषमा जी के मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और यहाँ मुझे जितना प्यार, मोहब्बत और सम्मान मिला है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भारत में तो आपको
0: और
1: बहुत प्यार मिला है, आपके सपने सच
0: जी
1: हुए हैं, तो वाकई बहुत
0: जी
1: खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन इसके अलावा
0: जी
1: आपने इंटरनेशनली भी बहुत सम्मान प्राप्त किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा, अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस के द्वारा। वो कैसा
0: जी जी
1: एक्सपीरियंस था?
0: जी मैं एक बात बीच में और करना चाहूंगा जो आपकी हमारी हो रही थी, उसके बाद फिर मैं सवाल पे आता हूँ कि देखिए सारेगामा जब मेरा मेगा फाइनल चल रहा था, काफी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कई लोगों ने नमाज पढ़ी। और एक परिवार है मुंबई में बदरायू वैष्णव साहब का, जो गुजराती हैं, गुजराती नागर ब्राह्मण हैं, और 27 साल से मुझे अपने घर पे बम्बई में रखते हैं। और जब कभी भी नवरात्रि का टाइम होता है तो मंदिर की स्थापना होती है तो मेरे भजन से शुरू करते हैं। और उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि ये समझ लीजिए कि वो मेरे मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं है। अभी 13 फरवरी को उनका देहांत हुआ, लेकिन यकीन मानिए अभी भी उनका परिवार, वो और उनकी वाइफ और उनके बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। तो उन लोगों से बड़ा बड़ा मुझे उनके एहसान है मुझ पे। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ हमेशा उन लोगों के लिए जिन सब लोगों ने मुझे आज तक प्यार आशीर्वाद दिया है, कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: तो अब रहा सवाल आपका, तो देश विदेश में सम्मान की बात, मैंने बहुत सारे देशों में परफॉर्म किया है। जो इंडियन एम्बेसी रियाद है वहाँ 2 से 3 बार गाया है मैंने अपनी एम्बेसी में, और 2 बार मैंने गाया है यूके में बर्मिंगम इंडियन एम्बेसी में। उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, और 1.5 घंटा मुझे दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने बहुत प्यार से सुना तो वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे शशांक विक्रम साहब, उन्होंने इशारा दिया कि आप गाते जाइए। और जब मैंने
1: अच्छा,
0: मैंने शो खत्म किया तो स्टैंडिंग ओवेशन था, पूरी पब्लिक ने खड़े होके मेरे लिए तालियां बजाई और मेरे मेरे आंखों में आंसू थे कि मतलब इन लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सम्मान वाली बात थी। और वैसे तो मैं कई जगह गाया है, बहुत सारे देशों में गाया है, दुबई में, बेल्जियम में, मस्कत से मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, और उसके अलावा हांगकांग में भी गाया है, कुवैत में, बहरेन में। तो अगर अपने अपने देश के बाहर आपको इस तरह के सम्मान प्राप्त होते हैं तो आपको एक हौसला मिलता है, क्योंकि सम्मान मिलने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि मुझे और कुछ अच्छा करते रहना है।
1: बिल्कुल, सभी के दिलों में आपकी खास जगह है। जैसा आपने उदाहरण दिया उस फैमिली का, मतलब एक मिसाल है, गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे देश की, उसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी। हम बात करना चाहेंगे अब उन पलों की जब यश चोपड़ा जी ने आपको अपनी फिल्म के गीतों के लिए चुना। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताएं।
0: जी मदन मोहन साहब, ग्रेट मदन मोहन साहब एक ऐसे संगीतकार गुजरे हैं कि जिनका संगीत सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, और इतनी इतनी रूहधारी, इतना सोल उनके संगीत में कि मतलब वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसा सा काम किया जो उनके उनके बेटे हैं मदन मोहन साहब के बड़े, उनका नाम है संजीव कौली साहब, तो
1: जी
0: वो यशराज फिल्म्स में CEO थे और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मोहम्मद वकील, यश चोपड़ा साहब भी चाहते हैं कि एक फिल्म बना रहे हैं मेरे पिताजी के, वो गीत जो उन्होंने कंपोज तो किए थे लेकिन वो फिर उनकी जाने के बाद इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो
1: अच्छा,
0: उन गीतों पे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों उस्ताद जी और तुम इस कव्वाली को गाओ, और यश जी से मेरी बात भी हो गई, और आप लोग बॉम्बे आ जाइए। बॉम्बे जब पहुंचे तो यश चोपड़ा साहब की 2 बातें मैं सुषमा जी आपको और तमाम सुनने वालों को बताना चाहूंगा, कि इतने बड़े आदमी थे वो, लेकिन इतने विनम्र थे, इतने डाउन टू अर्थ थे, कि उनकी बंगलों पे जब रिहर्सल हुई इस कव्वाली की तो वो सुनते रहे कि हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरा सीन सुन लीजिए, सीन क्या है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा गा रहे हो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन उनकी जो उनके संस्कार थे, उनकी जुबान थी, उनका जो लहजा था वो ये था कि आप इसको मेरा सीन को सुन लीजिए। तो सीन सुनने के बाद समझ में आया कि ओ ये तो इस गाने की फीलिंग अलग है, फिर
1: क्या एक्सप्रेशन
0: ये
1: उसमें डालना है। बिल्कुल।
0: क्या एक्सप्रेशन चाहिए जय। तो फिर उन्होंने हम लोगों ने याद किया, और जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन जब रिकॉर्ड हो चुकी कव्वाली, तो संजीव कौली साहब ने फोन किया, यश जी अब आप आ सकते हैं। तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त था, और जैसे ही यश चोपड़ा साहब एम्पायर स्टूडियो में आए, वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट में मुंबई, तो उन्होंने संजीव कौली साहब को एक बात बोली जो जिससे हम सबको सीखने को मिलता है कि आदमी बड़ा ऐसा नहीं होता कि उसका पैसा आ जाए, नाम हो जाए, शोहरत नहीं, बड़ा इंसान होता है अपने व्यक्तित्व से। तो उन्होंने संजीव कौली साहब से कहा कि संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है प्लीज। जबकि वो बॉस थे, इतने बड़े आदमी थे, वो बोलते हैं मुझे ये मंगा दो, वो मुझे मंगा दो, वो सब कुछ उनके लिए हाजिर हो जाता, लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। तो ये उनकी उदारता थी। फिर वो रिकॉर्ड हुई कव्वाली और वो इतने खुश हुए, फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से इसको रिलीज भी किया, और आज ऐसी कोई महफिल नहीं है हमारी, चाहे देश में गाऊं या विदेश में गाऊं, जहां वो कव्वाली ना।
1: बिल्कुल, बहुत ही दिल को छूने वाली है वो कव्वाली, और जिस एक्सप्रेशन से आप गाते हैं। तो बिल्कुल, आपने एक हम्बलनेस की बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और जब व्यक्तित्व की बात आती है तो हम कहेंगे कि आपका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है कि आप उतने ही हम्बल हैं आज भी, जब पहली बार आकाशवाणी आए थे और आज तक आप में वो चीज कायम है। बात आपके गायन की जब होती है तो हम उसमें पाते हैं बहुत गहराई, सूफी स्टाइल हो, गजल हो, गीत हो, खासकर लाइव शोज में आप ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स और लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग हैं दोनों विधाएं। आपको किसमें ज्यादा मजा आता है और क्या आप फर्क महसूस करते हैं एक परफॉर्मेंस में और प्रेजेंटेशन के हिसाब से?
0: जी आपने बहुत खुद ने बहुत अच्छी बात बोली सुषमा जी, क्योंकि आप खुद बहुत साल से आकाशवाणी पे हो और आपने खुद ने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र में, आपको आप खुद भी गाती हैं तो आप समझ सकती हैं। देखिए ये दोनों अलग विधाएं है तो संगीत ही, लेकिन ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाते हैं वो टेक्निकल चीज ज्यादा है, आपको माइक से कौन से शब्द को क्लोज करना है, सॉफ्ट लाउड का जो खेल है ना, ये कौन सी लाइन आपकी हाई ऑक्टेव में जा रही, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है लाउड गाना, ये टेक्निक टोटल अलग है। लेकिन संगीत जो जो लाइव परफॉर्मेंस की बात है, लाइव को मैं ज्यादा एंजॉय इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि लाइव म्यूजिक में जो लोग डेली रियाज करते हैं उनके गाने में परफेक्शन पैदा होता है, तो लाइव में जो कुछ भी हो गया वो हो गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कोई भी चीज अगर आपकी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, बार बार सुधार सकते हैं, हर बार सुधार सकते हैं, लेकिन लाइव में जो आप करते हैं वो जो हो गया वो हो गया, वो ये ऐसा है जैसे हवा में गांठ लगाने जैसा। लेकिन मैं ज्यादा लाइव को बहुत इंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि जब अच्छे सुनने वाले आपको सुनने आते हैं, और अभी अभी 7 अप्रैल को मेरा जवाहर कला केंद्र ने एक प्रोग्राम किया था, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि उस दिन मैंने कोई फरमाइश पे नहीं गाया, मैंने जो कुछ भी मेरी अपनी, क्योंकि 20 से ज्यादा एल्बम्स मेरे अब तक रिलीज हो चुके हैं, तो मैंने जो कुछ भी गाया वो अपनी गाई हुई गजलें गाई, और वहाँ ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे सुना तो मेरे लिए इतना सुखद था कि मुझे लग रहा था मैं गाता रहूं। तो लाइव गाने को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूं, ऐसा ये नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग को इंजॉय नहीं करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो भी है वो हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन लाइव में जो एक मजा है वो एक अलग ही बात है।
1: बिल्कुल, वो जो एहसास वो अनुभूति होती है कि सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आप देख पाते हैं, एकदम सही आपने फरमाया।
0: बिल्कुल, और ऑडियंस की वजह से कलाकार का वजूद है।
1: बिल्कुल, और आपने कहा कि आपका मन कर रहा था आप गाते चले जाएं, तो सुनने वाले भी यही सोचते हैं कि आप गाते चले जाएं और हम सुनते चले जाए। मोहम्मद वकील को किसकी आवाज पसंद है या किसकी गायकी को मोहम्मद वकील साहब पसंद करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं?
0: नहीं, ये सब देखिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, और वो एक शेर है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ धन्यवाद। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि जब ये इतने डाउन टू अर्थ हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो इंसान को विनम्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटिकल, उसको उसके नेचर में होना चाहिए कि वो सबसे झुक के मिले। तो जो आपका ये सवाल है ये बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो बहुत सारी विधाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है। मैं अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो मैं अपने बचपन से, जब बहुत छोटा था तब से मैं उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, इन लोगों को मैं सुनता हुआ आया हूँ, और मुझे आज भी हर बार इनको सुन के कुछ नया सीखने को मिलता है। कह रहे इन्होंने तो ये तो हर पिछली बार सुना था तो ये चीज तो मैंने नोटिस की नहीं, ये तो अलग तरह से गाई है। और फिल्म म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म म्यूजिक में मुझे मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, इनको सब जितनी बार सुनो उतना मजा आता है। आज की अगर दौर की बात करें तो सोनू निगम साहब हैं, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, इन लोगों को सुन के बहुत मजा आता है। वैसे तो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ अपने गुरुओं से, उन्हीं को सुनता हूँ, लेकिन उनके बाद मैं इनको गजल की बात करूं तो गजल में सबसे ज्यादा मैं मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब को, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने जगजीत सिंह साहब के साथ जिंदगी के बहुत वक्त गुजारा है। मैं 5 बार उनके साथ काम किया है, 3 बार मैंने स्टेज शेयर किया है, बॉम्बे में, राजकोट में और गुजरात में। राजबब्बर साहब जी, शुक्रिया, राजबब्बर साहब का टीवी सीरियल था जिसका यूट्यूब पे अभी भी आप सुन सकते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। तो जगजीत सिंह साहब के लिए उनके डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने एक क्लासिकल बंदिश गाई थी, वो भी मैंने गाई साथ में। एक मनीषा अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जयपुर की हैं, तो उन्होंने एक एल्बम बनाया था आओ नी पधारो मारे देश, जिसमें बहुत सारे फनकार थे, जिसमें उस्ताद अहमद हसन मोहम्मद हसन साहब थे, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी भी थे, गुलाबो जी थी, रूप कुमार राठौड़ साहब थे जगजीत सिंह साहब के साथ, उसमें भी मैंने गाया।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे उनकी भी आवाज बड़ी पसंद है।
1: बहुत से पलों को आपने याद कर लिया। और जब आपको ये अवार्ड्स मिले, जैसे दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, आरडी बर्मन पंचम सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राइजिंग स्टार, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ गजल, मतलब प्रिंस ऑफ गजल, तो ये जो सम्मान थे जिनसे आपको नवाजा गया, इनसे जुड़ी हुई कोई खास पल, कोई खास याद जो आपको अभिभूत करती है आज भी जब आप उस वक्त को अपने जहन में दोहराते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अवार्ड मिलना यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो सबसे बड़ा अवार्ड, हर अवार्ड बराबर होता है, कोई अवार्ड छोटा नहीं होता। सारेगामा मेगा फाइनल का अवार्ड जो मुझे 1998 में मिला, उसमें इतने जजेस ने दिया, उसके बाद फिर जो मुझे अभी जिन जिन अवार्ड का आपने नाम लिया, तो वो जिन लोगों ने मुझे इस लायक चुना, जैसे आर डी बर्मन पंचम सम्मान मुझे 1998 में पठानकोट पंजाब से मिला था, विनोद खन्ना साहब के हाथ से मिला था। और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 60-70 साल के लोगों को मिलता है, तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, यानी कि वो प्राइवेट है, तो वो अवार्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अवार्ड जहां से मिलता है उन लोगों का प्यार है कि वो आपको चुनते हैं, आपको याद रखते हैं कि भाई इसने संगीत क्षेत्र में कुछ किया है। और सबसे बड़ा अवार्ड जो मैं मानता हूँ वो ये है कि लोगों का प्यार, जो लोग आपके संगीत को सुनते हैं, आपके संगीत को प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, तो वो बड़ा अवार्ड होता है कि आपको सुनने वाले प्यार करते हैं। और वो लोग जो अब देखिए, जैसे पंडित जसराज जी ने एक एल्बम भी आया था गुजारिश, वो पंडित जसराज जी को जब मैं देख के आया उस सीडी, तो उन्होंने सुना, और एक हफ्ते बाद जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने फोन पे यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बोलना चाहूंगा एक बात, कि बेटा तुमने जिस तरह से गाया है ना, मैं 7 बार इस एल्बम को सुन चुका हूँ। तो पंडित जसराज जी जैसे बड़े पंडित अगर किसी कलाकार को 7 बार वो सीडी रिपीट करें सुने, तो यानी कितना बड़ा अवार्ड है। फिर उस्ताद सुल्तान खान साहब जब हमारे रिलीज फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने उस सीडी को लिया और वो 1.5 घंटे बाद कॉल किया खान साहब ने कि बेटा मैं अंधेरी से जब बोरीवली अपने घर पे गया, तो मेरे बेटे से कहा इस सीडी लगाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि इसने कैसा काम किया, और मैं ये देखना चाहता हूँ उसने गलती कहाँ की। लेकिन मैं पूरे एल्बम में सुनता रहा और मुझे कोई गलती नजर नहीं आई
1: जी।
0: फिर गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं जो तुमने गाई है गजल मेरी, उसको मैं बार बार सुनता हूँ। तो बड़े पंडित और उस्ताद अगर आपको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो नहीं सकता।
1: बिल्कुल, ये आशीर्वाद जो है ये उन सम्मानों के भी आगे ऊपर बढ़कर है। बहुत सही बात आपने कही है। बहुत तेजी से बदलाव की लहर आई है, ये तो आप भी देख रहे हैं। संगीत का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है, म्यूजिक तैयार करने का तरीका बदल गया है, डिजिटल एक्सपर्टीज, इनोवेशंस, पता नहीं क्या क्या खास हो रहा है। आज स्टूडियो के अंदर बैठकर सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो आज की संगीत की दुनिया में जब पुराने वक्त से आप कंपैरिजन करते हैं, तो क्या बेहतर लगता है और क्या खामियां लगती हैं?
0: देखिए, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा जो लोग इस संगीत को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं उनसे, कि देखिए संगीत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। संगीत को आपको ईमानदारी से अपने गुरु से सीखना है, और ये नहीं समझना कि मैं ही गुरु हो गया, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखने वाली चीज है। तो अगर आप संगीत, मेरे नाना जी बोलते थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, कि अगर गाना सीखो तब तो गाना है, और अगर ना सीखो तो गा ना। और ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जिसमें आपको डे बाय डे सीखना ही है। तो जो आदमी सीख के कोई काम करता है तो वो हमेशा चलता है। अब जहां तक आपने कहा कि बदलाव आए, तो बदलाव ये आया कि आज पहले क्या था कि आपने गा दिया, आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ जहां आपने गाया, वहां पे अगर कुछ गलती हो रही, नहीं सर मैं दोबारा करना चाहता। आजकल कैसा है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्यूनर की वजह से ये हुआ है कि भाई आप क्या करते हैं कि भाई आप ये इसको ऐसे गा दीजिए, हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक करना क्यों, जब हमने अच्छे से संगीत सीखने की कोशिश किए कर रहे हैं तो हम अपने अपने खुद करेंगे ना। तो वो ये जो ये चीज है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज ये, देखिए संगीत का और ड्रामे का कुछ नाता अलग अलग है। आज हमारे टाइम पे, हमारे संगीत के टाइम पे, सारेगामा के टाइम पे क्या था कि जो भी है वो हो रहा है। अब आजकल जिस तरह से पेश किया जाता है कि भाई कोई आदमी रो रहा है कि साहब मुझे तकलीफ है, ये मेरे घर में रोटी नहीं है, मुझे भाई आप आदमी अपने घर की बात बाहर कभी नहीं करता, वो चाहता है कि मेरे घर की बात बाहर ना आए। तो आप अपने संगीत में मेहनत कीजिए ना, आप ड्रामे में मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर आप संगीत में मेहनत करेंगे तो आप आगे आएंगे। और डिजिटल, ये जो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल म्यूजिक, उसमें तो जो आदमी, देखिए तब भी सुषमा जी ऐसा ही है, जो आदमी सीख के काम करता ना उसको तब उस पर भी पसंद किया जाता है। ठीक है, रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से जाता भी है, लेकिन उसकी जिसके पीछे संगीत का बैकग्राउंड है, जिसके पीछे सबक है, इल्म है, वो आदमी जल्दी नहीं जाएगा, वो टिका रहेगा भले उसका नाम देर में हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई का जमाना है, तो हर आदमी ऑटो ट्यून और अलग अलग तरीकों से अपने आप को सबके सामने एक पैकेज बना के प्रेजेंट करने लग गया है। वो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेहनत की आवश्यकता है, रियाज की आवश्यकता है। ये चीजें जो बहुत पुरानी मानी जाती हैं, लेकिन आज भी उनका वजूद है।
0: सही बात है, सही बात है। देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर हमारे हाशमी साहब ने कहा था कि एक बड़े चारों जो मिसरे हैं, चारों लाइन हैं, उनमें बड़ा अच्छा एक सवाल है कि बरसात में कदमों की निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। और मेहनत की बात जब आपने की, तो बिल्कुल, अगर आपको आवाज दी है ईश्वर ने, वो जो ईश्वर की देन है, लेकिन मेहनत से आप इसे पॉलिश कर सकते हैं, हीरे की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं। तो मैं एक कुछ छोटी सी बात ये पूछना चाहूंगी कि एक गायक में क्या क्या बेसिक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके।
0: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पीछे सबक होना चाहिए। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख के किसी काम को करते हैं, चाहे फिर बाद में आप गजल गाएं, भजन गाएं, कवाली गाएं, कुछ भी गाएं, फिल्मी गाना गाएं, तो फिर आपके गाने में परफेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आपके संगीत के पीछे शास्त्रीय संगीत का पूरा सबक होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना एक अंदाज है वो धीरे धीरे करके अपना अंदाज डेवलप होता रहते, सबकी पहचान बने। और आज के दौर में खास तौर से आदमी ये बहुत जरूरी है कि आप अपने है ना नाम पे ध्यान ना दें, क्योंकि चमक धमक आपको बहुत प्रभावित करती है कि अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, हमारा कैसे होगा। नहीं, आप रियाज करो तो राज करोगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा सब्र करें कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा भी होगा, हम अपने मेहनत करते रहें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप ये संगीत के क्षेत्र में
1: मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी हैं। और जो बच्चे इस विधा में अपना नाम चमकाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई खास मशवरा रखना चाहेंगे?
0: यही मशवरा है कि आप गुरु गुरु के प्रति वफादारी रखें, गुरु को समर्पित करते हैं अपने आप को, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, क्योंकि वो जो भी आपको कहेंगे उसमें आपका भला है। क्योंकि माँ बाप और गुरु ये जो कुछ भी आपके लिए सोचते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अपने गुरु से ईमानदारी से सीखें, जितना वो बताते हैं वैसा करते रहें, तो आपका डेफिनेटली आगे जाके नाम होने वाला है।
1: बिल्कुल, नाम होने वाला है, और अगर आप मेहनत से, शिद्दत से उस काम में लगे रहते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, तो प्यार होना भी जरूरी है, शिद्दत होना भी जरूरी है, तभी आप कुछ कमाल पैदा कर पाएंगे।
0: देखिए, संगीत से प्यार वैसे ही होना चाहिए सुषमा जी, जैसे कि आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं। संगीत से वैसे ही प्यार होना चाहिए। अगर आप संगीत से प्यार करोगे तो संगीत आपका होगा, और वरना आप संगीत से प्यार नहीं करेंगे तो आपका संगीत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट भी पूरा मिला तभी आप बहुत कुछ कमाल कर पाए, तो मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर आपकी परिवार वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक हौसला रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आप टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। मुझे याद है कि दो बार मुझे फेल किया गया, तो जान करके किया गया, और वो टाइम ऐसा था जब पैर में बहुत चोट थी, बहुत तकलीफ थी, और पहुंचने के पैसे नहीं होते थे। तो वो टाइम पे दो बार जब फेल किया गया तो आपको निराशा होती है, लेकिन निराशा के बाद आदमी को ये हिम्मत रखनी चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज मैं फेल हो गया तो कल मुझे फिर वापस उठना है। संगीत तो ऐसी चीज है, वो पास फेल वाली चीज है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं। संगीत तो पूजा है, इबादत है, जितनी आप करें उतनी कम है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने जो भी अपने पल उठाए हैं अपनी जिंदगी के, और जिस तरह से ये सभी के सामने रखा है कि कैसे पूरी मेहनत से, चाहे बुरा वक्त भी आया, उसे भी आपने पॉजिटिविटी से आगे आप बढ़ते गए, पॉजिटिव वाइब्स आपने कभी नहीं छोड़ी, तो ये बहुत सीखने की बात है आपके व्यक्तित्व से।
0: शुक्रिया आपका सुषमा जी। ये भी मेरे जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें मैंने की हैं, जैसे कि अभी साजिद वाजिद साहब का काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड संगीत में, बॉलीवुड म्यूजिक में, तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन साजिद भाई ने अभी वाजिद भाई के जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम है तालीम म्यूजिक। तालीम म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है एज ए प्रोजेक्ट हेड, एज ए कंपोजर, कि भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीम के लिए कंपोज करें उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने कंपोज किया है, मेरे लिए सौभाग्य है कि अपने गुरुजी हैं उनके लिए मैंने कंपोज किया, उन्होंने गाया, एमोजन साहब ने, हरिहरन साहब ने गाया है, अनूप बिरोटा जी ने गाया है, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है, शान भाई ने गाया है, पैपोन भाई
1: क्या
0: ने
1: बात
0: गाया है। तो और एक गजल का गुलदस्ता लेकर हम लोग आ रहे हैं, और जो संगीत के सुनने वाले हैं, संगीत को और गजल को प्यार करते हैं, उन सबके लिए वाकई एक तोहफा होगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, तो तालीम म्यूजिक से इसका इंतजार आपको करें और बहुत जल्दी आप अच्छा कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल, तो तालीम म्यूजिक को सुनने का बिल्कुल आप हम ध्यान रखेंगे और आप अपनी आवाज के जरिए सबके दिलों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं वो इसी तरह बिखरती रहे, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब ये चाहेंगे कि अपने संगीत के जरिए आप सभी को एक खास मैसेज जो देना चाहें।
0: देखिए मुझे ग्राम राजस्थानी साहब के चार मिसरे बड़ी पसंद है, हमारे देश के लिए, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि हमारा भारत देश हमेशा खुशहाल रहे, हम सब भारत देशवासी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें, और सब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसी बना रहे, मैं दुआ करता हूँ। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लाइन मेरी जो गजल थी फर्स्ट सोलो एल्बम की, वो मैं सुनाऊं सुषमा जी, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: ये कसक दिल की दिल में जो भी रह गई, ये कसक दिल की दिल में जो भी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में जो भी रह गई।
1: आपके एल्बम्स ने संगीत की दुनिया में एक विशेष जगह बनाई, क्योंकि आपने ये भी बताया था बातचीत के दौरान कि जगजीत सिंह साहब ने भी आपको थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिया इस क्षेत्र में, वो कैसे हुआ?
0: जी एल्बम्स मेरे जब मेगा फाइनल हमारा हो गया, तो हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था सारेगामा फाइनल्स का, उस एल्बम का नाम था सपने, और उस एल्बम में जो मैंने नज्म गाई थी वो एक भाईचारे को एक बढ़ावा देती है, निदा फाजली साहब की नज्म थी, कि दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है। तो ये नज्म बहुत मशहूर हुई थी, और आज भी लोग महफिल में मुझसे इस नज्म को जरूर सुनते हैं। तो वो एक सपने, पहला हमारा हमारा सपना था जो सपने एल्बम रिलीज हुआ था, वो उस्ताद अलरखा खान साहब ने, नौशाद साहब ने और ओपी नैयर साहब ने इसको रिलीज किया था। उसके बाद मेरे अब तक 20 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं, और आप यकीन मानिए सुषमा जी के मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और यहाँ मुझे जितना प्यार मोहब्बत और सम्मान मिला है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भारत में तो आपको बहुत प्यार मिला है, आपके सपने सच हुए हैं, तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन इसके अलावा आपने इंटरनेशनली भी बहुत सम्मान प्राप्त किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा, अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस के द्वारा, वो कैसा एक्सपीरियंस था?
0: जी मैं एक बात बीच में और करना चाहूंगा जो आपकी हमारी हो रही थी, उसके बाद फिर मैं सवाल पे आता हूँ कि देखिए सारेगामा जब मेरा मेगा फाइनल चल रहा था, काफी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कई लोगों ने नमाज पढ़ी, और एक परिवार है मुंबई में भद्रायु वैष्णव साहब का, जो गुजराती हैं, गुजराती नागर ब्राह्मण है, और 27 साल से मुझे अपने घर पे बम्बई में वो रखते हैं, और जब कभी भी नवरात्रि का टाइम होता है तो मंदिर की स्थापना होती है तो मेरे भजन से शुरू करते हैं, और उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि समझ लीजिए कि वो मेरे मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं है। अभी 13 फरवरी को उनका देहांत हुआ, लेकिन यकीन मानिए अभी भी उनका परिवार, वो और उनकी वाइफ और उनके बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उन लोगों से बड़ा बड़ा मुझे उनके एहसान है मुझ पे, और मैं एक शेर पढ़ता हूँ हमेशा उन लोगों के लिए जिन सब लोगों ने मुझे आज तक प्यार आशीर्वाद दिया है, कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: तो अब रहा सवाल आपका, तो देश विदेश में सम्मान की बात, मैंने बहुत सारे देशों में परफॉर्म किया है। जो इंडियन एम्बेसी रियाद है वहाँ 2 से 3 बार गाया है मैंने एम्बेसी में, और 2 बार मैंने गाया है यूके में बर्मिंगम इंडियन एम्बेसी में। उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, और 1.5 घंटा मुझे दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने बहुत प्यार से सुना तो वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे शशांक विक्रम साहब, उन्होंने इशारा दिया कि आप गाते जाइए। और जब मैंने मैंने शो खत्म किया तो स्टैंडिंग ओवेशन था, पूरी पब्लिक ने खड़े होके मेरे लिए तालियां बजाई और मेरे आंखों में आंसू थे कि मतलब इन लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सम्मान वाली बात थी। और वैसे तो मैं कई जगह गाया है, बहुत सारे देशों में गाया है, दुबई में, बेल्जियम में, मस्कत से मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, और उसके अलावा हांगकांग में भी गाया है, कुवैत में, बहरेन में। तो अगर अपने अपने देश के बाहर आपको इस तरह के सम्मान प्राप्त होते हैं तो आपको एक हौसला मिलता है, क्योंकि सम्मान मिलने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि मुझे और कुछ अच्छा करते रहना है।
1: बिल्कुल, सभी के दिलों में आपकी खास जगह है। जैसा आपने उदाहरण दिया उस फैमिली का, मतलब एक मिसाल है गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे देश की, उसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी। हम बात करना चाहेंगे अब उन पलों की जब यश चोपड़ा जी ने आपको अपनी फिल्म के गीतों के लिए चुना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताएं।
0: जी मदन मोहन साहब, ग्रेट मदन मोहन साहब एक ऐसे संगीतकार गुजरे हैं कि जिनका संगीत सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, और इतनी इतनी रूहदारी, इतना सोल उनके संगीत में कि मतलब वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसा सा काम किया जो उनके उनके बेटे हैं मदन मोहन साहब के बड़े, उनका नाम है संजीव कौली साहब, तो वो यशराज फिल्म्स में CEO थे और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मोहम्मद वकील, यश चोपड़ा साहब भी चाहते हैं कि एक फिल्म बना रहे हैं मेरे पिताजी के, वो गीत जो उन्होंने कंपोज तो किए थे लेकिन वो फिर उनके जाने के बाद इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो उन गीतों पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों उस्ताद जी और तुम इस कव्वाली को गाओ। और यश जी से मेरी बात भी हो गई और आप लोग बॉम्बे आ जाइए। बॉम्बे जब पहुंचे तो यश चोपड़ा साहब की 2 बातें मैं सुषमा जी आपको और तमाम सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि इतने बड़े आदमी थे वो, लेकिन इतने विनम्र थे, इतने डाउन टू अर्थ थे कि उनकी बंगलों पे जब रिहर्सल हुई इस कव्वाली की तो वो सुनते रहे कि हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरा सीन सुन लीजिए, सीन क्या है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा गा रहे हो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन उनकी जो उनके संस्कार थे, उनकी जुबान थी, उनका जो लहजा था वो ये था कि आप इसको मेरा सीन को सुन लीजिए। तो सीन सुनने के बाद समझ में आया कि ओह ये तो इस गाने की फीलिंग अलग है,
1: क्या एक्सप्रेशन
0: चाहिए। तो फिर उन्होंने हम लोगों ने याद किया, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन जब रिकॉर्ड हो चुकी कव्वाली तो संजीव कौली साहब ने फोन किया, यश जी अब आप आ सकते हैं। तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त था, और जैसे ही यश चोपड़ा साहब एम्पायर स्टूडियो में आए वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट में मुंबई, तो उन्होंने संजीव कौली साहब को एक बात बोली जो जिससे हम सबको सीखने को मिलता है कि आदमी बड़ा ऐसा नहीं होता कि उसका पैसा आ जाए, नाम हो जाए, शोहरत नहीं, बड़ा इंसान होता है अपने व्यक्तित्व से। तो उन्होंने संजीव कौली साहब से कहा कि संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है प्लीज। जबकि वो बॉस थे, इतने बड़े आदमी थे, वो बोलते हैं मुझे ये मंगा तो वो मुझे मंगा तो वो सब कुछ उनके लिए हाजिर हो जाता, लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। तो ये उनकी उदारता थी। फिर वो रिकॉर्ड हुई कव्वाली और वो इतने खुश हुए, फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से इसको रिलीज भी किया, और आज ऐसी कोई महफिल नहीं है हमारी, चाहे देश में गाऊं या विदेश में गाऊं, जहां वो कव्वाली ना।
1: बिल्कुल, बहुत ही दिल को छूने वाली है वो कव्वाली और जिस एक्सप्रेशन से आप गाते हैं। तो बिल्कुल आपने एक हम्बलनेस की बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और जब व्यक्तित्व की बात आती है तो हम कहेंगे कि आपका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है कि आप उतने ही हम्बल हैं आज भी, जब पहली बार आकाशवाणी आए थे और आज तक आप में वो चीज कायम है। बात आपके गायन की जब होती है तो हम उसमें पाते हैं बहुत गहराई, सूफी स्टाइल हो, गजल हो, गीत हो, खासकर लाइव शोज में आप ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स और लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग हैं दोनों विधाएं। आपको किसमें ज्यादा मजा आता है और क्या आप फर्क महसूस करते हैं एक परफॉर्मेंस में और प्रेजेंटेशन के हिसाब से?
0: जी आपने बहुत खुद ने बहुत अच्छी बात बोली सुषमा जी, क्योंकि आप खुद बहुत साल से आकाशवाणी पे हैं और आपने खुद ने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र में।

0: पैदा होता है। तो लाइफ में जो कुछ भी हो गया वो हो गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कोई भी चीज अगर आपकी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, बार बार सुधार सकते हैं, हर बार सुधार सकते हैं। लेकिन लाइव में जो आप करते हैं वो जो हो गया वो हो गया, वो ये ऐसा है जैसे हवा में गांठ लगाने जैसा। लेकिन मैं ज्यादा लाइव को बहुत इंजॉय कर पाता हूँ, क्योंकि जब अच्छे सुनने वाले आपको सुनने आते हैं। और अभी अभी 7 अप्रैल को मेरा जवाहर कला केंद्र ने एक प्रोग्राम किया था, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि उस दिन मैंने कोई फरमाइश पे नहीं गाया। मैंने जो कुछ भी मेरी अपनी, क्योंकि 20 से ज्यादा एल्बम्स मेरे अब तक रिलीज हो चुके हैं, तो मैंने जो कुछ भी गाया वो अपनी गाई हुई गजलें गाई। और वहाँ ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे सुना तो मेरे लिए इतना सुखद था कि मुझे लग रहा था मैं गाता रहूं। तो लाइव गाने को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूं। ऐसा ये नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग को एंजॉय नहीं करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो भी है वो हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन लाइव में जो एक मजा है वो एक अलग ही बात है।
1: बिल्कुल, वो जो एहसास वो अनुभूति होती है कि सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आप देख पाते हैं। एकदम सही आपने फरमाया,
0: बिल्कुल ऑडियंस की वजह से कलाकार का वजूद है।
1: बिल्कुल, और आपने कहा कि आपका मन कर रहा था आप गाते चले जाएं, तो सुनने वाले भी यही सोचते हैं कि आप गाते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। मोहम्मद वकील को किसकी आवाज पसंद है, या किसकी गायकी को मोहम्मद वकील साहब पसंद करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं।
0: नहीं, ये सब देखिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। और वो एक शेर है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ धन्यवाद। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि जब ये इतने डाउन टू अर्थ हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो इंसान को विनम्र होना क्या ही, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटिकल, उसको उसके नेचर में होना चाहिए कि वो सबसे झुक के मिले। तो जो आपका ये सवाल है ये बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो बहुत सारी विधाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है। मैं अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो मैं अपने बचपन से, जब बहुत छोटा था तब से मैं उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, इन लोगों को मैं सुनता हुआ आया हूँ। और मुझे आज भी हर बार इनको सुन के कुछ नया सीखने को मिलता है कि अरे इन्होंने तो ये तो हर पिछली बार सुना था तो ये चीज तो मैंने नोटिस की नहीं, ये तो अलग तरह से गाई है। और फिल्म म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म म्यूजिक में मुझे मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, इनको सब जितनी बार सुनो उतना मजा आता है। आज की अगर दौर की बात करें तो सोनू निगम साहब हैं, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, इन लोगों को सुन के बहुत मजा आता है। वैसे तो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ अपने गुरु से, उन्हीं को सुनता हूँ। लेकिन उनके बाद मैं इनको गजल की बात करूं तो गजल में सबसे ज्यादा मैं मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब को, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने जगजीत सिंह साहब के साथ जिंदगी के बहुत वक्त गुजारा है। मैं 5 बार उनके साथ काम किया है, 3 बार मैंने स्टेज शेयर किया है, बॉम्बे में, राजकोट में और गुजरात में। राजबब्बर साहब जी, शुक्रिया, राजबब्बर साहब का टीवी सीरियल था जिसका यूट्यूब पे अभी भी आप सुन सकते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। तो जगजीत सिंह साहब के लिए उनके डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने एक क्लासिकल बंदिश गाई थी, वो भी मैंने गाई साथ में। एक मनीषा अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जयपुर की हैं। तो उन्होंने एक एल्बम बनाया था आओ नी पधारो मारे देश, जिसमें बहुत सारे फनकार थे, जिसमें उस्ताद मोहम्मद हसन साहब थे, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी भी थे, गुलाबो जी थी, रूप कुमार राठौड़ साहब थे जगजीत सिंह साहब के साथ, उसमें भी मैंने गाया।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे उनकी भी बड़ी पसंद है।
1: बहुत से पलों को आपने याद कर लिया। और जब आपको ये अवार्ड्स मिले, जैसे दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, आरडी बर्मन पंचम सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राइजिंग स्टार, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ गजल, मतलब प्रिंस ऑफ गजल, तो ये जो सम्मान थे जिनसे आपको नवाजा गया, इनसे जुड़ी हुई कोई खास पल, कोई खास याद जो आपको अभिभूत करती है आज भी जब आप उस वक्त को अपने जहन में दोहराते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अवार्ड मिलना यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो सबसे बड़ा अवार्ड, हर अवार्ड बराबर होता है, कोई अवार्ड छोटा नहीं होता। सारेगामा मेगा फाइनल का अवार्ड जो मुझे 1998 में मिला, उसमें इतने जजेस ने दिया, उसके बाद फिर जो मुझे अभी जिन जिन अवार्ड्स का आपने नाम लिया, तो वो जिन लोगों ने मुझे इस लायक चुना, जैसे आर डी बर्मन पंचम सम्मान मुझे 1998 में पठानकोट पंजाब से मिला था, विनोद खन्ना साहब के हाथ से मिला था। और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 60-70 साल के लोगों को मिलता है, तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड यानी कि वो प्राइवेट है, तो वो अवार्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अवार्ड जहां से मिलता है उन लोगों का प्यार है कि वो आपको चुनते हैं, आपको याद रखते हैं कि भाई इसने संगीत क्षेत्र में कुछ किया है, और

0: सबसे बड़ा और जो मैं मानता हूं वो ये है कि लोगों का प्यार, जो लोग
1: बिल्कुल
0: आपके संगीत को सुनते हैं, आपके संगीत को प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, वो तो वो बड़ा अवार्ड होता है कि आपको सुनने वाले प्यार करते हैं। और वो लोग जो अब देखिए, जैसे पंडित जसराज जी ने एक एल्बम भी आया था गुजारिश, वो पंडित जसराज जी को जब मैं दे के आया उस सीडी, तो उन्होंने सुना, और एक हफ्ते बाद जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने फोन पे यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बोलना चाहूंगा, एक बात कि बेटा तुमने जिस तरह से गाया है ना, मैं 7 बार इस एल्बम को सुन चुका हूँ। तो पंडित जसराज जी जैसे बड़े पंडित अगर किसी कलाकार
1: बहुत
0: को वो 7 बार वो सीडी रिपीट करें सुने, तो यानी कितना बड़ा अवार्ड है। फिर
1: फैक्ट
0: उस्ताद सुल्तान खान साहब जब हमारे रिलीज फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने उस सीडी को लिया और वो 1.5 घंटे बाद कॉल किया खान साहब ने कि बेटा मैं अंधेरी से जब बोरीवली अपने घर पे गया तो मेरे बेटे से कहा ये सीडी लगाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि इसने कैसा काम किया और मैं ये देखना चाहता हूँ उसने गलती कहाँ की। लेकिन मैं पूरे एल्बम में सुनता रहा और मुझे कोई गलती नजर नहीं आई।
1: जी
0: फिर गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं जो तुमने गाई है गजल मेरी, उसको मैं बार बार सुनता हूँ। तो बड़े पंडित और उस्ताद अगर आपको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो नहीं सकता।
1: बिल्कुल, ये आशीर्वाद जो है ये उन सम्मानों के भी आगे ऊपर बढ़कर है। बहुत सही बात आपने कही है।
0: जी
1: बहुत तेजी से बदलाव की लहर आई है, ये तो आप भी देख रहे हैं। संगीत का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है, म्यूजिक तैयार करने का तरीका बदल गया है, डिजिटल
0: जी
1: एक्सपर्टीज, इनोवेशंस, पता नहीं क्या क्या खास हो रहा है। आज स्टूडियो के अंदर बैठकर सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो आज की संगीत की दुनिया में जब पुराने वक्त से आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या बेहतर लगता है और क्या खामियां लगती हैं?
0: देखिए, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा जो लोग इस संगीत को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं उनसे, कि देखिए संगीत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। संगीत को आपको ईमानदारी से अपने गुरु से सीखना है, और ये नहीं समझना कि मैं ही गुरु हो गया, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखने वाली चीज है। तो अगर आप संगीत, मेरे नाना जी बोलते थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, कि अगर गाना सीखो तब तो गाना है, और अगर ना सीखो तो गा ना। और ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जिसमें आपको डे बाय डे सीखना ही है। तो जो आदमी सीख के कोई काम करता है तो वो हमेशा चलता है। अब जहां तक आपने कहा कि बदलाव आए, तो बदलाव ये आया कि आज पहले क्या था कि आपने गा दिया, आपको थोड़ा सा भी, अगर आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ जहां आपने गाया वहां पे अगर कुछ गलती हो रही, नहीं सर मैं दोबारा करना चाहता। आजकल कैसा है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्यूनर की वजह से ये हुआ है कि भाई आप क्या करते हैं कि भाई आप ये इसको ऐसे गा दीजिए हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक करना क्यों, जब हमने अच्छे से संगीत सीखने की कोशिश की कर रहे हैं तो हम अपने अपने खुद करेंगे ना। तो वो ये जो ये चीज है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज ये, देखिए संगीत का और ड्रामे का कुछ नाता अलग अलग है। आज हमारे टाइम पे, हमारे टाइम संगीत के टाइम पे, सारेगामा के टाइम पे क्या था कि जो भी है वो हो रहा है। अब आजकल जिस तरह से पेश किया जाता है कि भाई कोई आदमी रो रहा है कि साहब मुझे तकलीफ है, ये मेरे घर में रोटी नहीं है मुझे भाई आप आदमी अपने घर की बात बाहर कभी नहीं करता, वो चाहता है कि मेरे घर की बाहर ना आए। तो आप अपने संगीत पे मेहनत कीजिए ना, आप ड्रामे पे मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर आप संगीत पे मेहनत करेंगे तो आप आगे आएंगे। और डिजिटल ये जो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल म्यूजिक, उसमें तो जो आदमी, देखिए तब भी सुषमा जी ऐसा ही है, जो आदमी सीख के काम करता है ना उसको तब उस पर भी पसंद किया जाता है। ठीक है रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से जाता भी है, लेकिन उसकी जिसके पीछे
1: बिल्कुल
0: संगीत, संगीत का बैकग्राउंड है, जिसके पीछे सबक है, इल्म है, वो आदमी जल्दी नहीं जाएगा, वो टिका रहेगा भले ही उसका नाम देर में हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई का जमाना है, तो हर आदमी ऑटो ट्यून और अलग अलग तरीकों से अपने आप को सबके सामने एक पैकेज बना के प्रेजेंट करने लग गया है। वो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेहनत की आवश्यकता है, रियाज की आवश्यकता है। ये चीजें जो
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: पुरानी मानी जाती हैं लेकिन आज भी उनका वजूद है।
0: सही बात है, सही बात है। देखिए एक बड़ा अच्छा शेर हमारे हाशमी साहब ने कहा था कि एक बड़े चारों जो मिसरे हैं, चारों लाइन हैं, उनमें बड़ा अच्छा एक सवाल है कि बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। और मेहनत की बात जब आपने की तो बिल्कुल, अगर अगर आपको आवाज दी है ईश्वर ने, वो जो ईश्वर की देन है, लेकिन मेहनत से आप इसे पॉलिश कर सकते हैं हीरे की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं। तो मैं एक कुछ छोटी सी बात ये पूछना चाहूंगी कि एक गायक में क्या क्या बेसिक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके।
0: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पीछे सबक होना चाहिए। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख के किसी काम को करते हैं, चाहे फिर बाद में आप गजल गाएं, भजन गाएं, कव्वाली गाएं, कुछ भी गाएं, फिल्मी गाना गाएं, तो फिर आपके गाने में परफेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आपके संगीत के पीछे शास्त्रीय संगीत का पूरा सबक होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना एक अंदाज है वो धीरे धीरे करके अपना अंदाज डेवलप होता रहते, सबकी पहचान बने। और आज के दौर में खास तौर से आदमी ये बहुत जरूरी है कि आप अपने है ना नाम पे ध्यान ना दें, क्योंकि चमक धमक आपको बहुत प्रभावित करती है कि अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, हमारा कैसे होगा। नहीं, आप रियाज करो तो राज करोगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा सब्र करें कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा भी होगा, हम अपने मेहनत करते रहें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप ये संगीत के क्षेत्र में
1: मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी हैं। और जो बच्चे इस विधा में अपना नाम चमकाना चाहते हैं उनके लिए आप कोई खास मशवरा रखना चाहेंगे?
0: यही मशवरा है कि आप गुरु गुरु के प्रति वफादारी रखें, गुरु को समर्पित करते हैं अपने आप को, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, क्योंकि वो जो भी आपको कहेंगे उसमें आपका भला है। क्योंकि माँ बाप और गुरु ये जो कुछ भी आपके लिए सोचते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अपने गुरु से ईमानदारी से सीखें, जितना वो बताते हैं वैसा करते रहें, तो आपका डेफिनेटली आगे जाके नाम होने वाला है।
1: बिल्कुल, नाम होने वाला है अगर आप मेहनत से शिद्दत से उस काम में लगे रहते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। तो प्यार होना भी जरूरी है, शिद्दत होना भी जरूरी है, तभी आप कुछ कमाल पैदा कर पाएंगे।
0: देखिए, संगीत से प्यार वैसे ही होना चाहिए सुषमा जी, जैसे कि आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, बीवी से करते हैं। संगीत से वैसे ही प्यार होना चाहिए। अगर आप संगीत से प्यार करोगे तो संगीत आपका होगा, और वरना आप संगीत से प्यार नहीं करेंगे तो आपका संगीत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट भी पूरा मिला तभी आप बहुत कुछ कमाल कर पाए। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर आपकी परिवार वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक हौसला रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आप टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। मुझे याद है कि दो बार मुझे फेल किया गया, तो जान करके किया गया, और वो टाइम ऐसा था जब पैर में बहुत चोट थी, बहुत तकलीफ थी, और पहुंचने के पैसे नहीं होते थे। तो वो टाइम पे दो बार जब फेल किया गया तो आपको निराशा होती है, लेकिन निराशा के बाद आदमी को ये हिम्मत रखनी चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज मैं फेल हो गया तो कल मुझे फिर वापस उठना है। संगीत तो ऐसी चीज है, वो पास फेल वाली चीज है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं। संगीत तो पूजा है, इबादत है, जितनी आप करें उतनी कम है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने जो भी अपने पल उठाए हैं अपनी जिंदगी के और जिस तरह से ये सभी के सामने रखा है कि कैसे पूरी मेहनत से, चाहे बुरा वक्त भी आया उसे भी आपने पॉजिटिविटी से आगे आप बढ़ते गए, पॉजिटिव वाइब्स आपने कभी नहीं छोड़ी, तो ये बहुत सीखने की बात है आपके व्यक्तित्व से।
0: शुक्रिया आपका। सुषमा जी, ये भी मेरे जो सुनने वाले उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें मैंने की है, जैसे कि अभी साजिद वाजिद साहब का काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड संगीत में, बॉलीवुड म्यूजिक में, तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन साजिद भाई ने अभी वाजिद भाई के जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम है तालीम म्यूजिक। तालीम म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है एज ए प्रोजेक्ट हेड, एज ए कम्पोजर, की भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीम के लिए कम्पोज करें उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने कंपोज किया है, मेरे लिए सौभाग्य है कि अपने गुरुजी हैं उनके लिए मैंने कंपोज किया, उन्होंने गाया है, अहमद हुसैन मोहसिन साहब ने, हरिहरन साहब ने गाया है, अनूप बिरोटा जी ने गाया है, कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है, शान भाई ने गाया है, पैपोन भाई ने गाया है, तो और एक गजल का गुलदस्ता लेकर हम लोग आ रहे हैं। और जो संगीत के सुनने वाले हैं, संगीत को और गजल को प्यार करते हैं, उन सबके लिए वाकई एक तोहफा होगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, तो तालीम म्यूजिक से इसका इंतजार आपको करें, और बहुत जल्दी आप अच्छा कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल, तो तालीम म्यूजिक को सुनने का बिल्कुल आप हम ध्यान रखेंगे, और आप अपनी आवाज के जरिए सबके दिलों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं वो इसी तरह बिखरती रहे, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम ये चाहेंगे कि अपने संगीत के जरिए आप सभी को एक खास मैसेज जो देना चाहें।
0: देखिए, मुझे ग्राम राजस्थानी साहब की चार मिसरे बड़ी पसंद है हमारे देश के लिए, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि हमारा भारत देश हमेशा खुशहाल रहे, हम सब भारत देशवासी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें, और सब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसी बना रहे, मैं दुआ करता हूँ। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लाइन मेरी जो गजल थी फर्स्ट सोलो एल्बम की, वो मैं सुनाऊं सुषमा जी, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई।
1: क्या बात है मोहम्मद वकील जी, आपकी आवाज इसी तरह हमारे जहन में गूंजती रहे और सबके बीच खुशबू बिखेरती रहे, ये हम दुआ करते हैं आपके लिए। थैंक
0: बहुत बहुत
1: यू
0: शुक्रिया
1: सो
0: आपने
1: मच,
0: सुषमा जी, याद किया मुझे, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी।
1: थैंक यू।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आज की इस खूबसूरत शाम का आपका मेजबान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जयपुर रेडियो की इस बेहद सुरीली गीतमाला में, जिसका शीर्षक है आओ झूमे गाए। आज की महफिल का आगाज करने से पहले चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, और जिस राह पे मुड़ती थी अपनी साइकिल साथ में चांद भी मुड़ता था, जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, जब बरगद की जटाएं भी हमी से झूला झूलती थी, आलम कुछ ऐसा था दोस्तों कि तितलियां भी हमसे खेलती थी, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, और ख्वाब भी इतने सतरंगी थे कि उनमें हम परियों से भी बोलते थे। सचमुच दोस्तों, न रोने की कोई वजह थी और न हंसने का कोई बहाना, न रोने की कोई वजह थी और ना ही हंसने का कोई बहाना, आज महसूस होता है कि कितना सुहाना था वो जमाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की, मां की लोरी से यादों की डोरी तक जो सफर हम सब ने तय किया है, आइए आज इसे फिर से दोहराते हैं इस खूबसूरत गीतमाला के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सुनते हैं 1975 की फिल्म मिली का एक बेहद खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है योगेश जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने, और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आज इस खूबसूरत गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपनी सुरीली आवाज में गिरिजा जी और तनुजा जी।

दोस्तों, इस सुरमई सफर में जो अगला गीत अब हम सुनेंगे उसका अंदाज ही कुछ निराला है। ये गाना है पापा और मम्मी के प्यार के बारे में। और वैसे भी दोस्तों, 1971 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज का अंदाज भी कुछ निराला ही था। बतौर निर्देशक ये रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म थी। बतौर लेखक ये सलीम जावेद के हिट जोड़ी की पहली फिल्म थी। और दोस्तों, यही फिल्म बनी संगीतकार जयकिशन जी के जिंदगी की आखिरी फिल्म। तो चलिए सुनते हैं हतरक जयपुरी द्वारा लिखित, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में किशोर जी और श्वेता जी।

दोस्तों चलो ये तो सुन ली हमने मम्मी और पापा के प्यार की कहानी, लेकिन कई बार मां बाप के आपसी रिश्ते बच्चों की मासूमियत पे एक गहरा घाव भर देते हैं। कुछ यही दिखाने की कोशिश की थी 1980 के दशक में आई हुई मूवी मासूम ने। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो धूम मचा ही दी थी और कई सारे अवार्ड समेट लिए थे, लेकिन खास करके इसके गाने इतने मशहूर हुए कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं गीतकार गुलजार के शब्दों में आरडी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक ऐसा ही मासूमियत भरा गाना, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपने सुमधुर आवाज में डॉली जी और हीना जी।

दोस्तों, अब मासूमियत की बात छिड़ ही चुकी है तो जरा सोचिए उस दौर में हम कितने मासूम हुआ करते थे कि चिड़िया, कौवा, हाथी, भालू, बंदर अपने दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही मासूमियत को छलकाया था 1957 की एक फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं ने, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करता है ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलके उन्हें अपने मन की बात सुना सके। तो चलिए संगीता जी और कविता जी की लुभावनी आवाज में हम भी खो जाते हैं चिड़िया, कौवे, भालू और बंदर की दुनिया में। आइए सुनते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का एक गाना जिसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से नवाजा है दत्ताराम वाडकर जी ने।

दोस्तों, जब हम भालू, बंदर, चिड़िया, कौवे जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिल चुके हैं, तो हम बचपन के उस एक दोस्त को भला कैसे भुला सकते हैं, जिसके बिना हमारी एक भी रात नहीं गुजरती थी, जिसकी कहानियां सुना के माँ हमें सुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चांद की। इतना गहरा था हमारा रिश्ता कि कई गानों ने तो उसे हमारा मामा बना दिया था। कभी हम उसके घर जाते और वहां अपनी दुनिया बसाते, तो कभी उसको धरती पे अपनी दुनिया में बुलाते। आज हमारे होनहार गायक नमित सिन्हा जी और धन्या संतोष जी ऐसी ही एक चांद के सफर पे आपको लेके जाएंगे। तो लीजिए, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म जख्मी का ये गाना। बोल है गौहर कानपुरी के और संगीत दिया है बप्पी लहरी जी ने।

दोस्तों, उन दिनों हमारे खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे। छोटी छोटी शरारतों से हमें बड़ी खुशियां मिलती थी, जैसे माँ को बिना बताए डिब्बे से लड्डू चुराना, गर्मियों की छुट्टियों में खेतों में टहलते टहलते पेड़ से आम या अमरूद चुराना, कागज का हवाई जहाज बना के चुपके से उसे क्लास में उड़ाना, या फिर जीप की अजीब सी पहेलियां बुझा के अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना। क्या नहीं समझे? अरे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ, समझ समझ के तुम नहीं समझे, मेरी समझ से तुम ना समझो। कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं आज के हमारे अगले गायक राजेंद्र जी और मनीषा जी, फिल्म फना के इस गाने के साथ, जिसे लिखा है प्रसून जोशी जी ने और संगीत दिया है जतीन ललित जी ने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी का पीका कपड़ा।
2: कपड़ा?

दोस्तों, ऐसी पहेलियां बुझा के शरारत और मनोरंजन करने का सिलसिला सिर्फ आज के दौर का नहीं है और ना ही ये मनोरंजन या बच्चों तक सीमित है। अब यही देखिए ना, हमारे वेदों के ऋषियों ने भी नासतीय सूक्त जैसी काव्यात्मक पहेलियां बुझा के पूरे संसार की रचना का पाठ हमें पढ़ाया। खैर दोस्तों, इतना दूर नहीं जाते। अब यही देखिए, 1955 में कवि शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसी ही पहेलियां लिखी। शंकर जयकिशन जी ने उसे संगीत दिया, लता जी और मुकेश जी ने उसे गाया और बस होना क्या था, बन गया एक सुपरहिट गाना जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि रशिया, चीन, इजराइल जैसे कई देशों में हिट हुआ। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यही गाना मनप्रीत जी और अनूप जी की मनमोहक आवाज में।

0: बोलो क्या
1: तुम?
0: हम
2: ऐसे बेहद लुभावने गीत सुनने के बाद दोस्तों दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर बड़े होकर हमने क्या पाया, या फिर यूं कहिए कि जितना भी पाया शायद उससे कई ज्यादा खोया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया तूने बचपना छीन के बता। सचमुच दोस्तों वो दिन भुलाए नहीं भूलते, और भाई इतनी सुनहरी यादों को भुलाए भी क्यों। शायद यही कहना चाहते हैं हमारे अगले गीत के गायक MD त्यागी जी और गायत्री जी। तो लीजिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं शकील बदायूनी द्वारा लिखित और नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म दीदार का ये गाना।

चलिए दोस्तों, बचपन का ये सुहाना सफर तय करते करते अब हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहां थोड़ी बहुत जमाने की समझ हमें भी आती है और थोड़ी दुनियादारी भाई हम भी सीख लेते हैं। रोने और हंसने के अलावा अब हमें रूठना और अपनी बात मनवाना भी भले खूब आता है। ये उम्र का वो नाजुक पड़ाव है दोस्तों जो आपके भविष्य की नींव बनती है। यहां कोई अच्छा सलाहकार मिले तो आपकी जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ती है। हमारे अगले गायक बिश्वजीत जी और विद्या जी भी शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए। तो सुनते हैं उन्हीं की सुमधुर आवाज में फिल्म अपना देश का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन जी ने।

अब देखिए ना दोस्तों, बचपन की यादों की बौछारों में भीगते भीगते वक्त कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए हैं इस सुरीली महफिल के अंजाम तक। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम दौड़ना तो भली भांति सीख गए हैं, पर शायद जीने का मकसद कहीं छूट गया है। और शायद यही जिंदगी का फलसफा सिखाती है हमें यह गजल, जिससे आज हम अपनी सुरीली महफिल की समाप्ति करेंगे। सुदर्शन फाकीर की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां, जिन्हें संगीत और सुरों से नवाजा है जगजीत सिंह जी ने, आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे दो सुरीले होनहार फनकार, बिमल जी और अपर्णा जी।

0: दोस्तों, वक्त का तकाजा यह कहता है कि अब आपसे अलविदा कहने का समय हो गया। मैं आशा करता हूं कि जितनी खुशियां इन गीतों को आप तक पहुंचाने में हमें मिली, उतनी ही खुशियां आपको भी इन्हें सुनने में आई होंगी और आप भी अपने बचपन की सुनहरी यादों में खो गए होंगे। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे किसी मुसाफिर की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्ते की तरह। तो चलिए, इसी ख्याल के साथ मैं मंगेश, आपकी आज की शाम का आपका मेजबान, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर से एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सुनते रहिएगा जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की शाम हम एक ऐसे कलाकार को नमन करेंगे जिन्होंने 38 साल में 100 से ज्यादा हिंदी और बंगाली भाषी फिल्मों को ना सिर्फ संगीत दिया पर गाया भी। हम बात कर रहे हैं सचिन देव बर्मन जी की, जिनको हम सब एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। एसडी बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे। उनके पिता नवदीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे और उनकी माता निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। एसडी बर्मन का झुकाव शुरू से ही संगीत की तरफ था और उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में बंगाली लोकगीत गाकर अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म 1935 की एक बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाया भी और एक्टिंग भी की। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1957 की एक सुपरहिट फिल्म 9-2-11 से, जिसमें देवानंद और कल्पना कार्तिक थीं। इस फिल्म के बेहद खूबसूरत गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए, जिनकी महक आज तक बरकरार है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं मनु मृदुल और आबा जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट से है, जिसमें देवानंद और नूतन थी। इस फिल्म के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और इस फिल्म का मधुर संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने। लीजिए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1962 की फिल्म बात एक रात की से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं दीपशिखा जी और किरण जी की मधुर आवाज में।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने से है, जिसमें देवानंद के साथ नूतन थी। इस फिल्म के गीत लिखे हसरत जयपुरी जी ने और फिल्म का मधुर संगीत दिया एसटी बर्मन जी ने। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग में नूतन जी को एक ग्लास में दिखाया गया जब उन दिनों कंप्यूटर्स नहीं थे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, पर विजय आनंद जी ने वो कर दिखाया। लीजिए इसी फिल्म का ये मधुर गीत सुनते हैं संगीता जी और एमडी त्यागी जी की मधुर आवाज में।
1: चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों न मिट जाए, फिर भी मैं
2: फिर भी मैं

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। फिल्म तेरे घर के सामने के सारे गीत खूब सुपरहिट हुए। अब जो गीत आप सुनेंगे वो इसी फिल्म से है जिसे कुतुब मीनार के अंदर से शूट किया गया था। गाना दो दो बार शूट किया गया क्योंकि एक लीडर जो फॉरेन कंट्री से आए हुए थे उनको शूटिंग दिखानी थी और उन्हें नाराज नहीं करना था। आइए उसी गीत को सुनते हैं जूही जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। आइए अगला गीत सुनते हैं एसडी बर्मन की एक सुपरहिट फिल्म गाइड से। इस फिल्म में देवानंद जी के साथ वहीदा रहमान थी। ये देवानंद जी की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को 14 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेट्रा। ये एक फिल्म थी जो हिंदी में बनने के बाद इंग्लिश में भी बनाई गई। इस फिल्म का खूबसूरत म्यूजिक दिया गया एसडी बर्मन जी के द्वारा। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं संजीव कुमार जी और संजय हारने जी की मधुर आवाज में।

दोस्तों, गाइड फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो आर के नारायण के 1958 के द गाइड नॉवल के ऊपर बेस थी। इसके सभी गाने खूब सुपरहिट हुए और इनका म्यूजिक दिया था एस डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, मेरी और मुकेश गुलानी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत आप सुनेंगे 1967 की फिल्म जुएल थीफ से, जिसमें देवानंद और विजयंती माला थी। फिल्म का बेहद मस्ती भरा संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने, और आप जो गीत सुनेंगे वो एक इंग्लिश गाना द ब्रिज ऑफ द रिवर क्वाई से प्रभावित है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं वरुण जी और विद्या जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1973 की फिल्म अभिमान से है, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं किशोर जी और गायत्री जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत पेशकश। अगला गीत इसी फिल्म का एक और नायाब गीत है जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा। ये गीत पहले मुकेश जी को गाना था, पर उन्होंने जब मनहर उदास की आवाज में ये गीत सुना तो उसे बदलना ठीक नहीं समझा। आइए इसी गीत को सुनते हैं श्वेता सम्बा सिवन और अनूप शर्मा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। इस फिल्म के रसीले गीत लिखे नीरज जी ने और संगीत से सजाया एसडी बर्मन जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, कविता जी और अनिंदो जी की मधुर।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।

नया साल नई शुरुआत जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्जू रानू के संग लेकर आए हैं हम नया एपिसोड जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। हर दिन रात 8 बजे आप सुनेंगे जयपुर रेडियो की ये खास पेशकश, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस खास प्रोग्राम में अर्जू रानू के संग होंगे बहुत सारे मेल फीमेल सिंगर्स जो अपनी आवाज में आवाज मिलाएंगे।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोग्राम मुंबई म्यूजिक ग्रुप से।
1: हे गाणं गायलंय मुंबई म्युझिक ग्रुपच्या शेखर आणि शुभांगी यांनी।

0: गुजारिश गुजारिश गुजारिश।
1: नमस्कार, मैं पूजा सरमलकर आपके सामने पेश कर रही हूँ ऊपर खुदा सॉन्ग फ्रॉम कच्चे धागे।

नमस्कार, मैं पूजा सरमलकर आपके सामने पेश कर रही हूँ मोरिनी बागामा बोले आधी रात मा सॉन्ग फ्रॉम लम्हे।

आप सुन रहे थे मुंबई म्यूजिक ग्रुप द्वारा प्रस्तुत, म्यूजिक ग्रुप के सिंगर्स द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

0: यू सो मच, बहुत फेवरेट छे मारु आ सॉन्ग।
1: ऑफिशियली डीवा प्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ वर्सेटिलिटी द ग्रेटेस्ट किशोर कुमार साहब, दिस साइड डॉक्टर मनीष कला, एके रुद्रास, प्लीज टू जॉइन।

0: थैंक यू।
1: मुकेश कल्ला को सुन रहे थे आप। इंतहा हो गई

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: परफेक्ट
1: परफेक्ट।

दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

0: नमस्कार, मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में जहां हर मुलाकात में होती है एक कहानी, हर कहानी में होता है एक गीत और हर गीत में छुपी होती है दिल की एक खूबसूरत दास्तान। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि कभी कभी हमारी मंजिल कुछ और होती है और रास्ते हमें कहीं और ले जाते हैं, लेकिन अगर जुनून दिल में जिंदा है तो इंसान अपने उस जुनून को किसी ना किसी रूप में अपने साथ लेकर चलता रहता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत है जो पेशे से डॉक्टर हैं, कॉर्पोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन दिल से आज भी संगीत के वही दीवाने हैं जो बचपन में ऑर्केस्ट्रा की पहली बीट सुनकर उसमें खो जाया करते थे। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर चैतन्य उंडे जी से और जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके परिवार और सबसे बढ़कर उनके संगीत के सफर की कहानी। डॉक्टर चैतन्य, जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, मैं आज बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ आपके स्टूडियो में जश्न सितारा गीत गुफ्तगू इस कार्यक्रम में आके, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये हमारी खुशकिस्मती है चैतन्य जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रूबरू हमसे गुफ्तगू करेंगे और हमें ना सिर्फ आपकी मीठी आवाज में आपके गीत सुनने को मिलेंगे बल्कि हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आपके जिंदगी का सफर और संगीत का सफर कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहां फल्टन में आपका बचपन बीता। तो आपके पिताजी प्रेस रिपोर्टर थे और उन्हीं के कारण आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऑर्केस्ट्रा के पास मिलते थे। तो क्या आपको याद है अपना वो पहला ऑर्केस्ट्रा या वो गीत जिसने आपके मन में संगीत के लिए इतनी गहरी जगह बना ली?

0: जी बिल्कुल याद है सपना जी, वो मेरे लाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट था। वो ऑर्केस्ट्रा बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा असर कर गया मेरे माइंड मन पर, कि
1: जी
0: जहाँ पे मैं म्यूजिक से कुछ सीख पाया हूँ और कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिली है। उस ऑर्केस्ट्रा का नाम था ऑर्केस्ट्रा कलाकार, सुधीर सिन्हा जी उसके निर्देशक थे और प्रोड्यूसर थे। और उस
1: वाह
0: छोटे से ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया था, उसका नाम था कश्मीरा शाह, और उनके साथ मेल सिंगर थे मनोज जी। तो ऑर्केस्ट्रा कलाकार वॉज द फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा तो जो मैंने सुना था, और वो गीत था परदेसी परदेसी जाना नहीं। उस टाइम पे कार्यक्रमों का कुछ लिमिट नहीं होता था, टाइम लिमिट गवर्नमेंट का, तो
1: जी
0: सुबह 3-4 बजे तक भी कार्यक्रम चलते थे। तो रात को
1: जी
0: 2 बजे तक
1: जी
0: मैं जब वहां पे बैठा रहा तो मेरे पापा मुझे बुलाने के लिए आ गए, अरे तेरा दोस्त भी चला गया, कोई नहीं तो अकेला बैठा है। तो मैं खो गया था बस उस ऑर्केस्ट्रा में।
1: तो
0: और
1: तब
0: उस
1: आपकी उम्र
0: गाने
1: क्या रही होगी?
0: तब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में रहूंगा शायद।
1: तो तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में होंगे आप।
0: हाँ उतना ही लगभग।
1: जी, तो आपको बड़ी बारीकियों से सारी डिटेल्स याद हैं अभी तक, इतनी गहरी छाप छोड़ी इस
0: बहुत बहुत मतलब वो गीत ही वैसा था, कम से कम 7-8 बार उस एक गीत को वंस मोर मिला था,
1: क्या बात है।
0: क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी एकदम, कश्मीरा शाह नाम था उनका। आज अगर वो आपका प्रोग्राम सुन रही है तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा।
1: जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये याद है। और मैं वाकई हैरान हुई है सुनकर के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इतना कोमल हो जाता है कि कहीं नहीं पता चलता कौन सा इंसिडेंट हमारे मन पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि हमारी जिंदगी
0: जी
1: की जो
0: बिल्कुल
1: चाल है वो बदल जाती है। बहुत
0: बिल्कुल
1: खूबसूरत। तो उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्टर बनने तक का सफर कैसे किया?
0: मैडम। एक्चुअली तो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, क्योंकि
1: अच्छा
0: बचपन से मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पे एक महानाट्य था, डॉक्टर
1: जी
0: बाबा साहेब पुरंदरे लिखित,
1: जी
0: जानता राजा बोल के। तो
1: जी
0: हम घर के सभी लोग उसके कलाकार थे, तो स्टेज मेरे लिए नया नहीं था। वो लाइट्स, ऑडियंस, हजारों की ऑडियंस रहती थी सामने,
1: जी
0: तो स्टेज का कभी डर नहीं लगा। ये लगता था कि मैं आज कुछ नया करूं स्टेज के ऊपर जाकर, बहुत अच्छा फील करता था जब हजारों लोग मुझे देखते थे। तो ऐसा कुछ खास वो लगा नहीं मुझे कि स्टेज का डर वगैरह वो सब। बट तो वो मेरा एक पैशन बन गया कि मुझे हमेशा हाथ में माइक चाहिए और सामने ऑडियंस चाहिए, स्टेज चाहिए,
1: जी
0: वो सब जहन में आता रहा। तो मैं
1: जी
0: थोड़ा सा मेरा पैशन वो बन गया था कि मुझे स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ करना है। हाँ गाना गाना है ये तब तक फिक्स नहीं हुआ था,
1: जी
0: बट
1: जी
0: कुछ ना कुछ मुझे मिमिक्री करना है, या एक आधा छोटा सा भाषण देना है, या फिर किसी की एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, या छोटी छोटी नाटिका जो हम एक अंक क्या बोलते हैं उसे मराठी में, जो एक अंक का होता है,
1: जी
0: 30-40 मिनट की एक नाटिका होती है, उसमें भी मैंने काम किया है कॉलेज के जमाने में। डायरेक्शन भी किया है उसका, मेरा दोस्त था वो लिखता था, हम लोग उसमें एक्टिंग करते थे, कभी डायरेक्शन का भी मौका मिलता
1: क्या
0: था,
1: बात है, क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो सब भी किया है मैंने। उसके बाद में जब इंटर्नशिप में था तब एक स्टूडियो था मेरे दोस्त दोस्त का, तो आवाज में मेरी बेस होने की वजह से उसने उनको काम मिलते थे, इलेक्शन का हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री या
1: जी
0: नॉन पॉलिटिकल हो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े होते हैं, उसके जो
1: जी
0: सीन होते हैं, ऐतिहासिक सीन वगैरह कुछ करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, तो उसके डायलॉग वगैरह बोलने होते, तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने का भी मौका मिला।
1: अरे वाह,
0: तो वो माइक से मैं दूर नहीं गया कभी, स्टेज और माइक से। वैसे तो बनना मुझे वो था, बट घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो और मेरे पापा ऐसे थे कि देखो, उन्होंने बोला कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, समाज में अच्छी जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं। तो उनका एक सपना था कि देखो, मैंने दूसरों के बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाया है कि ये मेरा दोस्त है, इसके बच्चे के लिए कुछ कर दो वगैरह, बट मेरी एक इच्छा है कि मेरे बेटे की नौकरी के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो
1: बिल्कुल
0: तुमको जो करना है वो करो, बट ऐसा करो जिस क्षेत्र में जाओ मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम जो भी काम करो, जो भी पढ़ाई करो, उस क्षेत्र का टॉप तुमको बन के दिखाना है। बस उनका यही गाइडेंस था मुझे। तो मम्मी की इच्छा थी तो डॉक्टर भी बन गया मैं।
1: जी, तो कहा जा सकता है कि जो आपके पिताजी की जो गाइडेंस थी और जो उनके उसूल थे, उन्होंने भी आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
0: जी बहुत
1: जी, तो इसी के साथ हम आपका गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं चैतन्य जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी का और अपना और अपनी माता जी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण आपको एक साथ प्रैक्टिस और नौकरी दोनों भी करनी पड़ी। तो ये दौर की कोई ऐसी याद जो अभी भी आप भूल ना पाए, वो जो संघर्ष आपने देखा है और जो कठिन वक्त था, उसने आपको क्या सिखाया?
1: सप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन ये जो मैं प्रैक्टिस करता था और नौकरी भी करता था, ये उस टाइम पे मुझे कभी संघर्ष लगा नहीं। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे उस टाइम पे। बट उस टाइम पे कुछ नया सीखने का मौका था। मैं मेरे पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता था, बट मैं हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखता गया मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में। और जो आप जैसे जानते हो, किसी भी डॉक्टर के लिए शुरुआती का दौर इतना आसान नहीं होता है, वेटिंग पीरियड होता है, पेशेंट आने के लिए भी टाइम लगता है आपके पास। तो वो सब पीरियड कम करने के लिए और एजुकेशन लोन की रिस्पांसिबिलिटीज थी, इसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी, नाइट ड्यूटीज करता था मैं
0: जी।
1: और एक प्रैक्टिस भी मैं खुद के लिए भी जो मेरा मुझे एस्टेब्लिश करना था, अपना नाम कमाना करता, क्योंकि मेरे टाउन में मेरे पापा का नाम बहुत बड़ा था
0: जी।
1: तो उनके नाम को भी संभालना था और एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाना था, जैसा मैंने उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, मैंने पहले बताया। तो दोनों भी करता रहा मैं। उसके बाद भी थोड़ा सा पैसे कम पड़ते थे तो एक छुट्टी लेके वीकली एक वीक में पुणे में जाता था, जो कि 110 किलोमीटर अवे है मेरे टाउन से।
0: अच्छा।
1: तो वहां पे जाके वहां पे भी पेशेंट्स देखता था मैं। बट कुछ न कुछ सीखने को मिला वो दोनों चीजों से, प्रैक्टिस
0: तो जो आपकी प्रैक्टिस थी और जो आपकी नौकरी थी, ये आपके होम टाउन में ही थी?
1: जी जी, दोनों एक ही जगह पे
0: जी। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताइए चैतन्य जी, कि आजकल एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं, वो अगर हमने जैसे क्विक रेमेडी कोई लेनी हो, जैसे जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह भी एलोपैथी के अंडर आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती तो डॉक्टर्स को हम खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन दे दो या फिर कुछ ऐसा कर दो कि हमें तुरंत से आराम आ जाए, तो एलोपैथी और होम्योपैथी में आप क्या फर्क पाते हैं?
1: एलोपैथी है जस्ट आपको एक, जैसे आपकी ताले की चाबी खो जाती है ना
0: जी,
1: तो आप कुछ डुप्लीकेट चाबी वगैरह बना के उसको खोल के रूम के अंदर जाना, बस इतना ही है। बट वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए
0: जी।
1: ठीक है, मतलब आप अभी मुझे पेन हो रहा है, मैं टैबलेट ले लूंगी तो दूर हो जाएगा। और होम्योपैथी से टाइम लगता है कुछ चीजों को ठीक होने के लिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसा एलोपैथी के अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट है जो सालों साल भी चलती है, वैसा ही होम्योपैथी के अंदर भी है। होम्योपैथी के अंदर क्या है कि होम्योपैथी के पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं आता है। एक्यूट मतलब मुझे दो दिन से फीवर है, तो उसके लिए कोई आता नहीं है जनरली। पहले पैरासिटामोल लेते हैं, उसके बाद में आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई कंजनेटल हार्ट डिसीज है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, ऐसे बड़े बड़े बीमारी लेके आते हैं जो कि उनको 4-5 साल 10 साल 15 साल से होती है और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 दिन में ठीक होना है।
0: जी जी।
1: जो किसी भी पैथी के लिए पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली ठीक करना। प्लस होम्योपैथी में एक एड ऑन ये है कि उस चीज का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पूरी की पूरी मेडिसिन एक भी केमिकल से नहीं बनती है हमारी।
0: अच्छा जी।
1: पूरे नेचुरल सोर्सेस है होम्योपैथी के, उसी से बनती है और वो आपको पूरी तरह से ठीक करा देती है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कुछ एक्यूट रेमेडीज भी है जो आपको एक्यूट जो आपके इलनेस है, डिसीज है, उसको भी ठीक करती है। एक दिन में, 2 घंटे में भी ठीक करती है, 2-3 दिन में भी ठीक करती है। और क्रॉनिक जो डिसीजेस है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ डिसीजेस है सोराइसिस, जैसे स्किन का डिसीज है, उसमें बहुत सारे, हाँ जी, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, हार्ट तक भी पहुंच सकता है वो। तो एलोपैथी में उसके लिए कुछ परमानेंट ऐसा इलाज तो है नहीं, स्टीरॉयड को छोड़कर।
0: जी जी जी।
1: लेकिन होम्योपैथी में मुझे गर्व है बताने में कि इस बात का प्रॉपर तरीके से इलाज है होम्योपैथी के अंदर।
0: मतलब पेशेंट रखनी चाहिए और डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। तो हम
1: ट्रस्ट करना चाहिए, होम्योपैथी ट्रस्ट का ही एक पार्ट है। जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप डॉक्टर को ट्रस्ट करके जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताओगे, उतना ज्यादा आपको इजी मेडिसिन देने के लिए आपके डॉक्टर को होगा।
0: जी, यहाँ पर मेरी एक और जिज्ञासा है। आजकल ओबेसिटी को भी बहुत बड़ा रोग माना जाता है ना
1: जी।
0: तो एलोपैथी में अगेन अगर हम आए तो इसके कई डॉक्टर्स, या कह दीजिए कि इंडियंस को बहुत आदत होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत लेते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं गूगल पढ़ पढ़ के। तो ओबेसिटी के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो इवन ओजेम्पिक तक ले लेते हैं, जिससे सुना गया है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप
1: लोग
0: क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के कंसर्न में?
1: देखिए, पहले तो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, मैं तो गूगल डॉक्टर को मत रेफर करो ये बोल के
0: जी
1: बोलूंगा,
0: जी
1: क्योंकि गूगल आपको वही रिजल्ट दे देगा जो उसको फीड कराया गया है।
0: जी
1: गूगल एक एआई है जो आपको 10-15 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा साइंस का रूल्स इंजिन्स लगाया होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेगा। बट मेडिकल साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अलग है, हर ताले की चाबी अलग है, जिसका ज्ञान आपके डॉक्टर को ही है। तो
0: जी
1: बिना डॉक्टर के जानकारी के वो मेडिसिन प्लीज मत ले लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि डॉक्टर के लिए एक बीमारी का निदान करना, मतलब डायग्नोस करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उस सिम्टम को रोकना।
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: जैसे सिम्टम को रोकना, पेशेंट का क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, उसको बंद कर दो। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को सर्दी बहने को रोकना ये बीमारी है, सर्दी बहना ये बीमारी नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हो, उसे मारते हो, मारने के बाद भी उसको बाहर फेंकते हो। तो कोई भी चीज जो बुरी है उसको बाहर निकाल के फेंकना ये स्वाभाविक है,
0: जी
1: जो हमारी बॉडी भी वही करती है, जो हमारा वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: वही करता है। जो कुछ डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स वगैरह बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं,
0: जी
1: वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर से गीला होता है, तो वो बाहर इजीली नहीं निकल पाता। तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रिट करती है अंदर से अपने आप, और उसमें वो पूरे डस्ट पार्टिकल, एलर्जेंस, पोलन ग्रेन जो कुछ रहेगा उसको बाहर फेंकने की काम करती है। इसलिए आपकी नाक बहती है, और आप
0: जी
1: क्या करते हो, स्टीरॉयड लेके उसको रोक कर देते हो अंदर। मतलब कॉकरोच तो आपने मार दिया, बट वो बॉडी में ही है आपके, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो
0: जी
1: नाक सिंपल सी बात है जो हर किसी की लाइफ में आती है 2 या 4 महीने में, सर्दी। सर्दी को रोकना उसका इलाज नहीं है, सर्दी को बहने देना, वो चीजें जो खराब है जो बॉडी के बाहर आनी चाहिए उसको बाहर निकलने देना, ये
0: जी
1: उसका तरीका है इलाज का। और
0: जी
1: इसी तरीके से होम्योपैथी इलाज कर दिया।
0: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे श्रोताओं के लिए। तो हमारा भी श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर गूगल के बहकावे में ना आए, और अगर आपको कभी भी कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ना ना कि ओवर द काउंटर अपने आप ही दवाइयां खरीद के अपना खुद का ही इलाज करें। ये बात बहुत गलत रहती है, और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर चैतन्य का एक गीत और लेते हैं।

0: मेरा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि आज आप इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स ऑडिट और लीगल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर की संवेदनशीलता और एक कॉरपोरेट लीडर की निर्णय क्षमता, क्या आपको लगता है कि आपकी मेडिकल पढ़ाई आज भी आपके काम में किसी ना किसी रूप में मदद करती है?
1: जी सपना जी, जरूर मेडिकल, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में।
0: जी
1: हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम को समझना, पेशेंट की बीमारी को समझना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिला है नहीं मिला है वो चेक करना, कुछ बिल बढ़ाने के लिए ये होता है इंडिया में।
0: जी
1: इंडियन माइंडसेट ऐसा है, जिसके पास इंश्योरेंस है उसका थोड़ा सा मैं बिल लगाऊंगा, कहाँ पेशेंट को भी पैसे देने हैं कंपनी दे देगी, तो एग्जरेशन ऑफ बिलिंग होता है वहां पे
0: ये
1: जो
0: बात जो आपने
1: अननेसेसरी।
0: कही है ना डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता
1: जी
0: है कितने ही भारतीय होंगे वो उन लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। किसी अगर जैसे मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, तकरीबन 2 साल पहले मुझे मेरी माता जी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो बेहोश हो गई थी तो उनको थोड़ा हार्ट ट्रबल डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर जो डॉक्टर्स ने मतलब कहा मुझे कि उन्होंने मुझे कहा कि खून की बॉटल भी चढ़ गई है, पर देर वॉज नो मेंशन, उसका कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं था। फिर उनको इस तरह के टेस्ट करवाए गए जो कि लिंक्ड ही नहीं थे उनकी कंडीशन के साथ। तो मैं अल्टीमेटली परेशान होकर मैंने अपनी माताजी को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, घर लेकर आई और वाकई घर में 2-3 दिन के बाद ही उनकी सेहत बहुत सुधर गई। तो ये मुझे लगता है कि जहां पे इंश्योरेंस के क्लेम्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस के अंडर हम एडमिट करवाते हैं पेशेंट्स को, वहां पे हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज्यादती होती है।
1: जी वो तो होगा ही, क्योंकि अभी प्रीवियसली क्या होता था, क्योंकि डॉक्टर के हॉस्पिटल्स होते थे,
0: जी
1: आज कंपनीज के हॉस्पिटल है। हर
0: अच्छा
1: हर डॉक्टर को कंपनी की तरफ से एक टारगेट होता है कि आपकी तरफ से इतना बिजनेस आना ही चाहिए, हम इतने लाखों करोड़ों रुपए की लैब खोल के बैठे हैं, आपकी तरफ से इतना रोज इन्वेस्टिगेशन रेफर होना
0: जी
1: ही,
0: जी जी जी जी
1: इतने रुपए का मेडिसिन आपने लिखना है, हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट चलाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चलाना है, सैनिटरी डिपार्टमेंट चलाना है।
0: जी
1: तो अब नॉर्मल फीवर का पेशेंट है, उसको ग्लोव्स पहनने की क्या जरूरत है, कैप मास्क, वो भी बिल में लिखा जाता है। तो वो सब
0: जी
1: चीजें हमें हेल्थ इंश्योरेंस में एनालाइज करनी पड़ती है, भले ही पैसे पेशेंट के जेब से नहीं जा रहे बट उसके सम इंश्योर से तो जा रहे।
0: जी
1: जब वो
0: बिल्कुल
1: फीवर के लिए अगर 1 लाख 2 लाख रुपए डाल रहा है, तो जब वाकई में उसको जब कभी बड़ी बीमारी होगी और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तो उसका ही सम इंश्योर कम हो रहा है, उसको ही
0: जी
1: आगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो
0: जी
1: हमें पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकल नॉलेज जिसे है वही ये सब बातें जान सकता है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है, कौन सा नहीं है,
0: जी
1: कहाँ
0: जी जी
1: पे
0: जी
1: बिल इन्फ्लेशन है, कहाँ पे नहीं है। तो
0: बिल्कुल
1: मेडिकल की पढ़ाई तो रोज यूज होती है, हर क्लेम में यूज होती है।
0: जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: तो तने अब हम आपके संगीत के सफर की तरफ चलते हैं। आपने तबला सीखने की कोशिश की लेकिन ये सफर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी आपने हर जगह स्कूल की बेंच हो, बैग हो, ताल ढूंढ ही ली। तो क्या संगीत आपके लिए कभी सीखा हुआ विषय रहा है या हमेशा से आपके भीतर स्वाभाविक रूप से ही बहता रहा है?
1: जी, कोशिश तो मैंने बहुत की सपना जी संगीत सीखने की। हर बार कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रही, हर बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहा और मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी। गाने की भी मैंने क्लास लगाई थी जहाँ पे खेलना ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में, तो गाने की क्लास शाम को रहती थी, मुझे खेलने के लिए जाना पड़ता था तो वो क्लास आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने तबले की क्लास लगाई क्योंकि सब दोस्तों ने लगाई थी, तो होता ना मेरे दोस्त जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं तबले के लिए गया तो मेरे हाथ में स्वेटिंग बहुत होती थी उस टाइम पे।
0: अच्छा,
1: तो मेरे गुरुजी ने उस टाइम पे एडवाइस किया तुम तबला मत सीखो जिंदगी में कभी भी, क्योंकि जिसके हाथ में स्वेटिंग है वो तबला नहीं सीख पाएगा कभी भी। तो तुम तबला छोड़ो, दूसरा कुछ सीख लो इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे तबला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर जिम्मेदारी आने लगी, थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम था फैमिली में, तो फीस ज्यादा बढ़ गई थी तो वो नहीं कर पाया। जब यहाँ पे ऐसे से लोम्बार्ड में पहले मैं ज्वाइनिंग किया था तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो सोचा सैटरडे संडे में गाने के क्लासेस लगा दूं। गाने के क्लासेस 6 महीना किए मैंने, मेरे अलंकार सीख कर हो गए, कम्प्लीट हो गए। जैसे राग स्टार्ट हुए मेरी ट्रांसफर हो गई कैशलेस टीम में, जो कि टीम होती है 24/7 काम करती है
0: जी।
1: तो बोल नहीं सकते सैटरडे संडे छुट्टी होगी नहीं हुई, तो अलंकार करके मुझे वो छोड़ना पड़ा था काम। हाँ, बट तबला छोड़ने के बाद वो ताल जो होता है वो नहीं गया कभी जहन से। तो बैठे बैठे कभी बोर हो रहा था तो बेंच वगैरह बजाना स्टार्ट किया था कॉलेज में, स्कूल में
0: जी।
1: तो वो लोगों को, बाजू में बैठे वाले लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा
0: जी।
1: फिर थोड़ा जोर से बजाओ, हम लोग भी सुनते हैं, तो फिर 2 हो गए 2 के 4 8 10 ऐसे लोग बढ़ते गए सुनने वाले। तू गाता भी है साथ में, बेंच भी बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है, तो फरमाइशी आने लगी कि ये गाना सुनाओ वो गाना सुनाओ। तो जब ऑफ पीरियड वगैरह होता था तो एक छोटा मिनी ऑर्केस्ट्रा के जैसा होता था, मेरे आजू बाजू में लोग बैठे होते थे, हम 2-3 दोस्त, एक प्रशांत बोलकर एक मेरा दोस्त था वो भी बहुत अच्छा बेंच बजाता था, ओंकार बोल के था वो फ्लूट बजाता था, तो हम ये कॉलेज में ऑफ पीरियड में चुपके से करते थे, कैंटीन में भी करते थे, कैंटीन में तो खैर कर सकते थे बांसुरी वगैरह बजाना।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है आपका जो ये छोटा सा ग्रुप था ये कॉलेज में तो खैर काफी पॉपुलर रहता होगा।
1: जी बहुत
0: जी। तो जितने भी हमारे महान कलाकार रहे हैं जैसे कि आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब या SP बालासुब्रमण्यम जी, तो आप इनमें से किस कलाकार की आवाज और गायकी से प्रभावित है ज्यादा?
1: अभी अपने नाम SP जी का ले लिया है तो SP जी मेरे लिए सिर्फ गायक नहीं है, भगवान है, भगवान की तरह। मतलब मैं, मुझे उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा तो जानते हो
0: जी,
1: बस
0: जी।
1: कुछ वैसा ही रिश्ता रहा मेरा उनके साथ में, उनके गाने सीख के। और उनके गाने से मैं विशेष रूप से प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि उनके गाने सुनने के बाद मुझे पता चला कि गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, गाना एक्सप्रेस भी करना होता है। जैसे आप कुछ हैप्पीली गा रहे हो तो सुनने वाले को गाना सुन के समझना चाहिए अरे आप बहुत हैप्पी हो, जैसे आप शराब पी के गाना गा रहे हो तो सुनने वाले को आप बिना शराब पिए गा रहे हो, बट सामने वाले को सुन के लगना चाहिए अरे आप ये शायद बहुत पी के गाना गा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: वो रो रहा है तो शायद ये अरे दिल से रो रहा है, वो जो एक्सप्रेशंस है SP जी के आवाज में। अब आप फिल्म सागर का गाना सुन लो, सच मेरे यार है,
0: अरे ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है,
1: मेरा भी बहुत फेवरेट है। मतलब वो गाना आप सुनोगे तो पता नहीं क्यों आपकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है आज भी
0: जी। अब आपने अगर इस गाने की बात की ही है डॉक्टर चैतन्य जी, और आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे भी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गाने की 2 पंक्तियां हमें यहाँ पर सुना दीजिए।
1: जी जरूर। सच मेरे यार है बाकी बेकार है, सच मेरे यार है
0: बस वही प्यार है,
1: प्यार है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
1: थैंक
0: तो अगर
1: यू।
0: आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप अपने जो आपके इतने फेवरेट सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, कि आप उन
1: जी
0: उनसे मिल सकें और उनके साथ बैठ के कोई एक सवाल पूछ सकें, तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे?
1: सर, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? एक बार तो मिलना था आपसे। बस कुछ नहीं, आपके पैरों को छूना था, आपके पैर पे माथा रखना था। आप इतना जल्दी क्यों चले गए, यही सवाल पूछूंगा
0: जी, बहुत इमोशनल सा माहौल हो गया है और यहाँ पर हम चैतन्य जी का एक प्यारा सा गीत लेते हैं।

0: एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कराओके ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे गाना स्टार्ट किया
1: जी।
0: तो वहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी अनंतराम।
1: हाँ जी मैं जानती हूँ उनको। हाँ जी
0: जी, वो विशाखापट्टनम से है
1: जी, मैं मिली हुई हूँ उनसे जी।
0: जी इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, तो वो काफी करीब रही है एसपीजी की
1: जी, बिल्कुल रही है। हाँ
0: एसपीजी ने एक लास्ट वीडियो उनका हॉस्पिटल से दिया था लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में आप खुश रहो, इस कुछ मैसेज का वो वीडियो था। वो वीडियो मुझे मीनाक्षी जी ने भेजा था और वो वीडियो देख के मुझे सच में आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब वो भी काफी भावुक हो गए थे एसपीजी उस टाइम पर। कोविड का वो दौर था
1: जी, कोविड का वो दौर था। मुझे एक्चुअली इस किस्से के बारे में पता है क्योंकि मुझसे मीनाक्षी जी ने भी, जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और मीनाक्षी जी खुद भी बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, और जितनी कठिनाइयों से वो निकली हैं और उसके बावजूद वो चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट रखती हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया शाइनिंग
0: और दिल में
1: एग्जाम्पल है।
0: बहुत बड़ा इतना दुख का तूफान लिए वो दुनिया को हंसाने के काम करती है,
1: जी जी
0: दुनिया को एनकरेज करती है
1: जी, बहुत ही प्रेरणा मिलती है उनकी
0: बहुत।
1: जिंदगी से जी। तो डॉक्टर साहब, आपके जीवन में जो परिवार है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जैसे अक्सर हम सबके लिए ऐसे ही होता है, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरी पत्नी है और दो बेटियां हैं, हम यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, और मेरी माता जी है वो मेरे होम टाउन पल्टन में रहती है।
1: तो कोई ऐसी सीख या संस्कार जो आपके पिताजी ने आपको दिया हो और जिसे आप अपनी बेटियों तक पहुंचाना चाहते हो?
0: जी जरूर, मेरे पिताजी ने कहा है कि हमेशा अगर आपको कोई मदद करता हो और आप वो मदद करने में सक्षम हो तो जरूर उसकी मदद कीजिए, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर किसी को हौसला देना हो, किसी का कुछ काम करना हो तो जरूर कीजिए। कभी किसी को टाइम मत बोलिए कि अभी इतना रात में मैं कहाँ आऊंगा, क्या करूंगा। मैं भागता हूँ, भाग जाता हूँ अभी भी, कोई भी मुझे एक कॉल करके कुछ भी मदद मांगता है मैं आज भी भाग जाता हूँ। किसी की शादी हो, कुछ दुख भरा माहौल हो या फिर और कुछ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि कभी किसी की शादी या वास्तु शांति में मत जाओ बट किसी का क्रीमेशन में जरूर जाओ।
1: जी जी,
0: क्योंकि वो एक दौर होता है जहाँ पे भावनात्मक रूप से इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां पे बस उस इंसान के साथ में रहो, जो हो सके वो हेल्प करो। तो मैं आज भी, मुझे कोई भी इंसान मतलब जान पहचान का नहीं है और फिर बात मुझे कॉल करके पूछता है कि कुछ हेल्प के लिए, तो मैं ना नहीं मुझसे बोला जाता। शायद ये मेरा एक ड्रॉबैक है या पिताजी की सीख है पता नहीं, बट यही मैसेज मैं मेरी बेटियों को भी कन्वे करना चाहूंगा।
1: जी इसे ड्रॉबैक नहीं कहते बल्कि हम कहेंगे कि आपकी शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जो कि मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी को ये बात सीखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत खड़ी होती है, तो मैं चाहूंगी कि इस वक्त जब आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया सुन रही है और निसंदेह आपका परिवार भी सुन रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आप अपनी पत्नी के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे?
0: मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं
1: जी,
0: सबके पीछे एक होती होगी, मेरी जिंदगी में दो है
1: जी।
0: पहली है मेरी माता जी और दूसरी मेरी पत्नी। माता जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी सीख उन्होंने सिखाई, शायद उन्हें याद नहीं होगा बट छोटी मोटी बातों में उनसे मैं कुछ सीखता रहा, या फिर कुछ बड़े फैसले हो तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं है माता जी ने कि ये मत करो वो मत करो, तुमको सही लगता है ना, तुम वो चीज संभालने के लिए सक्षम होना तो करो, उन्होंने रोका नहीं, मुझे गाइडेंस किया है
1: जी जी।
0: और पत्नी का तो हर चीज में सपोर्ट रहता है, उसने मुझे कभी, हाँ उसको पर्सनली मेरा ये गाना गाना, इवेंट और इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना वो इतना खास पसंद नहीं है बट वो मुझे रोकती नहीं है कभी, ठीक है तुमको करना है तो करो बट मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो बोल के, क्योंकि अभी सर्विस करने में सैटरडे संडे टाइम होता है तो शी इज वेटिंग अभी कि मुझे टाइम देंगे इस सैटरडे संडे और मैं कहीं स्टूडियो इवेंट में या फिर दोस्तों के साथ चला जाता हूँ तो थोड़ा सा नाराज हो जाती है बट शी इज नाइस।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपके साथ रहेंगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और यूं ही आपस में प्यार आप लोगों का बना रहे।

0: तो अंत
1: थैंक
0: में
1: यू
0: मैं
1: सो मच।
0: आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ वो शायद आपकी पूरी जीवन यात्रा का सार हो जाए कि
1: जी
0: डॉक्टर
1: जी
0: से कॉरपोरेट प्रोफेशनल और फिर भी दिल से संगीत के दीवाने चैतन्य, तो अगर
1: जी
0: आज आप अपने बचपन वाले चैतन्य से मिलेंगे तो उनसे क्या कहेंगे?
1: उनसे कुछ मैं कहूंगा कि जब बुरा दौर था जिंदगी का, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी की वजह से कुछ सपने पूरे नहीं हो पाए। खैर वो भी तुमने एक्सपीरियंस कर लिया। अब जब सब कुछ भगवान की दया से ठीक चल रहा है तो अभी इस चीज को एंजॉय करो।
0: जी
1: मत
0: बिल्कुल
1: सोचो कि इसके पहले तुमने क्या किया और अब क्या कर रहे हो। जो तुम्हारे सामने लाइफ आई है उसको एंजॉय करो।
0: बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आप अपने संगीत के साथ के इस सफर को कहां तक ले जा सकते हैं?
1: आगे की तो बात पता नहीं, बट आपके साथ यहाँ स्टूडियो में आकर तो बहुत बहुत मैं बड़ा बन गया हूँ संगीत की दुनिया में, ऐसा लग रहा है। बट आगे मेरा सपना वही रहेगा, स्टेज, माइक और आगे हजारों की ऑडियंस।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो जाते जाते जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के हमारे सभी श्रोताओं के लिए मैं चाहती हूं कि आप कोई संदेश दें, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दिल में कोई सपना या जुनून है लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों के कारण वे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी, अगर वो आपका सपना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात मैं आपको बोलूंगा। सपना वो नहीं है जो सोने के बाद आता है, सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता। तो
0: वाह,
1: कभी भी आपने सपने को छोड़ो मत। हाँ, अभी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा साइड में रखो। जो आगे आपकी लाइफ में प्रॉपर प्रायोरिटीज है उसको इंपॉर्टेंस दे दो, वो जिम्मेदारियां निभा दो, बट अपने सपनों को छोड़ो मत कि मैं पूरा नहीं कर पाया। जब कभी भी मौका मिलेगा आप सपनों को फिर से कॉन्सेंट्रेट करो सपनों के ऊपर और उसको जरूर पूरा करो।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही चैतन्य जी। आपसे बात करके सचमुच ये लगा कि जिंदगी चाहे हमें कितने भी अलग अलग रास्तों पर ले जाए पर अगर दिल में जुनून और संगीत का धुन जिंदा हो तो इंसान अपने सपनों से कभी दूर नहीं होता।
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल सही।
0: अपने संघर्ष, अपने परिवार, अपने माता पिता की बातें और संगीत के प्रति अपने परिवार अपने प्यार को जिस खूबसूरती से हमारे साथ साझा किया है उसके लिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चैतन्य उंडे।
1: धन्यवाद सपना जी।
0: तो दोस्तों, मैं हूं सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। यूं ही सुनते रहिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू प्रोग्राम। दोबारा मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई कहानी और एक नए नगमे के साथ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राख।
2: मेरे संग संग आया तेरे गीतों का मेला, और गीतों का
0: जी
2: मेला लेके आई हैं हमारे संग हमारे साथ जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर नीता परिक, वडोदरा गुजरात से। वेलकम है, स्वागत है नीता जी आपका। आज कौन सा कमाल करने वाली हैं आप और लाजवाब करने वाली हैं गीतों से।
3: जी धन्यवाद हरी जी, मुझे वापस जयपुर रेडियो पे आमंत्रित करने के लिए। आज मैं बातों बातों में अंतर्गत ये दो दिल एक सुर नाम का प्रोग्राम लेके आई हूँ, जिसमें ड्यूएट सॉन्ग है पर मैंने अकेले गाया है, तो इसलिए मैंने टाइटल रखा है बातों बातों में दो दिल एक सुर। तो आशा
2: दिल
3: है
2: दो
3: आपको
2: हैं और सुर एक
3: हाँ
2: है,
3: सुर
2: स्वर,
3: आज एक ही है,
2: स्वर
3: हाँ,
2: एक है, वो है नीता पारिक का।
3: जी जी
2: जी
3: तो पहले सॉन्ग की शुरुआत करते हैं हम दिल की नजर से। तो ये फिल्म अनारी का बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है और ये गाने में नए प्यार की निर्दोषता है और बोले तो ना ही नजरों से बात हो जाती है, तो एक रोमांटिक स्वीट कंफ्यूजन भी है। तो आइए सुनते हैं, हम सॉन्ग ही सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा सबको। तो हम सुनते हैं दिल की नजर से।

0: दिल की नजर से। और दिल की नजर से हमारे श्रोता पूछ रहे हैं कि ये गीत किसने गाया, तो हम बता देते हैं। जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर नीता परिक हमारे साथ, हमारे संग इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है
1: बातों में दो दिल एक सुर।
0: दिल तो दो हैं और स्वर जो है यानी आवाज वो एक ही है, और वो है दिल की बात कहने वाली अपने गीतों के माध्यम से नीता पारिक, वडोदरा गुजरात से। तो क्यों ना मौसम

के साथ बढ़ा जाए आगे और कोई तराना रिमझिम का छेड़ रही हैं नीता पारिक। आइए सुनते हैं।

0: बिन कहे बिन सुने कर ली बातें सावन की रातों में, रिमझिम के गीत सावन गाए। बिन कहे बिन सुने कैसे बातें कर ली, क्या सावन का मौसम इतना मोहक होता है?
1: इस बारिश के मौसम में भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आती है, तब एक बहुत ही गहरी रोमांटिक भावनाओं के साथ जो नए प्यार में पागल प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया प्यार मौसम होता है। और ये गीत है, उसमें प्यार है, नजाकत भी है और इकरार भी है। सो बहुत ही अच्छी तरह से ये बारिश का एक सॉन्ग मैंने सुनाया आप सबको, आशा है आपको पसंद आया होगा। जो प्यार, अभी प्यार में इतने खो जाते हैं तो जायज है कि उसमें गुस्सा भी आएगा, तो प्यार होता है वहां गुस्सा भी जायज होता है।
0: हाँ, छोटी वो तो छोटी बातों में
1: बराबर है ना, तो छोटी छोटी बातों
0: में होता है कि गुस्सा होता है आदमी।
1: जी जी, छोटी छोटी बातों में रुठना मनाना वगैरह प्यार की शान होता है। सो ये गाने में जो मैं अगला गाना प्रस्तुत कर रही हूँ वो है, इतनी मजेदार शोखी भरी अदाओं के साथ ये बात बयां की है, तो हम गाने के माध्यम से ही सुनते हैं कि कैसा गुस्सा है, कैसा प्यार है। और ठीक है,
0: नीता परिक को

0: बहुत ही खूबसूरत गीत वो हैं जरा खपा खपा कि नैन यूं चुराए हैं। और नीता जी, आप जब खपा होती हैं तो नैन चुराती हैं या नैन को बचाती हैं? कई बार हमने देखा है कि लोग जब खपा होते हैं तो नज़र नहीं मिलाते, और ये तेरी नज़र का कसूर है या सुरूर है, क्या है हमें नहीं मालूम, कुछ बताएंगे इस बारे में आप?
1: खफा होते तो मुझे ऐसा लगता है कि नजर चुराने के बदले थोड़ा बात को खुल के बताएंगे तो जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, ऐसा तो मैं ऐसा मानती हूँ कि खफा है तो ठीक है, पर आप बोल दीजिए कि प्रॉब्लम सुलझ जाएगा, और बहुत वो गुस्सा बहुत ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है, तो इसलिए ये खफा होना भी जायज है। और खफा कौन होता है कि जिसके ऊपर प्यार होता है उसके साथ में ही हम खफा होते हैं ना, तो वो भी एक ऊपर 2 मिनट का मैं गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, जब वो प्यार सामने से आता है तो वो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि प्यार के साथ साथ में जलन भी होना जायज होता है, तो मेरा अगला गाना है राधा कैसे न जले, उसमें ये मैंने प्रस्तुत किया है कि जब प्यार हो जाता है तो साथ में जलन तो आती ही है, क्योंकि कुछ नोकझोंक ना हो तो जिंदगी में मजा भी नहीं आता है।
0: हाँ,
1: ना
0: बिल्कुल,
1: आप
0: वो
1: क्या
0: मीठा
1: कहते हैं?
0: मीठा खाते खाते जो है वो कुछ नमकीन खाने की जैसे जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जिससे जिसके खाने से और जिसके गाने से जलन लगे। और ये राधा कैसे ना जले, यही है क्या गीत आपका?
1: जी जी यही गीत है जो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत है अंदर के, राधा कैसे ना जले, और सामने से जो रिप्लाई आता है वो भी बहुत मजेदार है, तो आइए सुनते हैं राधा कैसे ना जले।
0: बिल्कुल, दो दिल और एक स्वर, बातों बातों में सुन रहे हैं प्रोग्राम आप, और हमारे साथ हैं नीता पारेख वडोदरा गुजरात से।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में, दो दिल और एक स्वर, एक सुर कहें या एक स्वर कहें। नीता जी, सच में बहुत ही खूबसूरत गीत को आपने, और बहुत ही हार्ड गीत था ये जिसको आपने अपनी आवाज दी। अगली पायदान में कहां ले जाने वाली हैं आप?
1: बस अभी हम प्रोग्राम का एंड तक आ चुके हैं, तो मैं जो अभी गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है, अभी सब हो गया, गुस्सा रुठना मनाना प्यार वगैरह तो सब हो गया, तो फिर एंड में तो प्यार का एहसास ही मायने रखता है। तो ये बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, ये एक सिर्फ गाना नहीं है बल्कि प्यार का एक खूबसूरत एहसास है। और ये गाना हमें उस दौर में ले जाता है जहां मोहब्बत में सादगी और गहरापन हुआ करता था, और ये मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये गाना आपकी रूह तक जरूर पहुंचेगा। तो ये आज सुनते हैं हमारा आखिरी नगमा, तो प्रस्तुत है बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
0: आवाज दे रही है इस गीत को हमारी आज की सिंगर मेहमान नीता पारिक, बड़ोदरा गुजरात से।

दिल की कहानी पहुंची जुबां पर, किसको खबर हम पहुंचे कहां तक। और हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां हमें इस प्रोग्राम को विराम देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम कहना चाहेंगे हमारे उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, सराह रहे थे और बीच बीच में आपके फीडबैक हमें प्राप्त हो रहे थे। तो आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज हमारे साथ सुरीले सिंगर्स प्रोग्राम में जगदीश अरोड़ा हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से। अपने सुरीले गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत है मधुसूदन जी का प्रोग्राम सुरीले सिंगर जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

बेहतरीन सुरीली सांझ में हम सुन रहे थे पंजाब से मधुसूदन जी का ये सोलो गीत, बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत हमने सुना, आ गले लग जा। आइए सुनते हैं अगला गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान, प्रोग्राम सुरीले सिंगर, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

वीरेंद्र जी की आवाज में हमने ये बहुत खूबसूरत गीत सुना, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारो। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और आप हमारे सिंगर हैं और हम आपको अपना ही कहते हैं। और हमारे अपने एक और सिंगर हैं जिनका नाम है जगदीश अरोड़ा, गोविंदगढ़ मंडी पंजाब से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आपकी आवाज में, जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

0: आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुरीले सिंगर्स। और अभी आपने सुना पंजाब गोविंदगढ़ मंडी के जगदीश अरोड़ा की आवाज। और इसी के साथ सुरीले सिंगर प्रोग्राम आज का यहीं तक। बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी अपनी सुरीली आवाज में इन गीतों को इस मंच पर साझा करने के लिए। सुनते रहें जब रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: परफेक्ट परफेक्ट।

तो दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे।

0: नमस्कार, मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में जहां हर मुलाकात में होती है एक कहानी, हर कहानी में होता है एक गीत और हर गीत में छुपी होती है दिल की एक खूबसूरत दास्तान। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि कभी कभी हमारी मंजिल कुछ और होती है और रास्ते हमें कहीं और ले जाते हैं, लेकिन अगर जुनून दिल में जिंदा है तो इंसान अपने उस जुनून को किसी ना किसी रूप में अपने साथ लेकर चलता रहता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत है जो पेशे से डॉक्टर हैं, कॉर्पोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन दिल से आज भी संगीत के वही दीवाने हैं जो बचपन में ऑर्केस्ट्रा की पहली बीट सुनकर उसमें खो जाया करते थे। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर चैतन्य उंडे जी से और जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके परिवार और सबसे बढ़कर उनके संगीत के सफर की कहानी। डॉक्टर चैतन्य, जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, मैं आज बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ आपके स्टूडियो में जश्न सितारा गीत गुफ्तगू इस कार्यक्रम में आके। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये हमारी खुशकिस्मती है चैतन्य जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रूबरू हमसे गुफ्तगू करेंगे और हमें ना सिर्फ आपकी मीठी आवाज में आपके गीत सुनने को मिलेंगे बल्कि हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आपके जिंदगी का सफर और संगीत का सफर कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके बचपन की उस दुनिया में चलते हैं जहाँ फल्टन में आपका बचपन बीता। तो आपके पिताजी प्रेस रिपोर्टर थे और उन्हीं के कारण आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऑर्केस्ट्रा के पास मिलते थे। तो क्या आपको याद है अपना वो पहला ऑर्केस्ट्रा या वो गीत जिसने आपके मन में संगीत के लिए इतनी गहरी जगह बना ली?
1: जी बिल्कुल याद है सपना जी, वो मेरे लाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट था। वो ऑर्केस्ट्रा बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा असर कर गया मेरे मन पर कि जहाँ पे मैं म्यूजिक से कुछ सीख पाया हूँ और कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिली है। उस ऑर्केस्ट्रा का नाम था ऑर्केस्ट्रा कलाकार, सुधीर सिन्हा जी उसके निर्देशक थे और प्रोड्यूसर थे। और उस छोटे से ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया था, उसका नाम था कश्मीरा शाह और उनके साथ मेल सिंगर थे मनोज जी। तो ऑर्केस्ट्रा कलाकार वॉज द फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा तो जो मैंने सुना था और वो गीत था परदेसी परदेसी जाना नहीं। उस टाइम पे कार्यक्रमों का कुछ लिमिट नहीं होता था, टाइम लिमिट गवर्नमेंट का, तो सुबह 3-4 बजे तक भी कार्यक्रम चलते थे। तो रात को 2 बजे तक मैं जब वहां पे बैठा रहा तो मेरे पापा मुझे बुलाने के लिए आ गए, अरे तेरा दोस्त भी चला गया, कोई नहीं, तू अकेला बैठा है। तो मैं खो गया था बस उस ऑर्केस्ट्रा में।
0: तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी?
1: तब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में रहूंगा शायद।
0: तो तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में होंगे आप?
1: हाँ, उतना ही लगभग।
0: जी, तो आपको बड़ी बारीकियों से सारे डिटेल्स याद है अभी तक, इतनी गहरी छाप छोड़ी।
1: बहुत बहुत, मतलब वो गीत ही वैसा था, कम से कम 7-8 बार उस एक गीत को वंस मोर मिला था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी एकदम, कश्मीरा शाह नाम था उनका। आज अगर वो आपका प्रोग्राम सुन रही है तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये याद है और मैं वाकई हैरान हुई है सुनकर के। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इतना कोमल हो जाता है कि कहीं नहीं पता चलता कौन सा इंसिडेंट हमारे मन पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि हमारी जिंदगी की जो चाल है वो बदल जाती है। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्टर बनने तक का सफर कैसे किया?
1: मैडम एक्चुअली तो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पे एक महानाट्य था, डॉक्टर बाबा साहेब पुरंदरे लिखित, जानता राजा बोल के। तो हम घर के सभी लोग उसके कलाकार थे, तो स्टेज मेरे लिए नया नहीं था। वो लाइट्स, ऑडियंस, हजारों की ऑडियंस रहती थी सामने, तो स्टेज का कभी डर नहीं लगा। ये लगता था कि मैं आज कुछ नया करूं स्टेज के ऊपर जाकर। बहुत अच्छा फील करता था जब हजारों लोग मुझे देखते थे। तो ऐसा कुछ खास वो लगा नहीं मुझे कि स्टेज का डर वगैरह वो सब, बट तो वो मेरा एक पैशन बन गया कि मुझे हमेशा हाथ में माइक चाहिए और सामने ऑडियंस चाहिए, स्टेज चाहिए,
0: जी
1: वो सब जहन में आता रहा। तो मैं
0: जी
1: थोड़ा सा, मेरा पैशन वो बन गया था कि मुझे स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ करना है। हाँ, गाना गाना है ये तब तक फिक्स नहीं हुआ था,
0: जी
1: बट
0: जी
1: कुछ ना कुछ मुझे मिमिक्री करना है, या एक आधा छोटा सा भाषण देना है, या फिर किसी की एक्टिंग करनी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, या छोटी छोटी नाटिका जो हम एक अंक क्या बोलते हैं उसे मराठी में, जो एक अंक का होता है,
0: जी
1: 30-40 मिनट की एक नाटिका होती है, उसमें भी मैंने काम किया है कॉलेज के जमाने में। डायरेक्शन भी किया है उसका, मेरा दोस्त था वो लिखता था, हम लोग उसमें एक्टिंग करते थे, कभी डायरेक्शन का भी मौका मिलता
0: क्या
1: था,
0: बात है, क्या बात
1: तो
0: है।
1: वो सब भी किया है मैंने। उसके बाद में जब इंटर्नशिप में था तब एक स्टूडियो था मेरे दोस्त दोस्त का, तो आवाज में मेरी बेस होने की वजह से उसमें उनको काम मिलते थे, इलेक्शन का हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री या नॉन
0: जी
1: पॉलिटिकल हो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े होते हैं, उसके जो
0: जी
1: सीन होते हैं, ऐतिहासिक सीन वगैरह कुछ करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, तो उसके डायलॉग वगैरह बोलने होते, तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने का भी मौका मिला।
0: अरे वाह,
1: तो वो माइक से मैं दूर नहीं गया कभी, स्टेज और माइक से। वैसे तो बनना मुझे वो था, बट घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और
0: जी
1: मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं,
0: जी
1: तो और
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पापा ऐसे थे कि देखो, उन्होंने बोला कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, समाज में अच्छी जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, तो उनका एक सपना था कि देखो, मैंने दूसरों के बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाया है कि ये मेरा दोस्त है, इसके बच्चे के लिए कुछ कर दो वगैरह, बट मेरी एक इच्छा है कि मेरे बेटे की नौकरी के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो
0: बिल्कुल
1: तुमको जो करना है वो करो, बट ऐसा करो जिस क्षेत्र में जाओ मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम जो भी काम करो, जो भी पढ़ाई करो, उस क्षेत्र का टॉप तुमको बन के दिखाना है। बस उनका यही गाइडेंस था मुझे, तो
0: जी।
1: मम्मी की इच्छा थी तो डॉक्टर भी बन गया मैं।
0: जी तो कहा जा सकता है कि जो आपके पिताजी की जो गाइडेंस थी और जो उनके उसूल थे, उन्होंने भी आपकी जिंदगी पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है
1: जी, बहुत
0: जी। तो इसी के साथ हम आपका लीव लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं चैतन्य जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी का और अपना और अपनी माता जी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण आपको एक साथ प्रैक्टिस और नौकरी दोनों भी करनी पड़ी। तो यह दौर की कोई ऐसी याद जो अभी भी आप भूल ना पाए, वो जो संघर्ष आपने देखा है और जो कठिन वक्त था, उसने आपको क्या सिखाया?
1: सप्ता जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन ये जो मैं प्रैक्टिस करता था और नौकरी भी करता था, ये उस टाइम पे मुझे कभी संघर्ष लगा नहीं। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे उस टाइम पे। बट उस टाइम पे कुछ नया सीखने का मौका था। मैं मेरे पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता था, बट मैं हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखता गया मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में। और जो आप जैसे जानते हो, किसी भी डॉक्टर के लिए शुरुआती का दौर इतना आसान नहीं होता है। वेटिंग पीरियड होता है, पेशेंट आने के लिए भी टाइम लगता है आपके पास। तो वो सब पीरियड कम करने के लिए, और एजुकेशन लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी, नाइट ड्यूटीज करता था मैं
0: जी।
1: और एक प्रैक्टिस भी मैं खुद के लिए भी जो मेरा मुझे एस्टेब्लिश करना था, अपना नाम कमाना करता, क्योंकि मेरे टाउन में मेरे पापा का नाम बहुत बड़ा था
0: जी।
1: तो उनके नाम को भी संभालना था और एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाना था, जैसा मैंने उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, मैंने पहले बताया। तो दोनों भी करता रहा मैं। उसके बाद भी थोड़ा सा पैसे कम पड़ते थे तो एक छुट्टी लेके वीकली एक वीक में पुणे में जाता था, जो कि 110 किलोमीटर अवे है मेरे टाउन से।
0: अच्छा।
1: तो वहां पे जाके वहां पे भी पेशेंट्स देखता था मैं। बट कुछ न कुछ सीखने को मिला वो दोनों चीजों से, प्रैक्टिस
0: तो जो आपकी प्रैक्टिस थी और जो आपकी नौकरी थी, ये आपके होम टाउन में ही थी?
1: जी जी, दोनों एक ही जगह पे
0: जी। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताइए चैतन्य जी, कि आजकल एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं, वो अगर हमने जैसे क्विक रेमेडी कोई लेनी हो, जैसे जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह भी एलोपैथी के अंडर आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती तो डॉक्टर्स को हम खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन दे दो या फिर कुछ ऐसा कर दो कि हमें तुरंत से आराम आ जाए, तो एलोपैथी और होम्योपैथी में आप क्या फर्क पाते हैं?
1: एलोपैथी है जस्ट आपको एक, जैसे आपकी ताले की चाबी खो जाती है ना
0: जी,
1: तो आप कुछ डुप्लीकेट चाबी वगैरह बना के उसको खोल के रूम के अंदर जाना, बस इतना ही है। बट वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए
0: जी।
1: ठीक है, मतलब आप अभी मुझे पेन हो रहा है, मैं टैबलेट ले लूंगी तो दूर हो जाएगा। और होम्योपैथी से टाइम लगता है कुछ चीजों को ठीक होने के लिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसा एलोपैथी के अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट है जो सालों साल भी चलती है, वैसा ही होम्योपैथी के अंदर भी है। होम्योपैथी के अंदर क्या है कि होम्योपैथी के पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं आता है। एक्यूट मतलब मुझे दो दिन से फीवर है, तो उसके लिए कोई आता नहीं है जनरली, पहले पैरासिटामोल लेते हैं उसके बाद में आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई कंजनेटल हार्ट डिसीज है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग उसको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, ऐसे बड़े बड़े बीमारी लेके आते हैं जो कि उनको 4-5 साल 10 साल 15 साल से होती है, और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 2 दिन में ठीक होना है
0: जी, जी।
1: जो किसी भी पैथी के लिए पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली ठीक करना। प्लस होम्योपैथी में एक एड ऑन ये है कि उस चीज का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पूरी की पूरी मेडिसिन एक भी केमिकल से नहीं बनती है हमारी।
0: अच्छा जी।
1: पूरे नेचुरल सोर्सेस है होम्योपैथी के, उसी से बनती है और वो आपको पूरी तरह से ठीक करा देती है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कुछ एक्यूट रेमेडीज भी है जो आपको एक्यूट जो आपके इलनेस है, डिसीज है, उसको भी ठीक करती है। एक दिन में, 2 घंटे में भी ठीक करती है, 2-3 दिन में भी ठीक करती है। और क्रॉनिक जो डिसीजेस है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे कुछ डिसीजेस है सोराइसिस, जैसे स्किन का डिसीज है, उसमें बहुत सारे, हाँ जी, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, हार्ट तक भी पहुंच सकता है वो। तो एलोपैथी में उसके लिए कुछ परमानेंट ऐसा इलाज तो है नहीं, स्टीरॉयड को छोड़कर
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन होम्योपैथी में मुझे गर्व है बताने में कि इस बात का प्रॉपर तरीके से इलाज है होम्योपैथी के अंदर।
0: मतलब पेशेंट रखनी चाहिए और डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए, तो हम
1: ट्रस्ट करना चाहिए। होम्योपैथी ट्रस्ट का ही एक पार्ट है। जितना आप ट्रस्ट करोगे, जितना आप डॉक्टर को ट्रस्ट करके जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताओगे, उतना ज्यादा आपको इजी मेडिसिन देने के लिए आपके डॉक्टर को होगा।
0: यहाँ पर मेरी एक और जिज्ञासा है, आजकल ओबेसिटी को भी बहुत बड़ा रोग माना जाता है ना
1: जी,
0: तो एलोपैथी में अगेन अगर हम आए तो इसके कई डॉक्टर्स, या कह दीजिए कि इंडियंस को बहुत आदत होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत लेते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं गूगल पढ़ पढ़ के, तो ओबेसिटी के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो इवन ओजेम्पिक तक ले लेते हैं, जिससे सुना गया है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत
1: जी
0: जबरदस्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को
1: लोग
0: आप क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के कंसर्न में?
1: देखिए, पहले तो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, मैं तो गूगल डॉक्टर को मत रेफर करो ये बोल के बोलूंगा,
0: जी
1: क्योंकि गूगल आपको वही रिजल्ट दे देगा जो उसको फीड कराया गया है।
0: जी
1: गूगल एक एआई है जो आपको 10-15 जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेटा साइंस का रूल्स इंजिन लगाया होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लेगा। बट मेडिकल साइंस के हिसाब से हर पेशेंट अलग है, हर ताले की चाबी अलग है, जिसका ज्ञान आपके डॉक्टर को ही है। तो
0: जी
1: बिना डॉक्टर के जानकारी के वो मेडिसिन प्लीज मत ले लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: डॉक्टर के लिए एक बीमारी का निदान करना, मतलब डायग्नोस करना, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उस सिम्टम को रोकना।
0: जी
1: आप
0: बिल्कुल
1: जैसे सिम्टम को रोकना, पेशेंट का क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, उसको बंद कर दो। तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को सर्दी बहने को रोकना ये बीमारी है, सर्दी बहना ये बीमारी नहीं है। अभी टॉपिक निकला है तो बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में कॉकरोच घुसता है तो आप क्या करते हो, उसे मारते हो, मारने के बाद भी उसको बाहर फेंकते हो। तो कोई भी चीज जो बुरी है उसको बाहर निकाल के फेंकना ये स्वाभाविक है,
0: जी
1: जो हमारी बॉडी भी वही करती है, जो हमारा वाइटल फोर्स है बॉडी के अंदर
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: वही करता है, जो कुछ डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन्स वगैरह बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं
0: जी
1: वो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर से गीला होता है तो वो बाहर इजीली नहीं निकल पाता। तो बॉडी क्या करती है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करती है अंदर से अपने आप, और उसमें वो पूरे डस्ट पार्टिकल एलर्जेंस पोलन ग्रेन जो कुछ रहेगा उसको बाहर फेंकने की काम करती है, इसलिए आपकी नाक बहती है। और आप
0: जी
1: क्या करते हो, स्टीरॉयड लेके उसको रोक कर देते हो अंदर, मतलब कॉकरोच तो आपने मार दिया बट वो बॉडी में ही है आपके, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो
0: जी
1: नाक सिंपल सी बात है जो हर किसी के लाइफ में आती है 2 या 4 महीने में, सर्दी, सर्दी को रोकना उसका इलाज नहीं है, सर्दी को बहने देना, वो चीजें जो खराब है जो बॉडी के बाहर आनी चाहिए उसको बाहर निकलने देना, ये
0: जी
1: उसका तरीका है इलाज का, और
0: जी
1: इसी तरीके से होम्योपैथी इलाज करती है।
0: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे श्रोताओं के लिए। तो हमारा भी श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर गूगल के बहकावे में ना आए, और अगर आपको कभी भी कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ना ना कि ओवर द काउंटर अपने आप ही दवाइयां खरीद के अपना खुद का ही इलाज करें। ये बात बहुत गलत रहती है और एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली ये हमें हार्म करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर चैतन्य का एक गीत और लेते हैं।

0: मेरा अगला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि आज आप इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स ऑडिट और लीगल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर की संवेदनशीलता और एक कॉरपोरेट लीडर की निर्णय क्षमता, क्या आपको लगता है कि आपकी मेडिकल पढ़ाई आज भी आपके काम में किसी ना किसी रूप में मदद करती है?
1: जी सपना जी, जरूर मेडिकल, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में।
0: जी
1: हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम को समझना, पेशेंट की बीमारी को समझना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिला है नहीं मिला है वो चेक करना, कुछ बिल बढ़ाने के लिए भी होता है इंडिया में।
0: जी
1: इंडियन माइंडसेट ऐसा है, जिसके पास इंश्योरेंस है उसका थोड़ा सा मैं बिल लगाऊंगा, कहाँ पेशेंट को भी पैसे देने हैं कंपनी दे देगी, तो एग्जेजरेशन ऑफ बिलिंग होता है वहां पे
0: ये
1: जो
0: बात जो आपने
1: अननेसेसरी।
0: कही है ना डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता
1: जी
0: है कितने ही भारतीय होंगे वो उन लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। किसी अगर जैसे मैं आपको अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, तकरीबन 2 साल पहले मुझे मेरी माता जी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। वो बेहोश हो गई थी तो उनको थोड़ा हार्ट ट्रबल डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर जाकर जो डॉक्टर्स ने मतलब कहा मुझे कि उन्होंने मुझे कहा कि खून की बॉटल भी चढ़ गई है, पर देर वॉज नो मेंशन, उसका कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं था। फिर उनको इस तरह के टेस्ट करवाए गए जो कि लिंक्ड ही नहीं थे उनकी कंडीशन के साथ। तो मैं अल्टीमेटली परेशान होकर मैंने अपनी माताजी को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, घर लेकर आई और वाकई घर में 2-3 दिन के बाद ही उनकी सेहत बहुत सुधर गई। तो ये मुझे लगता है कि जहां पे इंश्योरेंस के क्लेम्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस के अंडर हम एडमिट करवाते हैं पेशेंट्स को, वहां पे हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज्यादती होती है।
1: जी वो तो होगा ही, क्योंकि अभी प्रीवियसली क्या होता था, क्योंकि डॉक्टर के हॉस्पिटल्स होते थे,
0: जी
1: आज कंपनीज के हॉस्पिटल है। हर
0: अच्छा
1: हर डॉक्टर को कंपनी की तरफ से एक टारगेट होता है कि आपकी तरफ से इतना बिजनेस आना ही चाहिए, हम इतने लाखों करोड़ों रुपए की लैब खोल के बैठे हैं, आपकी तरफ से इतना रोज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होना
0: जी
1: ही है,
0: जी जी जी जी
1: इतने रुपए का मेडिसिन आपने लिखना है, हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट चलाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चलाना है, सैनिटरी डिपार्टमेंट चलाना है।
0: जी
1: तो अब नॉर्मल फीवर का पेशेंट है, उसको ग्लोव्स पहनने की क्या जरूरत है, कैप मास्क, वो भी बिल में लिखा जाता है। तो वो सब
0: जी
1: चीजें हमें हेल्थ इंश्योरेंस में एनालाइज करनी पड़ती है, भले ही पैसे पेशेंट के जेब से नहीं जा रहे बट उसके सम इंश्योर से तो जा रहे।
0: जी
1: जब वो
0: बिल्कुल
1: फीवर के लिए अगर 1 लाख 2 लाख रुपए डाल रहा है, तो जब वाकई में उसको जब कभी बड़ी बीमारी होगी और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तो उसका ही सम इंश्योर कम हो रहा है, उसको ही
0: जी
1: आगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो
0: जी
1: हमें पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकल नॉलेज जिसे है वही ये सब बातें जान सकता है कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है, कौन सा नहीं है,
0: जी जी
1: कहाँ
0: जी
1: पे
0: जी
1: बिल इन्फ्लेशन है, कहाँ पे नहीं है। तो मेडिकल
0: बिल्कुल
1: की पढ़ाई तो रोज यूज होती है, हर क्लेम में यूज होती है।
0: जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: तो चतन्य, अब हम आपके संगीत के सफर की तरफ चलते हैं। आपने तबला सीखने की कोशिश की, लेकिन ये सफर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी आपने हर जगह, स्कूल की बेंच हो, बैग हो, ताल ढूंढ ही ली। तो क्या संगीत आपके लिए कभी सीखा हुआ विषय रहा है, या हमेशा से आपके भीतर स्वाभाविक रूप से ही बहता रहा है?
1: जी, कोशिश तो मैंने बहुत की सपना जी संगीत सीखने की। हर बार कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रही, हर बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहा और मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी। गाने की भी मैंने क्लास लगाई थी, जहाँ पे खेलना ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में, तो गाने की क्लास शाम को रहती थी, मुझे खेलने के लिए जाना पड़ता था, तो वो क्लास आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने तबले की क्लास लगाई, क्योंकि सब दोस्तों ने लगाई थी, तो होता ना मेरे दोस्त जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं तबले के लिए गया, तो मेरे हाथ में स्वेटिंग बहुत होती थी उस टाइम पे।
0: अच्छा,
1: तो मेरे गुरुजी ने उस टाइम पे एडवाइस किया, तुम तबला मत सीखोगे जिंदगी में कभी भी, क्योंकि जिसके हाथ में स्वेटिंग है वो तबला नहीं सीख पाएगा कभी भी। तो तुम तबला छोड़ो, दूसरा कुछ सीख लो इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे तबला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर जिम्मेदारी आने लगी, थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम था फैमिली में, तो फीस ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो नहीं कर पाया। जब यहाँ पे ऐसे से लोम्बार्ड में पहले मैं ज्वाइनिंग किया था, तो वहां पे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो सोचा सैटरडे संडे में गाने के क्लासेस लगा दूं। गाने के क्लासेस 6 महीना किए मैंने, मेरे अलंकार सीख कर हो गए, कम्प्लीट हो गए। जैसे राग स्टार्ट हुए, मेरी ट्रांसफर हो गई कैशलेस टीम में, जो कि टीम होती है 24/7 काम करती है। तो बोल नहीं सकते सैटरडे संडे छुट्टी होगी नहीं हुई, तो अलंकार करके मुझे वो छोड़ना पड़ा था काम। हाँ, बट तबला छोड़ने के बाद वो ताल जो होता है वो नहीं गया कभी जहन से। तो बैठे बैठे कभी बोर हो रहा था तो बेंच वगैरह बजाना स्टार्ट किया था कॉलेज में, स्कूल में।
0: जी,
1: तो वो लोगों को, बाजू में बैठे वाले लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा।
0: जी,
1: फिर थोड़ा जोर से बजाओ, हम लोग भी सुनते हैं। तो फिर 2 हो गए, 2 के 4, 8, 10, ऐसे लोग बढ़ते गए सुनने वाले। तू गाता भी है, साथ में बेंच भी बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है, तो फरमाइशी आने लगी कि ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। तो जब ऑफ पीरियड वगैरह होता था तो एक छोटा मिनी ऑर्केस्ट्रा के जैसा होता था, मेरे आजू बाजू में लोग बैठे होते थे।
0: जी,
1: हम 2-3 दोस्त, एक प्रशांत बोलकर एक मेरा दोस्त था, वो भी बहुत अच्छा बेंच बजाता था, ओंकार बोल के था, वो फ्लूट बजाता था। तो हम ये कॉलेज में ऑफ पीरियड में चुपके से करते थे, कैंटीन में भी करते थे, कैंटीन में तो खैर कर सकते थे बांसुरी वगैरह बजाना।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है आपका जो ये छोटा सा ग्रुप था ये कॉलेज में तो खैर काफी पॉपुलर रहता होगा।
1: जी, बहुत बहुत
0: जी। तो जितने भी हमारे महान कलाकार रहे हैं, जैसे कि आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब या SP बालासुब्रमण्यम जी, तो आप इनमें से किस कलाकार की आवाज और गायकी से प्रभावित है ज्यादा?
1: अभी अपने नाम SP जी का ले लिया है, तो SP जी मेरे लिए सिर्फ गायक नहीं है, भगवान है। भगवान की तरह, मतलब मैं, मुझे उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा तो जानते हो।
0: जी,
1: बस
0: जी,
1: कुछ वैसा ही रिश्ता रहा मेरा उनके साथ में। उनके गाने सीख के, और उनके गाने से मैं विशेष रूप से प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि उनके गाने सुनने के बाद मुझे पता चला कि गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, गाना एक्सप्रेस भी करना होता है। जैसे आप कुछ हैप्पीली गा रहे हो तो सुनने वाले को गाना सुन के समझना चाहिए, अरे आप बहुत हैप्पी हो। जैसे आप शराब पी के गाना गा रहे हो तो सुनने वाले को, आप बिना शराब पिए गा रहे हो, बट सामने वाले को सुन के लगना चाहिए, अरे आप ये शायद बहुत पी के गाना गा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: वो रो रहा है तो शायद ये, अरे दिल से रो रहा है। वो जो एक्सप्रेशंस है SP जी की आवाज में। अब आप फिल्म सागर का गाना सुन लो, सच मेरे यार है,
0: अरे ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है,
1: मेरा भी बहुत फेवरेट है। मतलब वो गाना सुनोगे तो पता नहीं क्यों आपकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट होता है आज भी।
0: जी, अब आपने तो अगर इस गाने की बात की ही है डॉक्टर चैतन्य जी, और आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे भी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गाने की 2 पंक्तियां हमें यहाँ पर सुना दीजिए।
1: जी, सच मेरे यार है, बाकी बेकार है, सच मेरे यार है,
0: बस वही प्यार है,
1: प्यार है,
0: जिसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
1: थैंक
0: तो अगर
1: यू।
0: आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप अपने जो आपके इतने फेवरेट सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, कि आप उन उनसे मिल सकें और उनके साथ बैठ के कोई एक सवाल पूछ सकें, तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे?
1: सर आप इतना जल्दी क्यों चले गए? एक बार तो मिलना था आपसे। बस कुछ नहीं, आपके पैरों को छूना था, आपके पैर पे माथा रखना था। आप इतना जल्दी क्यों चले गए? यही सवाल पूछूंगा मैं उनसे।
0: जी, बहुत इमोशनल सा माहौल हो गया है और यहाँ पर हम चैतन्य जी का एक प्यारा सा गीत लेते हैं।

0: चैतन्य जी, कोई और एसपीबी जी के साथ जुड़ा हुआ वाकया या कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: जी जरूर। मैं स्म्यूल एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कराओके ट्रैक्स होते हैं,
0: जी
1: वहाँ पे
0: जी
1: जाना
0: जी
1: स्टार्ट किया।
0: जी
1: तो वहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी अनंतराम,
0: हाँ जी, मैं
1: वहाँ
0: जानती हूँ उनको। हाँ जी
1: जी वो विशाखापट्टनम से है
0: जी मैं मिली हुई हूँ उनसे। जी
1: जी, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, तो वो काफी करीब रही है एसपी जी की।
0: जी बिल्कुल रही हैं
1: तो
0: वो। हाँ
1: एसपी जी ने एक लास्ट वीडियो उनका हॉस्पिटल से दिया था लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए, कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में आप खुश रहो, इस कुछ मैसेज का वो वीडियो था। वो वीडियो मुझे मीनाक्षी जी ने भेजा था और वो वीडियो देख के मुझे सच में आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब वो भी काफी भावुक हो गए थे एसपी जी उस टाइम पर, कोविड का वो दौर था।
0: जी कोविड का वो दौर था। मुझे एक्चुअली इस किस्से के बारे में पता है क्योंकि मुझसे मीनाक्षी जी ने भी, जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और मीनाक्षी जी खुद भी बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, और जितनी
1: बहुत
0: कठिनाइयों से वो निकली हैं और उसके बावजूद वो चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट रखती हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया शाइनिंग
1: और दिल में
0: एग्जाम्पल है।
1: बहुत बड़ा इतना दुख का तूफान लिए वो
0: जी
1: दुनिया को हंसाने के काम करती है,
0: जी जी
1: दुनिया को
0: जी
1: एनकरेज करती है
0: जी बहुत ही प्रेरणा मिलती है उनकी
1: बहुत।
0: जिंदगी से। जी तो डॉक्टर साहब, आपके जीवन में जो परिवार है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जैसे अक्सर हम सबके लिए ऐसे ही होता है। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरी पत्नी है और दो बेटियां हैं, हम यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, और मेरी माता जी है, वो मेरे होम टाउन पल्टन में रहती है।
0: तो कोई ऐसी सीख या संस्कार जो आपके पिताजी ने आपको दिया हो और जिसे आप अपनी बेटियों तक पहुंचाना चाहते हो?
1: जी जरूर। मेरे पिताजी ने कहा है कि हमेशा अगर आपको कोई मदद करता हो और आप वो मदद करने में सक्षम हो तो जरूर उसकी मदद कीजिए, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर किसी को हौसला देना हो, किसी का कुछ काम करना हो तो जरूर कीजिए। कभी किसी को टाइम मत बोलिए कि अभी इतना रात में मैं कहाँ आऊंगा, क्या
0: जी
1: करूंगा।
0: जी जी
1: मैं भागता हूँ, भाग जाता हूँ अभी भी, कोई भी मुझे एक कॉल करके कुछ भी मदद मांगता है मैं आज भी भाग जाता हूँ। किसी की शादी हो, कुछ दुख भरा माहौल हो या फिर और कुछ, तो
0: जी
1: मेरे पिताजी ने कहा कि कभी किसी की शादी या वास्तु शांति में मत जाओ, बट किसी का क्रीमेशन में जरूर जाओ,
0: जी जी
1: क्योंकि वो एक दौर होता है जहाँ पे भावनात्मक रूप से इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वहां पे बस उस इंसान के साथ में रहो, जो हो सके वो हेल्प करो। तो
0: जी
1: मैं आज भी, मुझे कोई भी इंसान, मतलब जान पहचान का नहीं है और फिर बात मुझे कॉल करके पूछता है कि कुछ हेल्प के लिए, तो मैं ना नहीं मुझसे बोला जाता। शायद ये मेरा एक ड्रॉबैक है या पिताजी की सीख है, पता नहीं, बट यही मैसेज मैं मेरी बेटियों को भी कन्वे करना चाहूंगा।
0: जी इसे ड्रॉबैक नहीं कहते, बल्कि हम कहेंगे कि आपकी शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, जो कि मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी को ये बात सीखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत खड़ी होती है, तो मैं चाहूंगी कि इस वक्त जब आपका ये प्रोग्राम सारी दुनिया सुन रही है और निसंदेह आपका परिवार भी सुन रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आप अपनी पत्नी के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे?
1: मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं,
0: जी
1: सबके पीछे एक होती होगी, मेरी जिंदगी में दो है,
0: जी
1: पहली है मेरी माता जी और दूसरी मेरी पत्नी। माता जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी सीख उन्होंने सिखाई, शायद उन्हें याद नहीं होगा बट छोटी मोटी बातों में उन्होंने, उनसे मैं कुछ सीखता रहा, या फिर कुछ बड़े फैसले हो तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं है माता जी ने कि ये मत करो वो मत करो, तुमको सही लगता है ना, तुम वो चीज संभालने के लिए सक्षम हो ना तो करो, उन्होंने रोका नहीं, मुझे गाइडेंस किया है।
0: जी जी
1: और पत्नी का तो हर चीज में सपोर्ट रहता है, उसने मुझे कभी, हाँ उसको पर्सनली मेरा ये गाना गाना, इवेंट और इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना, वो इतना खास पसंद नहीं है बट वो मुझे रोकती नहीं है कभी, ठीक है तुमको करना है तो करो बट मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो बोल के, क्योंकि अभी सर्विस करने में सैटरडे संडे टाइम होता है, तो शी इज वेटिंग अभी कि मुझे टाइम देंगे इस सैटरडे संडे और मैं कहीं स्टूडियो इवेंट में या फिर दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, तो थोड़ा सा नाराज हो जाती है बट शी इज नाइस, सपोर्ट
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से आपके साथ रहेंगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और यूं ही आपस में प्यार आप लोगों का बना रहे।

0: तो अंत में मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ वो शायद आपकी पूरी जीवन यात्रा का सार हो जाए कि डॉक्टर से कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और फिर भी दिल से संगीत के दीवाने चैतन्य। तो अगर आज आप अपने बचपन वाले चैतन्य से मिलेंगे तो उनसे क्या कहेंगे?
1: उनसे कुछ मैं कहूंगा कि जब बुरा दौर था जिंदगी का, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी की वजह से कुछ सपने पूरे नहीं हो पाए, खैर वो भी तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, अब जब सब कुछ भगवान की दया से ठीक चल रहा है तो अभी इस चीज को एंजॉय करो
0: जी,
1: मत सोचो कि इसके पहले तुमने क्या किया और अब क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने लाइफ आई है उसको एंजॉय करो।
0: बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आप अपने संगीत के साथ के इस सफर को कहां तक ले जा सकते हैं?
1: आगे की तो बात पता नहीं, बट आपके साथ यहाँ स्टूडियो में आकर तो बहुत

0: आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा साइड में रखो, जो आगे आपकी लाइफ में प्रॉपर प्रायोरिटीज है उसको इम्पोर्टेंस दे दो, वो जिम्मेदारियां निभा दो, बट अपने सपनों को छोड़ो मत कि मैं पूरा नहीं कर पाया। जब कभी भी मौका मिलेगा आप सपनों को फिर से कॉन्सेंट्रेट करो सपनों के ऊपर और उसको जरूर पूरा करो।
1: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही चैतन्य जी, आपसे बात करके सचमुच ये लगा कि जिंदगी चाहे हमें कितने भी अलग अलग रास्तों पर ले जाए, पर अगर दिल में जुनून और संगीत का धुन जिंदा हो तो इंसान अपने सपनों से कभी दूर नहीं होता। आपने अपने संघर्ष, अपने परिवार, अपने माता पिता की बातें और संगीत के प्रति अपने परिवार अपने प्यार को जिस खूबसूरती से हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चैतन्य उंडे।
0: धन्यवाद सपना जी।
1: तो दोस्तों, मैं हूं सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। यूं ही सुनते रहिए जश्न सितारा गीत गुफ्तगू प्रोग्राम। दोबारा मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई कहानी और एक नए नगमे के साथ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राख।
2: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि अपने गीतों का संगीत भी स्वयं तैयार करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को सुरों में पिरोकर श्रोताओं तक पहुंचाना उनकी पहचान बनता जा रहा है। प्रशांत अपने संगीत को अपने YouTube चैनल परफेक्ट, जिसको हम स्पेल करते हैं PRFKT, परफेक्ट के माध्यम से भी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जहां उनके मौलिक गीत और संगीत, उनकी रचनात्मक सोच और संगीत के प्रति समर्पण की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करते हैं। आज की उनकी

ये प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत मिलकर सपनों को नई उड़ान देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत अपनी कला से संगीत की दुनिया में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से प्रशांत अरोड़ा को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सफलता, सम्मान और अपार लोकप्रियता प्रदान करे और उनके सुर यूं ही हर दिल को छूते रहें।

0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप लोगों का मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। दोस्तों, कहते हैं संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनके लिए गायन सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में सुकून और हौसला देने वाला साथी है। ये मूल रूप से पुणे महाराष्ट्र से हैं, पेशे से एक वरिष्ठ प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके दिल की धड़कन हमेशा संगीत की लय पर चलती है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान आनंद मिसाल जी का। आनंद जी, जश्न सितारा गीत गुफ्तगु प्रोग्राम में मैं आरजे सपना देव गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
1: धन्यवाद धन्यवाद सपना जी, नमस्कार, और तमाम जयपुर रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद।
0: तो हमारे श्रोता बेहद उत्सुक हैं जानने के लिए कि आनंद जी जो आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनका बचपन पुणे की गलियों में बीता, वो उन यादों के बारे में जानना चाहते हैं जिन यादों ने मिलकर आज के आनंद मिसाल को बनाया है।
1: पहले तो मैं जयपुर रेडियो का शुक्रिया अदा करूंगा
0: जी
1: कि एक आपके मंच के जरिए एक मौका मिला है आप तक पहुंचने का। रही बात मेरे बचपन की, तो यस, आप सभी की तरह बहुत अच्छा बचपन गुजारा है मैंने। पूना से 35 किलोमीटर गांव है मेरा
0: जी
1: उरुली,
0: जी
1: सो वहाँ पे मेरा 10th तक एजुकेशन वहाँ पे ही हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: उसके
0: अच्छा
1: बाद मेरा जो इंजीनियरिंग हो पूना में हुआ,
0: जी
1: पुणे में हॉस्टल लाइफ मेरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ही मेरा एज अ सिंगर में थोड़ा वहाँ निखार आया। मैं जहाँ तक गुनगुना करता था कॉलेज में आके, मैंने फिर वहाँ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि फिर गाने के भी शौक चढ़ गए,
0: जी
1: फिर
0: अक्सर
1: संगीत।
0: ये देखा ही जाता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो जो हमारे अंदर की छुपी हुई टैलेंट्स होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं। तो
1: हाँ,
0: जी, तो बचपन में भी आपने कभी स्टेज पर गाया है?
1: नहीं, बचपन में एक्चुअली सिंगिंग ये भी कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली हुआ था। ये जो स्टोरी है, एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा सुनाना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: कॉलेज के टाइम में हमारा गैदरिंग का सिलेक्शन चल रहा था सिंगिंग का,
0: जी
1: और हमारा जो ग्रुप था वो पीछे से सुन रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हंसी मजाक ये वो चल रहा
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जैसे हम सामने जैसे कोई सिंगर आते थे, तो वही वो बचपने वाले हरकतें,
0: जी जी जी
1: इस सब ऐसे माहौल में अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ था। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि कभी गाया नहीं था मैंने, माइक भी कभी पकड़ा नहीं था। तो अचानक से मेरा नाम अनाउंस किया, और मैं फिर मेरी हालत तो मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को,
0: जी
1: लेकिन फिर भी पीछे से थोड़ा आपको पुश किया दोस्तों ने कि भाई अभी तो इज्जत
0: अब तो जाना ही पड़ेगा, अब
1: का
0: नाम
1: सवाल है।
0: अनाउंस हो चुका है। जी, तो कौन सा
1: तो
0: गाना गाया आपने?
1: हाँ, वही तो, वहां पे फिर स्टेज पे गया, कोई दिमाग में सॉन्ग नहीं था कौन सा
0: तो
1: गाना
0: फिर
1: है,
0: भी
1: स्टेज पे गया, हालत ऐसी थी, हाथों में पसीना, पाव लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी मैंने जो अभी भी यह सॉन्ग याद है वो मुझे, मंजिल अपनी जगह है।
0: अरे वाह, क्या बात है किशोर
1: तो
0: जी।
1: उसमें, हाँ जी हाँ जी, तो जैसे हमिंग स्टार्ट की तो पूरा जो हॉल था हमारा ऑडिटोरियम में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ,
0: वाह,
1: मेरे आंखें बंद थी और वो पिन ड्रॉप साइलेंस ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। तो ऐसे तैसे वो सॉन्ग कंप्लीट कर दिया मैं।
0: क्या बात है, बहुत ही रोचक पूर्ण। तो किशोर जी आपके शुरू से ही फेवरेट सिंगर रहे हैं?
1: हाँ जी, आप कह सकते हो। ऐसे बचपन में क्या होता था ना, गांव में हम ऐसे बाहर बरामदे में सोते थे पूरा फैमिली,
0: जी,
1: ठीक है। तो वो टाइम में आज के तरह का माहौल नहीं था, वहां पे वो विविध भारती वगैरह चल चल रहा होता था
0: जी।
1: कहीं ना कहीं रेडियो। तो वहां पे मैं सॉन्ग सुनता था, लेकिन तो एक इनकी जो वॉइस है वो मुझे अट्रैक्ट कर, पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती थी।
0: जी।
1: तो बाद में समझ में आया कि यार ये वॉइस किशोर दा की
0: जी, उनकी इतनी जादू भरी आवाज थी कि हमेशा आपको अपनी ओर
1: है। यस
0: खींचती थी।
1: यस यस यस
0: तो ऐसा क्या हुआ आनंद जी कि आपने यही गाना चुना अपने पहले मंच की प्रस्तुति के लिए? यही गाना क्यों आपके दिमाग में आया, मंजिलें अपनी जगह है?
1: आई वॉज मीन्स मैं ब्लैंक था टोटली।
0: जी।
1: तो आंखों के सामने से सॉन्ग का लिस्ट जा रहा था मेरी, बट प्रिपरेशन नहीं था, कुछ नहीं था। ये थोड़ा कंफर्टेबल था और थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी सॉन्ग के लिए मेरा अच्छा मुझे लगा, सो मैंने
0: जी
1: वो परफॉर्म किया। और एक खास बात
0: वैसे
1: यह है कि
0: जी
1: हमारे प्रिंसिपल साहब का मेरा एक अंतर होने के बाद में उन्होंने वो वंस मोर कर दिया और एक
0: अरे
1: दूसरा एक
0: वाह
1: सॉन्ग का रिक्वेस्ट दे गया।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वहां
0: है।
1: से मेरा एक्चुअल सिंगिंग का मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वहां से सिंगिंग मैंने
0: जी जी जी
1: स्टार्ट
0: जी
1: किया।
0: आपको जो इतनी अच्छी दिल से प्रशंसा मिली अपने खुद के प्रिंसिपल
1: हाँ जी
0: से,
1: हाँ जी हाँ जी
0: वो आपको काफी आगे बढ़ा के ले गई। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो गीत है ये इतना आसान भी नहीं है, मंजिलें अपनी जगह हैं, क्योंकि इसका जो इमोशंस हैं वो दिल को छू जाती हैं। और जी
1: करेक्ट। हाँ
0: सिर्फ हाई
1: इमोशन
0: नोट्स ही
1: ये
0: नहीं है, बल्कि आपको बहुत इस गीत में डूब
1: वो
0: कर गाना पड़ता है।
1: करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट
0: जी
1: वो स्टार्टिंग से वो जो हमिंग है, ये जो है
0: जी
1: हमिंग
0: जी
1: से जो स्टार्ट होता है, तो
0: जी
1: वो फील आना वहीं से स्टार्ट होता है, और यही खासियत है उनकी।
0: यही खासियत है। वाह
1: यस
0: बहुत खूब। और इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं। निसंदेह आपकी जो जिंदगी है बहुत ही व्यस्त रहती होगी, तो ऐसे में संगीत के लिए समय निकालना कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको?
1: डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है टाइम निकालना।
0: जी,
1: हाँ, लेकिन
0: अगर
1: वक्त
0: मन में
1: मिलता
0: हम
1: नहीं, वो
0: ठान लें तो कर ही
1: निकलना
0: लेते
1: पड़ता
0: हैं।
1: है।
0: जी
1: हाँ हाँ
0: जी
1: हाँ एग्जैक्टली,
0: जी
1: वक्त मिलता नहीं, वो निकालना पड़ता है। होता
0: जी
1: क्या है, सिंगिंग मैं सुनता हूँ, जैसे मुझे फ्री टाइम होता है मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ। रही
0: जी
1: बात सिंगिंग की, हाँ, तो उसके लिए फिर टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पर बात रूह की खुराक की हो, जहां पर बात हो कि संगीत के बगैर हम जी नहीं
1: एग्जैक्टली
0: सकते, तो वहां का
1: एग्जैक्टली
0: समय निकालना ही
1: एग्जैक्टली
0: पड़ता है।
1: एग्जैक्टली
0: जी, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: तो आनंद जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सिंगिंग सिर्फ आपकी एक हॉबी नहीं है, आपके दिल का सुकून है। तो क्या आपको कोई एक ऐसा वाकया याद हो या कोई ऐसा दौर याद हो जब संगीत ने सचमुच आपका हौसला बढ़ाया हो और आप हमारे श्रोताओं के साथ उसे साझा करना चाहें?
1: लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे मैंने बहुत। होता क्या है कि हर सिचुएशन में कभी कभी हमें खुद को ही मोरली सपोर्ट देना होता है,
0: जी जी
1: क्योंकि आपको ज्ञान देने में लोग जुटे रहेंगे।
0: जी
1: आपको खुद क्या हो, खुद के लिए क्या चाहिए, क्या सही है, क्या सही गलत है, या खुद को स्टैंड अप करने के लिए, मुझे लगता है कि ये म्यूजिक इज द बेस्ट सोर्स फॉर मी।
0: जी
1: कि मैं और मैं ये फैक्ट है कि मैं 5 मिनट का सॉन्ग भी सुन लूं, थोड़ा खुद को रिलैक्स फील कर
0: जी
1: लूं।
0: तरोताजा महसूस करते हैं आप।
1: यस यस
0: वाकई इस
1: यस,
0: बात में कोई संदेह नहीं है कि संगीत ही एक सच्चा साथी होता है
1: करेक्ट करेक्ट
0: जो
1: करेक्ट करेक्ट,
0: जी
1: जिसे
0: दुख की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में भी
1: एग्जैक्टली
0: हमारे साथ रहता है।
1: एग्जैक्ट
0: बिल्कुल
1: संगीत जो है मीन्स, देखो छोटे बड़े मेलोडी का कोई ये नहीं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एक इसमें आप देखोगे तो संगीत से ही जुड़े हुए
0: जी
1: डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स एंड सिचुएशंस।
0: जी जी बिल्कुल
1: आपको वो एक थेरेपी जो बोलते हैं वो काम करता है बहुत अच्छे से।
0: बिल्कुल सही। और अगर हम अपने आसपास भी देखें आनंद जी, जो प्रकृति है वो भी संगीत से भरी हुई है। अगर आप
1: एग्जैक्टली
0: हवा
1: वो,
0: के बहाव को महसूस करें या
1: यस यस यस
0: लहरों
1: यस,
0: को महसूस करें, हर जगह संगीत है, हर जगह आपको
1: एग्जैक्टली
0: वही चीज
1: एग्जैक्टली
0: मिलेगी। तो आनंद जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो आपके कॉलेज में आपके मंच की पहली प्रस्तुति थी वो थी किशोर दा का एक बेहतरीन गीत मंजिलें अपनी जगह हैं, जो कि अगर मैं गलत
1: यस
0: नहीं
1: यस
0: हूँ शराबी फिल्म से है और अमिताभ बच्चन जी पर ये
1: यस,
0: फिल्माया गया था।
1: हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी,
0: तो इस गीत के बाद आपने और भी बहुत
1: इस
0: सारी प्रतियोगिताएं और लाइव ऑर्केस्ट्रा में गाया होगा।
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा गाया नहीं हूँ,
0: जी
1: कॉलेज टाइम में गाता था मैं।
0: जी
1: कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन भी मैंने किए हैं
0: जी
1: पूना
0: जी
1: में।
0: जी तो कोई और ऐसी यादगार प्रस्तुति जो आज भी आपके दिल के बेहद करीब हो?
1: हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा एक सॉन्ग है फेवरेट, दूसरा
0: जी
1: जो मैंने प्रिपेयर किया था, एक डुएट कंपटीशन था इंटर कॉलेज पूना में, मॉम मॉम करके ग्रुप था,
0: अच्छा जी
1: मिस्टर मोहन कुमार भंडारी जो ऑर्गेनाइजर थे, वो हर साल वो ऑर्गेनाइज करते थे। वहां पे हमारे कॉलेज के ओर से हमारा पहला एंट्री था उस कंपटीशन में।
0: अच्छा
1: तो उसमें डुएट कंपटीशन में वो एक्सपीरियंस एक बढ़िया था मेरे लिए। पूरा अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ, वो क्राउड वही था, तो
0: जी जी जी जी
1: वहाँ पे बहुत उन लोगों का वो शोर, वो आज भी आंखों के सामने आता है
0: जी वो जो
1: कि थोड़ा,
0: एक उत्तेजना वाला एटमॉस्फियर बना होता
1: यस
0: है,
1: यस
0: एक
1: यस यस,
0: एक्सपोजर
1: वो
0: होता है।
1: एनर्जेटिक,
0: जी जी
1: करेक्ट
0: जी
1: करेक्ट, और
0: जी
1: कोई गलत गा रहा है तो उसपे
0: जी
1: हंगामा, ये वो
0: जी
1: चीजें वो सब चल रहा था।
0: जी वो तो जो दौर
1: तो
0: होता है कॉलेज के दिनों का, वो पूरी जिंदगी
1: यस
0: के
1: यस
0: सभी
1: यस
0: दौरों में से सबसे
1: यस यस
0: यादगार
1: यस यस,
0: रहता
1: वो
0: है। जी
1: हाँ वो कहीं पे तो छुपा रहता है वो हमेशा के लिए।
0: जी और हमें हमेशा एक मुस्कान ही देकर
1: तो
0: जाता है जब भी हम याद
1: यस
0: करते
1: यस
0: हैं। जी
1: यस
0: हाँ
1: यस,
0: जी
1: तो वहां का एक सीन ये हुआ था, हमारा अनाउंसमेंट हो गया, हम स्टेज पे गए, मेरे को पार्टनर थे, तो स्टेज पे जाने के बाद वो बोले कि आनंद मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो भी नए थे, ऐसे प्रोफेशनल सिंगिंग वगैरह नहीं थे। तो उनको बोला मैंने कि आप आंखें बंद कर लो 3-4 मिनट के लिए बस, और गा लो। और हालांकि उनको देख के थोड़ा मैं भी हड़बड़ा गया था।
0: हाँ होता है ऐसे, इन्फेक्शियस होती है ये चीज।
1: तो फिर इंतहा हो गई उस सॉन्ग का, तो स्टार्टिंग का जो ऑर्डरिंग है उसका वो मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे भी जितना क्राउड नॉइजी था वो शांत हो गया
0: क्या बात है, क्या
1: वो
0: बात है
1: टाइम में भी।
0: जी।
1: तो बीच में वो मोहन कुमार जो थे वो खुद जज कर रहे थे कंपटीशन, तो उन्होंने ताली बजाई और रुकने को बोला, तो थोड़ा मैं वहां पे स्टॉप करके फिर रुक गया। तो उन्होंने बोला यही फिर से आप गाओ स्टार्टिंग। फिर से मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर जो है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, वो पूरा तालियां वगैरह ये वो दे, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा।
0: वाह
1: और परफॉर्मेंस के बाद में जो कमेंट मुझे मिला जजेस से, कि उन्होंने जो डुएट कंपटीशन था उस साल से उन्होंने इंडिविजुअल भी प्राइज देना स्टार्ट किया। और
0: क्या
1: वो
0: बात
1: पहला
0: है,
1: विनर बैठा वहां पे म्यूजियम में।
0: बहुत खूब।
1: तो ऐसे मेमोरीज अभी तक संभाले रखा हूँ,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: वो आज भी मैं वो
0: आपके दिल के बहुत करीब हैं।
1: गाने, हाँ, और गाने के जरिए मैं एंजॉय करता हूँ वो मोमेंट
0: जी
1: आज भी।
0: जी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: आनंद जी, आपके पसंदीदा गायक कौन कौन है? जो हमारी इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें जो प्लेबैक सिंगर्स
1: बॉलीवुड
0: हैं।
1: इंडियन
0: जी
1: ऑफ कोर्स गॉड ऑफ वॉइस किशोर दा,
0: जी जी जी जी
1: रफी साहब, लता जी,
0: जी
1: और आज के दौर के सोनू निगम जी और
0: जी जी
1: कुमार सानू दा।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इनको सुनने में बहुत डिफिकल्ट सिंगर्स है इनको परफॉर्म करना, बट सुनने में बहुत आसान लगता है। ये खास खास बात है, स्पेशली
0: हाँ,
1: सोनू निगम जी।
0: स्पेशली सोनू निगम जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाँ
0: वो
1: जी, हाँ
0: जितने
1: जी,
0: हाई नोट्स को इतनी आसानी से ले जाते हैं
1: हाँ हाँ
0: और हम तो शायद सोच
1: सुनने
0: भी
1: में
0: नहीं
1: आसान
0: सकते
1: लगता
0: हैं।
1: है।
0: जी, और
1: यस
0: बहुत
1: यस
0: ही
1: सुनने में
0: खूबसूरत
1: बहुत
0: गीत।
1: आसान लगता
0: हाँ, बहुत
1: है।
0: ही खूबसूरत
1: यस
0: गीत।
1: यस
0: हाँ, तो ये तो सारे बहुत ही महान कलाकार हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि इन पांचों में से आप किसी भी एक के साथ शाम बिता सकते हैं, तो आप किसको चुनेंगे और आप उनसे क्या एक सवाल करेंगे जो कि आपके हमेशा जहन में रहता हो?
1: ऑब्वियसली सब लीजेंड्स लोग हैं संगीत के, मैं तो कहूंगा भगवान है ये लोग।
0: जी बिल्कुल।
1: पर जैसे आपने पूछा, एक ऐसा पल मैं गुजरना चाहूंगा कि किशोर दा के साथ, और वहां पे सच को तो कोई सवाल नहीं होगा मेरा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। अगर पूछना होगा तो बस इतना पूछूंगा कि किशोर दा आपने जल्दी विदा ली, और बाकी तो बस लाइव उनकी आवाज सुनने को मिलता ये काफी होता।
0: वाकई बहुत जल्दी उन्होंने विदा ले ली, और
1: हाँ जी,
0: जितने जिंदा दिली उनकी शख्सियत में थी, किस तरह वो मुस्कुरा के नाच के सबका
1: एग्जैक्टली
0: मनोरंजन करते थे और गाते थे, अभिनय करते थे, इतना मल्टी टैलेंटेड उनकी
1: करेक्ट
0: पर्सनालिटी
1: करेक्ट
0: थी,
1: करेक्ट।
0: उनको देखते ही दिल
1: दूसरियों में
0: में
1: मिरेकल्स
0: फैल।
1: होता
0: जी। आनंद जी, परिवार का आपके संगीत के सफर में कितना सहयोग रहा है?
1: है। परिवार का बोले तो पिताजी को मेरे इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगता है लेकिन इतना मोटिवेट नहीं करते थे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या है, इस तरह से उनको
0: जी
1: होता था।
0: जी
1: लेकिन जब भी वो मेरे सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस देखते या दोस्तों से सुनते तो वो उनको अच्छा लगता था, थोड़ा प्राउड फील करते थे, लेकिन
0: जी
1: उनका रुचि नहीं था इसमें।
0: जी और आपकी धर्मपत्नी?
1: मेरी धर्म पत्नी एक्चुअली, मेरा 2000 में मेरा सिंगिंग टोटली बंद था मेरा,
0: अच्छा
1: तो समाओ मेरा वो बाकी जिंदगी शुरू हुई थी आफ्टर कॉलेज,
0: जी
1: तो ये गाना थोड़ा पीछे पड़ा था। तो अभी कोविड के चलते वो मौका मिल गया, घर पे बैठे बैठे कुछ ऐप थे उसमें मेरे गाना चालू किया, तब जाके अब भी बीवी को पता चले मैं गाता हूँ, उसको भी अच्छा
0: अच्छा
1: लगा।
0: चलिए बहुत बढ़िया।
1: तो भी
0: तो क्या
1: इसके
0: आपकी
1: पहले उसे
0: धर्मपत्नी भी
1: नहीं
0: गाती
1: मालूम था।
0: हैं?
1: नहीं, वो सुनती अच्छी है, गलती निकलती है बहुत।
0: अच्छा।
1: वो कान से थे, बहुत बारीक बारीक गलतियां बताती है।
0: जी। तो गलतियों से याद आया कि हमारे श्रोता बेचैन हैं आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: गीत तो बहुत सारे हैं जो काफी मोटिवेशनल भी है
0: जी जी
1: और
0: दो
1: मैं पसंद भी
0: पंक्तियां
1: करता
0: गुनगुना
1: हूँ।
0: दीजिए। आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू बैठे हैं तो
1: जी
0: मैं
1: बेशक
0: चाहूंगी।
1: बेशक बेशक।
0: जी
1: किशोर दा का सॉन्ग है, यादगार मूवी से,
0: जी
1: 1984 को रिलीज हुई थी मूवी, तो कोशिश करता हूँ दो लाइनें सुनाने की।
0: जी जी
1: रो ना उदास हो ना, ये आंसू खो ना, यहाँ न दामन भिगो ना, कभी पाना है कभी कुछ पाना है, कभी कुछ खोना है, यहाँ जो होना है होगा वही, यही जिंदगी है, यहाँ जिए वही लोग जो सारे गम भुला के आंसुओं में मुस्कुराते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं।
0: वाह
1: चले जाते हैं, आते हैं।
0: क्या बात है
1: बहुत
0: आनंद
1: प्यारा
0: जी,
1: सॉन्ग है। थैंक
0: आपने गाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है,
1: यू, थैंक यू
0: मजा आ
1: सो मच।
0: गया। तो हमारे सभी श्रोताओं और उन लोगों के लिए जो अपने सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा?
1: काफी मुश्किल सवाल है, बस इतना कहूंगा कि सपना देखना छोड़ो मत,
0: जी
1: सपने देखते रहो, बाकी जो ऊपर वाला देता है कबूल कर लो, सिंपल।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत संदेश है आपका आनंद जी। आपने अपने अनुभवों और सुरों से आज की इस महफिल को सचमुच यादगार बना दिया है। हमारी शुभकामना और हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि आपकी आवाज यूं ही लोगों के दिलों तक पहुंचती रहे और आपके जीवन में सफलता व खुशियां हमेशा आपका साथ दें। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू
0: जी।
1: सो मच।
0: जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और खास एपिसोड में, एक नई शख्सियत और संगीत की एक नई महफिल के साथ। मैं हूं आपकी आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है, आपकी आवाज आपकी पहचान, और हम लेके आए हैं खूब सारे सुरीले सिंगर। और शुरुआत करते हैं जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में इस गीत से।

जी हाँ, आज आपको चुप नहीं रहने देंगे हम, आपको गाना पड़ेगा और जयपुर रेडियो का मंच है गाने के लिए और आप सुरीली सिंगर्स में हैं तो चुप रहने की बात तो बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज हमारे साथ सुरीले सिंगर्स प्रोग्राम में जगदीश अरोड़ा हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से। अपने सुरीले गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत है मधुसूदन जी का प्रोग्राम सुरीले सिंगर जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

बेहतरीन सुरीली सांझ में हम सुन रहे थे पंजाब से मधुसूदन जी का ये सोलो गीत, बहुत ही बेहद खूबसूरत गीत हमने सुना, आ गले लग जा। आइए सुनते हैं अगला गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान, प्रोग्राम सुरीले सिंगर, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

वीरेंद्र जी की आवाज में हमने ये बहुत खूबसूरत गीत सुना, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारो। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और आप हमारे सिंगर हैं और हम आपको अपना ही कहते हैं। और हमारे अपने एक और सिंगर हैं जिनका नाम है जगदीश अरोड़ा, गोविंदगढ़ मंडी पंजाब से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आपकी आवाज में, जगदीश अरोड़ा साहब की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो।

आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुरीले सिंगर्स। और अभी आपने सुना पंजाब गोविंद।

अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

用配色干嘛的，用不代表让灯。

कोटि कोटि दिगंबरा, आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो पर आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मत में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले, सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले, इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में। कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

बम बम भोले की शरणम, शिव शंकर की शरणम, और शिव सदा सहाय रहे। आपने सुना प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही थी जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। बहुत आभार, धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल।

चलना काम है हम सभी का, और समय तो चलने में सबको पीछे छोड़ देता है। हम एक साल और आगे बढ़ गए हैं गीतों के इस कारवां के साथ, आपके साथ गीत गाते गाते। हाँ, वो गीत तो आपने सुना ही होगा, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। और गीत गाने की मंजिल है आपकी, प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। और इस मंजिल पर हमारे साथ आपको ले जाने वाली आवाज अर्चू रानू और मैं आरजे भूमिका आपके साथ। और हम दोनों के साथ आ गए हैं भूपेंद्र 1973, अर्चू रानू 16 का साथ देने इस प्रेरणापद गीत में, खुशबू देते गीत में और महकती आवाज के साथ।

चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। अर्ची और भूपेंद्र के इस गीत के बाद प्रीत को बनाए रखने वाले वादे के साथ हिदायत नजर ना चुराने की। इस गीत में डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैरी आ गए हैं अर्चू रानू का साथ देने।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं इस नए वर्ष में अपना नया अंदाज लिए अर्चु रानू 16। अपने गीत में कह तो रही हैं वीजी विनोद गुप्ता के साथ, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।

वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू कह रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना क्या सुनना है, समय का ये पल थम सा गया है। थमे हुए इस पल को संजो के रखते हैं और आइए सुनते हैं धनंजय और अर्जुन रानू को दिल की बात कहते हुए।

दिल है कि मानता नहीं, और आप हैं तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, आपकी नजदीकी भी है और मनाने के अंदाज भी। एक बार फिर धनंजय अर्जुरानू के संग इस प्यारे से गीत में।

0: धनंजय और अर्चु रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में अनुराग। मुंबई से अनुराग हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और अपना गीत लेके आपके लिए आ गए हैं। कई बार प्यास शब्दों से बयां नहीं की जाती, लेकिन गीत चीज ही ऐसी है कि हम बता सकते हैं मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, कह रहे हैं इस गीत में अनुराग। आइए सुनते हैं।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया है उस ऊपर वाले ने मेरे लिए, शायद यही कहने के लिए आ रहे हैं जयपुर रेडियो को अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर।

सुना आपने अनुराग को और ख्याल आया तो ख्वाब भी आया और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में अपनी आवाज में अनुराग। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। और हमारे श्रोताओं से हमारे फासले नहीं, नजदीकियां होती हैं और दूरियां, और दूरियां हमारे जो सिंगर्स हैं वो मिटा देते हैं। अनुराग की आवाज आपने सुनी प्रोग्राम में, आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, सुनते हैं।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया है उस ऊपर वाले ने मेरे लिए, शायद यही कहने के लिए आ रहे हैं जयपुर रेडियो को अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के मेल सिंगर।

सुना आपने अनुराग को, और ख्याल आया तो ख्वाब भी आया, और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं प्रोग्राम में आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में अपनी आवाज में अनुराग। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

से सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, और हमारे श्रोताओं से हमारे फासले नहीं, नजदीकियां होती हैं और दूरियां, और दूरियां हमारे जो सिंगर्स हैं वो मिटा देते हैं। अनुराग की आवाज आपने सुनी प्रोग्राम में, आवाज हूं तो तू है कि

में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया। वेलकम है, स्वागत है ओम प्रकाश नर्सरिया का इस खास प्रोग्राम में। और पूछ रहे हैं चांद से, और चांद क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और चांद की बात को पहचान लेते हैं। आओ करें चांद से चांद की बातें। चांद हमारे संग हो फिर भी होती रहती है ऐसी मुलाकातें।

मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार से। और ये हसीन गीत हमें सुना रहे थे ओम नर्सरिया, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला सॉन्ग, दर्द की आवाज और दर्द भरा गीत गा रहे हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया।

0: ओम नर्सरिया झारखंड रांची से हमारे संग हमारे साथ।
1: आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते दोस्त, मुस्कुराओ।

0: क्या समझे, कुछ समझे,
1: बिल्कुल समझे
0: पहुंच डालो
1: और बहुत ही खूब समझे, पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। और ये खूबसूरत गीत आज के कलाकार, हमारे आज के सुरीले मेहमान रफी साहब का ये गीत गा रहे थे, ओम नर्सरिया झारखंड रांची से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं ओम नर्सरिया का ये अगला सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं ओम नर्सरिया और सोनिया सालिग्राम की आवाज। सोनिया साथ दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया से ओम नर्सरिया का।

हम नहीं कहेंगे शब्बा खैर ओम नर्सरिया को, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज और इतने ही सुरीले गीत लेके आए हैं तो कैसे कहेंगे भला। एक गीत तो आपको और ही सुनाना पड़ेगा, और वो गीत जो हजार राहें मुड़ के देखी गा रहे हैं ओम नर्सरिया और साथ दे रही हैं प्रिया माहेश्वरी चेन्नई से। आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: बेवफाई भी थी तो वफा से वफा।
1: हमारी थोड़ी सी बेवफाई, और ये सुरीला सॉन्ग आपने सुना, दोगाना सुना आपने। प्रिया माहेश्वरी साथ दे रही थी ओम नरसरिया का चेन्नई से, और आइए अब आ गई हैं प्रज्वला ओम नरसरिया का साथ देने इस नटखट से गीत में।
0: हेलो विजया, हेलो डियर।

0: आपने सुना सुरीला दुगाना, आवाजें रही ओम नर्सरिया के साथ प्रज्वला प्रिया की।
1: नमस्कार, भक्ति प्रभा समूह की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सर्वविदित है और पुराणों में भी अंकित है कि परमात्मा ने मनुष्यों की रचना तो बाद में की, लेकिन उससे पूर्व मुक्ति के मार्ग रच दिए। मुक्ति के मार्ग यानी पूजा, अर्चना, भजन। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम उसी परमपिता ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित है। सुखकर्ता, दुखहर्ता, प्रथम पूजनीय गजानन। जी हाँ, गणेश जी हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं, जिन्हें गौरीपुत्र गणेश के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी शुभ काम करने से पहले हम गजानन को मनाते हैं। तो चलिए, बुला रही हूँ संजय हारने जी को गणपति बाप्पा को मनाने, रिझाने और लुभाने के लिए।

संजय हारने जी द्वारा गणपति बप्पा की स्तुति। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, सरस्वती माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी मानी जाती है। अज्ञानता के घोर अंधकार में ज्ञान का प्रकाश माँ की कृपा से ही संभव है। प्रस्तुत है संजय फड़के जी के द्वारा माँ सरस्वती जी की स्तुति।

ये थी भक्तिमय प्रस्तुति संजय फड़के जी के द्वारा। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव, मुरली मनोहर कृष्णा, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ विष्णु जी के आठवें अवतार कन्हैया की। कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए चारुल कान्हा को बोल रही हैं, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्णा।

कान्हा का ये मनमोहक भजन अपनी आवाज से सजाया चारुल ने। आज की इस वैश्विक बीमारी के चलते मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इतिहास गवाह है, जब भी विपदा आई है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगली पेशकश ईश्वर से प्रार्थना कि वो अपनी असीम शक्ति से दुनिया को इस महामारी से छुटकारा दिलाए। सचिन नादकर्णी गुहार कर रहे हैं ईश्वर से, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम।

बेहद सुरीली प्रस्तुति सचिन नाटकर्णी जी के द्वारा। दोस्तों, भगवान से लौ लग गई तो आत्मा परमात्मा में लीन सी हो जाती है। आकाश की ऊंचाइयां या फिर सागर की गहराइयां प्रेम और भक्ति के आगे मानो छोटी सी हो जाती हैं, और फिर सिर्फ सुमिरन ही दिखता है। क्या सुबह क्या शाम, ऐसा ही कुछ भजन लेकर आ रही है रमा वी।

बेहद लुभावनी प्रस्तुति रमा वीजी के द्वारा। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव हैं शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई आरंभ, न कोई ओर है, न कोई छोर, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। शिव की महिमा के गुणगान करने आ रहे हैं दीपा जी।

0: ईश वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और करीब ले जाने का, एक खूबसूरत निश्चल प्रयास भक्ति प्रभा समूह की ओर से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा। आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मन में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में मन

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले, सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले, इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

कहत अलका उपाध्याय दुख हरो दारिद्र हरो कष्ट हरो रोग हरो पीड़ा हरो दर्द हरो हे हरो सबका भला करो हे भोले हे शिव शंकर आपके सिवा

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेज़मियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माताजी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब हजार लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थीं 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

हेलन जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थीं। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इंकार का ये धमाकेदार गाना।

हेलन जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम किस लिए, इसलिए बात कुछ बन ही गई, इसलिए आइए सुनते हैं समृद्धि चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत ये खास प्रोग्राम।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं समृद्धि सियाटल से जयपुर रेडियो के श्रोता गणों का फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं गीतों के सवाल और गीतों के जवाब प्रोग्राम का तीसरा अंक, जहां हर गीत अपने साथ एक सवाल लेकर आता है और अगला गीत उस सवाल का कोई एहसास भरा जवाब दे जाता है। आज की हमारी महफिल समर्पित है उन भूले बिसरे गीतों को, उन नगमों को जिनकी धुनों में एक पूरा दौर बसा हुआ है। पुराने गीतों की एक खूबसूरती होती है, इनमें प्यार का शोर नहीं होता, बस एक धीमी सी आहट होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक अधूरी सी बात, और उन्हीं में पूरी कहानी छुपी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक मुलाकात जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गई, फिर एक सफर शुरू हुआ, कुछ ख्वाब जागे, कुछ सवाल उठे, कुछ यादें बन गईं, और अंत में कुछ एहसास हमेशा के लिए दिल में रह गए। तो आइए चलते हैं उन सुनहरे दौर की ओर, जहां गीत सिर्फ गाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे।

जब दिल किसी का हाथ थाम ले तो मंजिल से ज्यादा भरोसा उस साथी पर होता है। रास्ते अनजान हो तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि साथ किसी अपने का होता है। फिर भी मन का एक कोना मासूमियत से यह पूछ ही बैठता है सवाल, सिर्फ मंजिल का नहीं, उस सफर के साथ निभाने वाले का भी होता है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर सितारों के।

और जब दिल किसी के साथ चल ही पड़ता है तो ख्वाब भी जागने लगते हैं, फिर रातें छोटी लगती हैं, इंतजार लंबा हो जाता है, आंखों में नींद कम और उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मोहब्बत का वह पहला मौसम जब दिल हर पल किसी खास एहसास में डूबा रहता है और यह सोचता है कि अब भला कैसे नींद आए। आइए सुनते हैं जब भी

प्यार चाहे कितनी भी खामोशी से क्यों ना हो, उसकी आहट दुनिया तक पहुंच ही जाती है। फिर निगाहें सवाल पूछती हैं, मुस्कुराहटें इशारा करती हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि मुलाकात हुई क्या बात हुई। इस गाने में मेरा साथ देते हुए हैं रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

हर कहानी में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें इंसान अपने दिल में के किसी कोने में संभाल कर रखता है। कभी पहली मुलाकात, कभी पहली मुस्कान, कभी वो पल जब लगा था कि शायद यही रिश्ता जिंदगी भर का साथ बन जाएगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ रास्ते साथ चलते हैं और कुछ रास्ते धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। ऐसे में दिल पीछे मुड़कर कुछ सवाल पूछता है। इसमें शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक उम्मीद है कि जिस मुलाकात ने मेरे दिल में इतनी गहरी जगह बनाई, शायद उसकी कोई हल्की सी परछाई तुम्हारी यादों में भी बाकी हो। सुनिए मेरा साथ देते हुए पंकज जी को रांची से, और ये खूबसूरत नगमा, तुम्हें याद होगा कभी।

क्योंकि हर प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां हमें जिंदगी के बड़े सवालों से भी मिला देती हैं। क्यों कुछ लोगों को उनका प्यार मिल जाता है और क्यों कुछ लोगों के दिल इंतजार करते रह जाते हैं। क्यों किसी के हिस्से में खुशियां आती हैं और किसी के हिस्से में सिर्फ यादें। साहिर लुधियानवी का यह गीत किसी एक इंसान की शिकायत नहीं है, यह उन तमाम दिलों की आवाज है जिन्होंने मोहब्बत को महसूस किया लेकिन उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। शायद इसीलिए यह गीत आज भी उतना ही अपना लगता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर आता होगा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आइए सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों का मैं प्रेरणा आपकी आज की होस्ट लफ्जों की गुजारिश में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीवानेपन की, दीवानगी की, दीवानों की। कोई सर्द मौसम का दीवाना होता है, कोई खुली हवाओं का, किसी को बरखा बहार दीवानी कर देती है और किसी को सावन की घटा। एक बादल की दीवानगी को दिखलाने के लिए मैं स्वागत करूंगी नीरज और रानी अय्यर जी का, जो फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार गीत दीवाना हुआ बादल गाएंगे।

भाई वाह, हम तो आपकी आवाज के दीवाने हो गए। आंखें मिलती हैं, इकरार होता है और प्यार की उमंगे अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। उषा जी और ऋषि कुमार जी शायद हमें यही बताने आ रहे हैं इस गीत के साथ, जिसके बोल हैं, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, जिसे 1950 में बनी फिल्म बाबुल के लिए तलत महमूद साहब और शमशाद बेगम जी ने गाया था। आइए सुनते हैं।

0: आहा, किसी ने सच ही कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। जब दीवानेपन की बात होती है तब दिल की दीवानगी को कैसे भला नजरअंदाज किया जाए। ये दिल जब किसी के प्यार में पागल होता है तो क्या होता है, शायद बिनीता जी और राहुल वर्मा जी हमसे यही बताने आ रहे हैं। गीत के बोल हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: दिल

दोस्तों, क्या आपको जयपुर रेडियो की खासियत पता है? जयपुर रेडियो के माध्यम से हम आप तक ऐसे गीत भी पहुंचाते हैं जो आम तौर से कहीं गाए नहीं जाते, पर बेहद खास होते हैं। ऐसे ही कुछ दिलवाले दीवानों की अनसुनी कहानी सुनाएंगे हैरी जी और मनीषा जी फिल्म सितमगर के इस गीत के साथ।

वाह मजा आ गया। कॉलेज में मस्ती करते हुए, धूम मचाते हुए, दोस्तों में दीवानों के किस्से तो बन ही जाते हैं। आइए बुलाएं रेक्स जी और समीना जी को इस प्यारी सी नोकझोंक के साथ। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना।

जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी का दीवाना बन के रहना भी मोहब्बत ही होती है जनाब। बुलाना चाहूंगी राजेश पारकर जी, जो मेरे साथ यानी आपकी आज की होस्ट प्रेरणा के साथ ये गीत गाएंगे। तुझमें क्या है दीवाने, आइए सुनते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है श्रोताओं। सच कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, हम संगीत के दीवानों के लिए भी नहीं। मैं तो दोबारा मिलने का वादा जरूर पूरा करूंगी, पर आप सब भी जयपुर रेडियो सुनते रहने का वादा जरूर निभाइएगा, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
2: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये

प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं,

कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की, कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी ना किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी।

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है, और ऐसी ही सिचुएशन के लिए ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत।

आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हो, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों में सवाल और सवाल के जवाब लाजवाब। अपनी गायकी यानी अपने गीतों के साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसलिए किस लिए, अपनी सिंगिंग और अपनी शानदार एंकरिंग के साथ इस प्रोग्राम में हमारे संग रहेंगी सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम किस लिए इसलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, जयपुर रेडियो के श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं समृद्धि सियाटल से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दूसरा अंक किस लिए इसलिए प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं, जो प्रश्न होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, क्यों, उसके उत्तर हम गीतों के जरिए दे सकें। हमारे गीत ही जवाब देंगे, हमारे गीत ही प्रश्न करेंगे। आशा करती हूँ कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी। अक्सर रिश्तों की शुरुआत छोटी सी शिकायत से होती है, शिकायत भी ऐसी जिसमें नाराजगी कम और अपनापन ज्यादा हो। जैसे यूं मानो कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। शुरुआत करते हैं आज की कड़ी की इस प्यारे से नटखट से गाने के साथ। माना जनाब ने पुकारा नहीं,

कई बार हम चाहते हुए भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकते या वैसा बिहेव नहीं कर सकते, एटलीस्ट पब्लिक में, जैसा हम सच में करना चाहते हो। यही तो खास बात है पुराने हिंदी गीतों की, कि हर सिचुएशन को उसने इतने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है कि आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है किसी ना किसी प्यारे से गीत में। तो आइए सुनते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, आहा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब हंसी मजाक की बातें कब दिल में घर कर जाती हैं पता ही नहीं चलता। जब मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है तो हर वक्त बस एक ही ख्याल रहता है कि हम अपने चाहने वाले के साथ हों, वो कहाँ हैं। और इसी बात पे एक और प्यारा सा गीत प्रश्न से भरा मुझे जो याद आ रहा है वो है

जिसका हमें इंतजार था, या फिर शायद हमें पता ही नहीं था कि हमें इंतजार किसका है। जब ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो दिल में आहट तो होती है और आंखों में चमक उठ जाती है, दिल में झनकार बज जाती है और दिल आपसे कुछ ऐसे बात करता है कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी।

कई बार सिर्फ हमें किसी साथी के मिल जाने से हमारी तलाश पूरी नहीं होती। कई बार लाइफ या जिंदगी के सवाल और गंभीर होते हैं, केवल प्यार इश्क मोहब्बत तक नहीं रह जाते। कई बार इंसान को समझ नहीं आता है कि उसे आखिर चाहिए क्या है। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही बात को याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत।

आपसे सवाल सिर्फ दुखी होके या उतावला होके नहीं पूछता, कभी कभी खुशी में भी सवाल पूछ बैठता है कि वाह क्या कहना। कई बार जब आप अपने परिवार वालों से घिरे हों, जब अपने प्यार करने वालों से घिरे हो, जब आपका घर पूरा हो, तब दिल खुशी से पूछ बैठता है, ए दिल।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। शीतल बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने एक गीत सुना है उसी से हम कह रहे हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे शीतल से और आप उनकी शीतल सी वॉइस को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बाप रे बहुत अच्छा गाती हैं। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। और हमारे संग हमारे साथ अपने परिचय के साथ शीतल वापरे। शीतल क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को अपने परिचय के रूप में?
1: धन्यवाद गाइस, और धन्यवाद व्यास हरिशंकर जी, आपने मुझे जयपुर रेडियो प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो पे आज मेरे रेडियो पे प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। हाँ,
0: और अपने बारे में बताएं कि आप कब से गा रही हैं और क्यों गा रही हैं?
1: मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग की शुरुआत ही मेरे भजन से हुई है, और उस वक्त पता नहीं चला था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ।
0: अच्छा, और भजन, ये प्रेरणा मुझे में भजन,
1: हाँ,
0: से
1: भजन से हुई।
0: तो कौन सा भजन था, उसके बोल भी हम सुनना चाहेंगे?
1: छोटे बच्चों के लिए बालोपासना, बेलगांव जो शहर है सिटी, उसमें श्री कलावती देवी, उनके भजन मैं गाती थी छोटे बच्चों के लिए बालोपासना। तो मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे माइक में ये बालोपासना का जो भजन है वो बोलने का अवसर दिया। तो
0: उसकी दो लाइनें हम सुनना चाहिए।

0: सुनेंगे, कैसा था वो?
1: मराठी में है
0: जी। जी
1: श्री गणपते विघ्न नाशना मंगल मूर्ते मुषक वाहना
0: क्या बात,
1: तिमिरे नाशिषी निज ज्ञान देवनी। बस इतना है, बहुत बड़ा है, मैं अभी
0: समझ गया,
1: इतना इतना ही गा सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो हम यही सुनना चाह रहे थे कि उससे उसके नाम से विघ्न विनाशक के नाम से शुरू हो तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम विनायक विघ्ननाशक उस
1: गणपति बप्पा
0: को प्रणाम करते हुए आज का
1: प्रणाम
0: ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कौन सा गीत हम सुनाएं आपको, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? पहला गीत
1: दश मेरा मैं पहले ये गाना सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को।
0: जी
1: दशावतार मूवी हो गया था तेलुगु भाषा में, तो उसका हिंदी रिमेक था कमल हसन का, तो उसमें कृष्ण का जो गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: उसके थोड़े से बोल गा के सुनाएंगे।
1: मुकुंदा मुकुंदा मुझे मुकुंदा मुकुंदा यही होते हैं उसका शब्द।
0: मुकुंदा मुकुंदा, जी हाँ, तो मुकुंदा को याद करते हुए हम ये सॉन्ग

0: नजदीकियां, और सच में आवाज की नजदीकियां जो होती हैं वो माइक के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है, और हम गाते हैं, हमारी आवाज नई आवाज नई पहचान, एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे कहते हैं शीतल वापरे। शीतल वापरे हमारे साथ हैं आज इस प्रोग्राम में, और शीतल, बहुत ही सुरीला सॉन्ग हमने आपकी आवाज में सुना, क्या कहेंगे आप हमें और हमारे श्रोताओं को? आप गीतों से बहुत
1: मेरा गाना बहुत मेरे गाना मैंने जो गाना गाया है वो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आवाज?
0: वो तो हमारे श्रोता है बताएंगे, हमने तो पहला गीत सुना तभी हम नजदीक आ गए, और ये नजदीकियां जो है वो और सुरीली हो गई, और आज की शाम जो है वो आपके गीतों से महक गई, यही कहेंगे। और श्रोताओं को जिन्होंने अभी अभी जयपुर रेडियो ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, और हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली गाती हैं। और अभी शीतल, सुना होगा कि जो सोना है जिसको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, और जो लेडीज हैं वो गले में चैन वैन भी पहनती है, तो सोने के भाव बहुत ही आसमान छू गए, तो वो एक गाना भी है ना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, तो ऐसा गाना कोई है याद आपके जहन में और वो सुनाएंगी हमें, क्योंकि
1: हाँ है ना, तीसरी मंजिल का गाना है शम्मी कपूर जी और आशा आशा जी का, मैंने गाया है, आपको भेजा है मैंने।
0: बिल्कुल, आप थोड़ा सा सुनाएं वैसे तो अच्छा लगेगा।
1: ये जो गाना है वो अपने जो क्या बोलते प्रेमी है उसको मनाने के लिए बोला है आशा परिख जी ने।
0: अच्छा, वो वाला आशा
1: भोगेश जी की आवाज में।
0: अच्छा, वो
1: नहीं, वो वाला सोना नहीं है, अपने जो मनपसंद जो जो पर्सन है उसको सोना बोल रहा है उसके।
0: उसको सोना, अच्छा अच्छा,
1: हाँ उसको सोना बोला है, प्यार से सोना बोला है।
0: तो चलिए ये सोने जैसा गीत हम सुन लेते हैं आपकी आवाज में।

0: मैंने तुझे जरा देर में जाना रे, हुआ कसूर खपा मत होना रे। शीतल में मराठी, शीतल वापरे हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और शीतल का ये गाना, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम यदि समय पर फीडबैक मिल जाते हैं तो हम उनको इसी लाइव शो में शामिल भी करेंगे, इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक लिखना देना ना भूलें। शीतल वेलकम है फिर से एक बार। अब इस गीत के बाद क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कोई बात जो हमने ना पूछी हो?
1: ऐसी कोई बात नहीं सर, लेकिन ये गाना गाने की प्रेरणा है ये मेरी बुआ से मिली है, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन।
0: अरे वाह,
1: आज वो होती तो बहुत, आज वो इस दुनिया में नहीं है, होती तो बहुत उसको बहुत खुशी होती कि मेरे प्रोग्राम हो रहा है, मेरे रेडियो पे भी प्रोग्राम हो रहा है। वो होती तो बड़े चाव से वो सुनती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
0: वो मुझे भी आ रही है उनकी, और उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है ना, वो आपके गीत को सुन रही है, हमारी बातचीत भी सुन रही है। क्योंकि हम कहते हैं आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा,
1: बदल जाएगा,
0: मेरी आवाज ही पहचान है। तो जहाँ तुम्हारी बुआ है वो आवाज भी इस यूनिवर्स में ही है, कहीं नहीं गई है, और वही आवाज, वही आवाज जो है वो आज एक रूह के रूप में आपकी आवाज को सुन रही है, पहचान रही है, और वो कह रही है कि शीतल गा रही है, और उसकी शीतल सी बयार मेरे पास आ रही है, वो सुन रही है, बहुत ही मनोयोग से, मन से सुन रही है, और मुझे तो यही कह रही है कि आप शीतल का एक गीत और सुना दीजिए ना। तो हम सुना ही देते हैं आपको आपका ये गीत, हमारे सभी श्रोताओं को। आइए सुनते हैं सब मिलके इस गीत को, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बहुत सुरीली सुरीली सुरीली बहुत ही स्वीट वॉइस शीतल की हमारे साथ हैं आज लाइव इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शीतल, आवाज सुन के ऐसे लगता है कि एक स्केल पे गाती हैं आप, और आपका वॉइस पे जो कंट्रोल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, जो ऊंचा स्वर है उसको भी आप अपने सलीके से अपने कंट्रोल से उसको काबू में रखती हैं और फिर उसको गा लेती हैं। तो ये रियाज और ये सब जो चीजें हैं वो आपने कब सीखी, कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
1: जी, गाना गाने के लिए मैं गाना गानी रहती, और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं गाना ठीक से सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी गाना उसी तरह से गाना हो तो ठीक तरह से सुनना चाहिए। उसका जो चढ़ाव उतार जो है, हरकतें है, वो ठीक तरह से आनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंगर है उसी की आवाज से ही गाना है, वो कैसे गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है, वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मुझे हमेशा कोई पूछेगा कि आप कोई तो बताओ कि हम कैसे गा सकते हैं, क्या करना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पूरा गाना जो आपको गाना है वो पूरा ठीक तरह से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हम भी यही सलाह देते हैं जो इस मंच पे आते हैं उनको, कि कम से कम उस गीत को आप गाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले
1: उसके जो बोल है कुछ किधर रुकना है, किधर बढ़ाना है, वो ठीक तरह से सुनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये भी चाहिए कि याद भी होना चाहिए कि हम लोग सामने थोड़ी मतलब म्यूजिक रहता है, तो हमको जो याद होगा जो गाना वो अपने आप भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, देख के गाना भी एक अपने आप में अपराध ही है सिंगर के लिए, यानी उसे गीत याद होना चाहिए। हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें सामने मोबाइल लेके और गाना शुरू कर दिया, तो वो गाना जो है वो गाना नहीं होता। बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके सबको कहना चाहेंगे कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपको याद हो। आप उसको देख रहे हैं तो उसको बांच रही है, उसको पढ़ रही हैं, उसको पढ़ के आप सुना रही हैं। जैसे चिट्ठी आई है तो चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, उसी तरह से वो पढ़ना नहीं है, रीड करना नहीं है, गाना है। उसमें अपनी आत्मा को, अपनी आवाज को मिला देना है, एक साम्य होना चाहिए। ऐसा यदि
1: जैसे कि किसी को सिर्फ गाना सुनने का शौक होता है
0: जी,
1: किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को सिर्फ गाने का शौक होता है।
0: बिल्कुल, तो कुछ होते हैं जिसको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का शौक होता है, कुछ ऐसा होता है उनको गाने का शौक होता है पर सुनाने का नहीं होता। अगर आप सुनाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक सिंगर बनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो आपकी वॉइस में हमें ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं कोई चीज को छोड़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज को पहचान दी है। तो आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग जिसे आपने गाया है, यानी हमारी आज की सिंगर मेहमान शीतल वापरे, बहुत ही सुरीली आवाज की धनी है, इनकी आवाज ही अपने आप।

जो ये दम चल के जो अचल बिटल के बताओ चले कोई कैसे संभल के अताओं की नरमी निगाहों की गर्मी से तल बिकले और बैठ के दिल बहुत से फसाने बहुत से तराने सुनाने को आए हैं तेरे दीवाने साझा दिलों पे समझ तू है जाने जाने के मिल।

नंजानी राह में है तूने कहो में ये दिल जो मेरा है सच है कि तेरा से उजाला है वरना अंधेरा है तू है तो फिर क्या है कम मगर फिर भी मुझको ये तुझसे गिला है कि दोनों में अब तक ये क्यों फासला है ये दूरी मिटा दे ये पर्दे हटा दे अब एक हो जाए हम

0: थैंक यू, जय हो पंचम।
1: आज मुलाकात है, होने को पहचान है, और सच में मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी पुणे महाराष्ट्र की शीतल वापरे। नई आवाज नई पहचान, पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आना तो इनको पहले ही चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आई। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तो शीतल ही बताएंगी। शीतल क्या कहेंगी गीतों के बारे में, और किस तरह के गीत आप पसंद करती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप भजन से आपने शुरुआत की, गणपति बप्पा के, और उसके बाद आपने कौन से गीत गुनगुनाए, फिर गाए, फिर हमें सुनाए, तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे?
2: आज तक मैंने बहुत बॉलीवुड सॉन्ग गाए, मराठी भी सॉन्ग गाए हैं, और हिंदी, तेलुगु और नेपाली भाषा में भी मैंने गीत गाया है।
1: अरे वाह।
2: लेकिन मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ एक स्टार मेकर का ऐप है उसमें ही गाया है
1: जी।
2: और लेकिन मैं मराठी गाना बहुत पसंद करती हूँ, और मराठी, और मुझे गजल सॉन्ग भी पसंद है, मराठी में जो लावणी सॉन्ग है वो भी पसंद है, और ऐसा गाना गाना है कि जो इसमें वेरिएशन हो, जैसे कि अभी श्रीमती आशा भोसले ने जी, नहीं है हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो जिस तरह से गाने गाए हैं वैसे गाने गाने की मैं इच्छा रखती हूँ।
1: तो मतलब ये कि आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं, आपको कहा जा सकता है ना, आप पे ये मोहर लगाई जा सकती है कि आप हर तरह के गीत गा सकती हैं।
2: जिस जो भाषा मुझे अच्छी लगे, मधुर लगे
1: जी,
2: गुनगुनाती हूँ, तो अपने आप वो अब मन से उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं गा सकती, ये इस भाषा में मैं गा सकती हूँ। वैसे ही भाषा मैंने तेलुगु, नेपाली, तमिल में भी गाया है, लेकिन किसी को सुनाया नहीं अब तक अपने, मतलब
1: अब आपको, मेरे आपको मंच मिल गया है, अब आप सुनाइए और सुनाते रहिएगा। हमें तो आज मालूम हुआ कि आप तेलुगु, तमिल, नेपाली, मराठी, हिंदी और इतनी भाषाओं में गीत गाती हैं, और फिर इतनी लेट आती हैं, ये जो है ना गजब, अजब गजब बात है।
2: उनमें से तेलुगु और नेपाली भाषा बहुत फिट है, मतलब वो गाना गाने के लिए बहुत, मतलब ऐसे, मतलब हिंदी मराठी जैसा नहीं है, अपने आप मुंह में मुझे ओठों पे आ जाता है वो गाना, उसका जो शब्द है वो अपने आप आ जाता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ये जो मराठी या नेपाली में या तेलुगु तमिल में गाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा गाना, लेकिन आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात और सुनते हैं ये आपका एक अजब गजब गीत, रात अकेली है। आपने जो जिक्र किया कि हर तरह का चैलेंज आप स्वीकार करती हैं, तो इस गीत में देखते हैं आपकी आवाज।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से।

0: कानों में कुछ कहूं और कहना है सब सुनने वालों को कि शीतल बहुत अच्छा गाती है। और शीतल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं पुणे महाराष्ट्र से, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान की हमारी आज की मेहमान को, शीतल वापरे।
1: जी
0: क्या कहेंगे हमारे जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं लिसनर्स, वो उनके मैसेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सच में आपकी आज की सिंगर मेहमान की आवाज है। इस गीत को सुनने के बाद तो हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिए। और कौन कौन से सिंगर कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप गाती हैं, लाइक करती हैं?
1: वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है, जैसे कि लता जी, साधना, आशा भोसले, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, एसपी बालसुब्रमण्यम, और बहुत है, लेकिन मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी फेवरेट भी है, थी। और उसपे आडे जी का जो म्यूजिक है वो बहुत, उनकी म्यूजिक भी मैं पसंद करती हूँ, सब म्यूजिक मैं पसंद करती हूँ।
0: तो हमारी बात हुई थी मुकुंदा से, और मुकुंदा जो गीत है उसको हम थोड़ा सा आपकी आवाज में वैसे सुनना चाहेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ ये शीतल की आवाज से मैच करता है।
1: लाइव में क्या?
0: हाँ लाइव जी, थोड़ा सा गा के दो लाइनें गा के सुनाइए ताकि पता लगे जी, हमारे सुनने वालों को यकीन हो जाए कि हाँ एक वर्सेटाइल सिंगर जो है हमारे आज इस मंच पर है हमारे साथ।
1: ये दशावतार फिल्म है, तमिल में भी हुई थी और तेलुगु में भी हुई थी, कमल हसन उसके लीड हीरो है
0: जी,
1: और असीम एक्टर्स है
0: जी।
1: तो मैं उनका जो गाना है वो उस तेलुगु और तमिल भाषा में तो बहुत अच्छा है, लेकिन साधना सरगम ने जो गाया है, मुकुंदा मुकुंदा

0: वाह आनंद आ गया मुकुंदा, आनंद देने वाला शीतल की आवाज शीतल सी हमने सुनी इस सुरीले सॉन्ग में। क्या कहें समझ में नहीं आता, हम निःशब्द हो गए, इतना सुरीला गान ये तो आपके अलावा कौन गा सकता है। क्या कहेंगे शीतल, आप गाने तो गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग की आज की हमारी मेहमान हैं, और सुनने वालों को बता दें कि आज नई आवाज नई पहचान में हमारे संग हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली आवाज लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सिंगिंग के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और मुझे खाना बनाने का भी शौक है।
0: क्या क्या बना लेती हैं वैसे, आजकल तो बनाती नहीं है आजकल की महिलाएं,
1: सब,
0: तो
1: सब वेज नॉन वेज सब
0: सब बना लेती हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और गाना कितनी देर गाती हैं दिन में, आप कितना समय देती हैं गीत?
1: नहीं समय मिलता है वैसे गा लेती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मतलब माइक में मतलब कराओके मैं थोड़ा सा गाती हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से केजे यशुदास सिंगर है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो संगीत के इतिहास में सबसे महान गायकों में से वो माना जाता है। बहुत भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है, उनकी मधुर दिव्य आवाज को सम्मान में उन्हें गान गंधर्व मतलब स्वर्गीय आवाज कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि देवांचा आवाज, ये उपाधि उन्हें मिली है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके गाने भी सुने हैं, सदमा का जो गाना है रुमई अखियों से बहुत मुझे अच्छा लगता है।
0: बहुत ही
1: अपने पराए जो फिल्म है हिंदी, उसमें श्याम रंग रंगारे जो बंगाली थोड़ा सा सॉन्ग है लेकिन बंगाली म्यूजिक है उसमें
0: जी,
1: वो भी अच्छी लगती है।
0: आइए सुनते हैं
1: तुझे मेरे सुर में,
0: सदमा का ये सुरीला सॉन्ग जो आपने गाया है।

बदन में सांप चलते हैं तेरे बिना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

0: बहुत ही सुरीला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। नई आवाज, नई पहचान, और हमारा मन नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करें, लेकिन समय जो है वो कहता है कि आखिरी गीत सुन लिया जाए। तो शीतल हमारे साथ हैं। शीतल सुन ले हम, इजाजत है आपकी इस गीत के लिए?
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मार गई मुझे तेरी जुदाई। और उसके बाद शीतल क्या कहेंगी वो इस गीत के बाद हम सुनेंगे।

0: और समय ने अंगड़ाई ले ली है, फिर भी हम शीतल को कहेंगे कि जाते जाते चलते चलते क्या कहेंगी आप?
1: मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन कभी इतने लाइमलाइट में नहीं रही। यूं ही दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच। मैं मुंबई में रहती थी, शादी के बाद पुणे आई। कुछ साल बाद मुझे ये स्टेज शो करने का अवसर मिला, स्टूडियो में गाने का मौका मिला
0: जी।
1: मैंने करोके शो भी किए, चैरिटी शो भी किया, मध्य प्रदेश के रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था दो साल पहले
0: जी।
1: और ये सब करने के लिए मेरे पति ने बहुत मुझे सपोर्ट किया।
0: वेरी गुड।
1: उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू संजय, क्योंकि हर किसी को इतना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता घर से।
0: बिल्कुल, और नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर सकता। और
1: नहीं कर सकते सर। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल।
1: उनको भी गाना, उनको गाना गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना पसंद करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं, और मुझे वो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते भी है
0: कि इसको यहाँ से ठीक
1: करो। हाँ, बराबर, यहाँ से ठीक करो, वहाँ से ठीक करो, क्योंकि पहला गाना मैं उनको ही सुनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: वो बोलते मुझे ये सजा क्यों, लेकिन आप ने मुझे चांस दिया तो आप ही मेरा गाना सुनेंगे पहले।
0: ये सजा नहीं है, ये तो सजा नहीं, क्योंकि ये तो मजा है संगीत
1: ये का। प्यार है, ये प्यार है,
0: ये प्यार भी है और ये संगीत का मजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: और सर आपको भी धन्यवाद,
0: हमारे को प्रोग्राम, हमारा धन्यवाद तो हमारे श्रोता देंगे हमें, और आप आई इस मंच पे और हमारे साथ इतनी बातचीत की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आभार कहेंगे, नमस्कार कहेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद शीतल वापरे, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से रही, प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं गीता दर्शन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश की सोनम उपाध्याय नोमी। सोनम जी जो हैं वो एक अच्छी रचनाकार हैं और कविताएं लिखती हैं, चिंतक है, विचारशील हैं, और बचपन से लेके अब तक जो भी अनुभव आपने अपने विचारों में शब्दों के द्वारा उतारे हैं वो कविताएं बन गईं, और उन्हीं के माध्यम से आज देश विदेश में अपना नाम और अपनी रचनाएं पहुंचा रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर हमारे साथ सोनम उपाध्याय नोमी हैं। जी हाँ सोनम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके बारे में जितना हम जानते थे वो तो हमने परोस दिया है हमारे श्रोताओं के समक्ष, अब आप बताएं और रूबरू हैं आप हमारे श्रोताओं से।
2: नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और इतना अच्छा अवसर आज मुझे मिला है कि मैं अपनी भावनाएं आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने मन की भावनाएं, देश के प्रति अपनी भावनाएं, किसी रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हैं उसे व्यक्त करने का। और कविता एक अलग ही तरह का सुकून आत्मा को देती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कविता शब्द है और शब्द एक सुकून जैसा काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति हताश महसूस करता है और कुछ शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कह दिए जाते हैं कि उससे एक सुरक्षा का भाव निर्मित होता है, एक आकांक्षा फिर से पैदा होती है, एक आशा मिलती है किसी व्यक्ति को। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता सबसे अच्छा माध्यम है उसका, सबसे सशक्त माध्यम है, और आज के समय में साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर व्यक्ति को।
0: तो कविता के बारे में आपने कहा कि अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कविता रचना। और सोनम हमारे साथ हैं, नाम सोनम है आपका, और सोने का भाव तो आजकल बहुत ज्यादा

0: ज्यादा उछाल खा रहे हैं। तो ये सोनम और उपाध्याय और उसके बाद नौमी, तो इनका क्या सामंजस्य है, जरा हमारे श्रोताओं को इसकी व्याख्या करके बताएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहाँ रहती हैं सोनम? कहाँ रहती हैं?
1: इंदौर रहती हूँ, इंदौर में रहती हूँ
0: जी। भारत का दिल है, है ना
1: जी? बिल्कुल। और दिल हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, उसमें दिमाग बहुत कम काम करता है और दिल बहुत ही ज्यादा भावुक होता है।
0: तो आज
1: ऐसा लगता है कि शायद
0: आज से हमें भी रख लीजिए और हमारे जयपुर रेडियो को भी रख लीजिए अपने दिल में।
1: बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल। जरा सी जगह दीजिएगा जी।
1: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। और सोनम मेरा नाम है और नौमी मेरी बेटी का नाम है, नौमी का नाम है उसका, घर का नाम नौमी है। मेरी इंस्पिरेशन है वो, तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मैं उसको एक देवी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा मानती हूँ, तो उसी के लिए मैंने अपने नाम के आगे नौमी लगाया है।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में अनूठा है। बहुत लोग अपने पति का नाम लगाते हैं या पिता का नाम लगाते हैं, पर आपने उस देवी का जो इस सृष्टि की वृद्धि में आपके साथ बढ़ रही हैं और आपकी देखरेख में बढ़ रही हैं, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस नाम का, कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं और उस सोच को सच में अपनी प्रक्रियाओं में कार्यशैली में ढालते हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो सोनम जी, कविता के बारे में आपने बताया, रचनाओं के बारे में बताया, कविता और रचनाओं के अलावा भी आप किसी क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं, चित्रकारी में या कहीं लेखन में, चिंतन में, किसी और दिशा में, खेल कूद में, इसके बारे में बताएंगे?
1: हाँ जी बिल्कुल। मेरा बहुत ज्यादा लगाव बचपन से ही रहा है साहित्य को लेके, कला को लेके। हमारे देश का, हमारे देश की जो धरोहर है, जो हमारे देश का इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज हैं इतने ज्यादा वीर रहे, इतने कलाकार हमारे देश में हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो भगवान के सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मतलब भगवान कभी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको वो कलाकार बना देते हैं, क्योंकि भगवान भी सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन किया है, हम सबका सृजन किया, और एक कलाकार भी सृजन करता है दिन प्रतिदिन। तो यह सोच है मेरी, और कहीं कभी किसी कोने में किसी हताश व्यक्ति, किसी निराश व्यक्ति को अगर हमारी कविताएं, हमारे शब्द, हमारी रचना के माध्यम से जीवन फिर से जीने की एक दिशा अगर मिल जाए, तो हमारा लिखना अभिभूत हो जाता है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है।
0: बहुत ही सुरीली और सजीव सोच है आपकी, और इसी का परिदृश्य आपकी कविताओं में देखने को मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो हो जाए एक रचना आपकी अपनी जुबानी सोनम।
1: मेरी बहुत ही उपाध्याय, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही प्यारी रचना है और कई लोगों को पसंद आती है, कई स्टेजेस पे मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह से है कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, कि यूना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब।
1: और आशा नहीं है, धन्यवाद, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, आशा नहीं है यो गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे नहीं सिर झुकाते रहिए, और जो तूफान में भी साहिल को, और जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी से हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते आपने ये सजीव सी, सजीली सी कविताएं सुनाई, जो जीवन का दर्शन भी है और जीने के ढंग को प्रतिपादित करती है आपकी रचना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में और जानना चाहेंगे कि आप कौन से रचनाकारों को पसंद करती हैं, किन कवियों को, कवित्रियों को, किन को सबसे ज्यादा लाइक करती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद के लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
0: यथार्थ लेखन बिल्कुल।
1: हम इसके अलावा जो निराला जी है, समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा और जी बिल्कुल, और परसाई जी हुए, हरिवंश राय जी हुए
0: जी,
1: जिनके जितनी मतलब जितने भी नाम लो उतने कम है। सब जब भी लेखन मेरे सामने आता है, अभी कुछ नवीन लेखन भी बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात भेजे हुए फरिश्ते हैं सब। जितना पढ़ा जाए उतना डेप्थ, मतलब इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कि जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, चित्रण बिल्कुल आपके सामने होता है और वही असली कविता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: संचित्र आपके सामने बहुत, बहुत सही बात आपने कही। और जो भी पढ़ता है ना, जैसे आपने पढ़ी तो आपके समक्ष एक एक परिकल्पना आपके दिमाग में एक नई सी फिल्म बनेगी और दूसरा पढ़ेगा उसके दिमाग में उसके सोच उसके शब्दों के अनुकूल दूसरी रचना और दूसरा दृश्य परिदृश्य होगा और तीसरा पढ़ेगा तो उसी रचना का एक तीसरा परिदृश्य होगा। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो सृजित होती हैं। और निराला जी की आपने बात की तो निराला जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसले वसना नवल वय लतिका मिली मधु तरु अरी पतिका। यानी लता और तरु जो है, वृक्ष और लता जो आपस में मिले हुए हैं, उसका इतना सुंदर कोमल दृश्य बनता है उस रचना को पढ़ के। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वसंत ऋतु है और इस ऋतु में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप ही अनुकूल हो गया है मौसम के, प्रकृति के। और आपने जिन रचनाकारों का नाम लिया है वो सच में अमूल्य है और उनकी रचनाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन रचनाओं को हम हमेशा याद रख सकते हैं और उनको जी सकते हैं और जिंदा रहने की ताकत उनमें रहती है। तो ये तो रचनाकारों की बात हुई, देश के राष्ट्रवीरों की, राष्ट्रभक्तों की बात भी कर ली ही जाए क्योंकि आप एक विचारशील हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं लिखती हूँ जी, बिल्कुल मैं लिखती हूँ और जब भी लिखने बैठती हूँ तो अपने माता पिता, मेरी बेटी, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अनमोल दोस्ती, और सबसे पहले मुझे अपने वीर सैनिकों की ही याद आती है कि इनसे ज्यादा किसी और के बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत ही मेरी एक भावुक कर देने वाली रचना है जो मैं जब भी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ अपने जब पुराने वीडियोस, तो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं रो भी देती हूँ।
0: संवेदनशील
1: इस तरह से है जी। इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे और देश की रक्षा के लिए लाल रंग से नहा जाते होंगे, कि कभी सोचा है, और पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी और गुब्बारों के नाम पे सिर्फ बम खाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, और याद तक नहीं होगा उन्हें कि कब परिवार के साथ होली मनाई है, याद तक नहीं होगा कि कब परिवार के साथ होली जलाई है, और परिवार की याद में पल पल कितना जल जाया करते होंगे, कभी सोचा है, और अपनी बेटी का खत पढ़कर आंखें नम हो जाया करती होंगी, कागज पे गिरा आंसू सूख जाता होगा लेकिन पलकों पे अटका आंसू कहाँ छुपाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे।
0: वाह, क्या चित्रण किया है और सोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है आपने। सोचते तो सभी हैं लेकिन आपकी जो रचना है वो हर सुनने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है, और सच में ये सोचना बहुत जरूरी है। और होली को आपने कहां जाके किस तरह से संयुक्त किया है, जोड़ा है और उसको अभिव्यक्त किया है, ये निर्ले ही बिरले ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये रही और सच में यथार्थ का बोध कराने वाली, क्योंकि हम घरों में बैठ के पेन कागज पर कितने भी संवेदनशील हों सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एक कठोर यथार्थ का सामना हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, हमारे राष्ट्र के रक्षक करते हैं। और इस ओर आपने सोचा और इसको बयां किया अपनी रचना के माध्यम से, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है सच में। आगे बढ़ते हैं और हमने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ बातों में ही देखा है और बातों से बहुत सारा जो रूप स्वरूप और अभिव्यक्त होता है वो आईना है, तो कुछ और बताएं अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में और कब से आपने लिखना शुरू किया। श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं सोनम उपाध्याय इंदौर एमपी से।
1: जी बिल्कुल, बचपन से ही लिखती हूँ मैं। माता पिता को बहुत ज्यादा साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान भी था, मम्मी पापा को सुनते देखा घर में, संगीत वाला भी माहौल था, तो धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसे चला, नहीं पता कि कब मेरा भी लेखन के प्रति, मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी साहित्य और पेपर कटिंग। उस टाइम पे पेपर में रचनाएं आती थी, तो आज तक मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है वो पेपर कटिंग्स। और जब सबसे पहले मुझे ऐसी मेरे मन में भावना आई कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। शायद मैं सेवेंथ या एट्थ क्लास में थी उस समय, तो सातवीं आठवीं कक्षा से शुरू कर दिया था लिखना। जी फिर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है, कुछ वाद विवाद है, तो उसमें थोड़ा कुछ अपनी लाइंस ऐड कर दी। फिर जब युवा उत्सव हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां फिर समय के साथ ऐसा अवसर हमेशा प्राप्त होता गया कि मेरी रचनाएं बाहर आती गई और फिर लोगों से इतना प्यार मिला। तो असली हकदार जो मेरे क्या बोलूं मैं आपको, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे परिवार वाले कह लीजिए, समाज, तो हमेशा उन्होंने मेरी रचना को सराहा, तो मुझे वो प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं अपनी रचना नहीं लिखती हूँ कुछ नया, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि नया क्या लिखा है इस बार, तो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया।
0: तो वो पहली रचना जो आपने बड़ी संकुचाते हुए बोली होगी कि सुन के लोग क्या कहेंगे, वो यदि याद हो तो हम सुनना चाहेंगे।
1: हाँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर वो ऐसा था कि एक प्यारा निराला ख्वाब मैंने देखा था, एक ये थी। और इसके पहले मुझे ऐसा याद है कि मैंने माँ के बारे में लिखा था कि जिसे प्रथम बार देखा वो माँ थी, जिसे प्रथम बार छुआ वो माँ थी, ऐसा पूरा कुछ सीरीज है उसमें जी। और फिर उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया, जिसे पहली बार महसूस किया वो माँ थी, जिन्होंने पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया वो माँ थी, और समय के साथ धीरे धीरे आभास हुआ कि वो माँ नहीं, माँ के रूप में ईश्वर की मुझ पे कृपा थी, ईश्वर की मुझ पे दया थी। ये पहली कविता।
0: बहुत ही खूबसूरत रचना, वो पहली रचना जो अनुभूत करती है हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ती है, इससे बड़ी और इससे घनत्व वाली कविता हो नहीं सकती। जिसमें माँ हो उसमें सब कुछ होता है, पूरी सृष्टि, पूरा संसार। तो इसके अलावा आप कोई रचना हमें और सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को, नारी शक्ति को समर्पित मेरी कविता, मातृशक्ति को समर्पित। कि आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको कई ऐसी नारियां अपने जीवन में दिखेंगी, आपकी बहन, माँ, आपकी कई दोस्त, पत्नी, कोई भी, आपकी बेटी की कितनी शक्ति है उनमें, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो जैसे उसके पैरों में कोई छाला ही नहीं। कितना जागी है वो, कितना जागी है वो तुम्हें रातों रात सुलाने में, कितना भागी है वो, कितना भागी है वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में, और बिखरती रही ताकि तुम्हें जोड़ सके, और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी माँ का हौसला तोड़ सके। और सुबह से जोड़ा बांधा है, सुबह से जोड़ा बांधा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़ा बांधने का जो जो प्रक्रिया है कि वो अपने सारे सपने अपने आप को समेट के ना, मतलब ऐसे जैसे युद्ध पे कोई जाता है अपने आप को पूरा समेट के अपना सर्वस्व परिवार के लिए
0: जी उनको बांध लिया।
1: बिल्कुल बांध लिया है कि सुबह से जूड़ा बांधा है वो बाल बनाना भूल गई, इतना मुझ में उलझ गई, कहीं आना जाना भूल गई, और बिन काले काजल के बिन उसकी आंखें काली है, और चूल्हे में तपी है वो तभी आज मनी दिवाली है, और किया ही क्या है मेरे लिए तुम तनक कर बोल गए, वो उस मंदिर की देवी है जहाँ तुम दीप जलाना भूल गए।
0: सच में रोने का मन है, सच में इतनी अनुभूति परख जो है आपकी रचना के, आपने सच में बिल्कुल स्पर्श किया है, छू लिया है माँ के दिल को, आपने सच में छू लिया है, और सच में ऐसा अनुभव, ऐसा ऐसी प्रेरणा जो है वो सच में दिल से ही आती है और दिल से ही जागती है और दिल से ही बोलती है। बहुत सुरीली सजीली रचना आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाई। आप बात कर रही थी कि संगीत और साहित्य से आपके परिवार का रिश्ता रहा है, तो कहीं आप भी संगीत से जुड़ी कुछ गाती हैं? और
1: हाँ जी, मेरे परदादा जी के पास सारे वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो पिताजी ने मुझे बताया, हमेशा बताते थे वो, कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड जिसको कहते हैं हम लोग, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कला साहित्य प्रकृति प्रभु हमारी संस्कृति हमारी ईश्वर में भक्ति जिसको कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, तो जो एक सही इंसान जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल जैसे कहा जाता है कुछ इमोशनल लोगों को
0: आजकल, ये मुझे
1: हाँ जी बिल्कुल है हर आर्टिस्ट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो भावनाओं से भरा हुआ है, और जो भावना से भरा नहीं है वो पत्थर है। तो सही इंसान होने की पहली शर्त है कि आप में भावनाएं हो, आप उसको कितना ही मैनिपुलेट कर दें आज के समय में, लेकिन भावनाएं आपको ईश्वर प्रदत्त है, वो आपकी कला ईश्वर प्रदत्त है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूल्स हैं, तो बोलते ना कि भोले का भगवान होता है, तो भगवान सबसे पहले भोले लोगों को ही मिलने वाले हैं।
0: बहुत सही बात कही आपने। और कौन से गीत संगीत सुनते हैं आजकल जो चल रहे हैं, पुराने वाले जो गीत हैं उसमें आप?
1: सुकून तो पुराने वाले ही जो बोल है, जो हाँ जी बिल्कुल रूट जिसको बोलते हैं, कि जड़े तो वही है हमारी, शास्त्रीय संगीत में मुझे पसंद है। बाकी पुराने जितने भी सारे गाने हैं हमारे, किशोरदा की आवाज ले लीजिए आप, लता जी ले लीजिए, तो वो तो रफी साहब, तो इनका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है।
0: तो कभी कभी गुनगुनाती होंगी सारे गाने, थोड़ी सी दो लाइन आप गा के सुनाएंगे हमें?
1: मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छा नहीं सकती हूँ।
0: नहीं, वो तो सबको लगता है, पर वो दो लाइनें जो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि आपकी पसंद संगीत में कैसी है, वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
1: कोशिश करती हूँ मैं
0: जी,
1: और मैं बहुत इसको गुनगुनाती हूँ जब भी मन होता है मेरा।
0: हाँ,
1: कोई किसी की मुस्कुराहटो पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले, उधर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
0: बहुत खूब जीने का जो दर्शन है, जीने का जो कला है, वो इस गीत के माध्यम से है, और इसीलिए आप एक अच्छी रचनाकार हैं, कवयित्री हैं, और संवेदनशील हैं प्रकृति को और उसके आसपास, जहां इन पांच तत्वों में हम जीते हैं उनको आप सच में स्पर्श करती हैं, हमारी सांसें उनको छूती हैं, और इसीलिए आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो एक रचना चलते चलते और हो जाए तो
1: बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से अपनी ये कविता कई दिलों तक पहुंचा पाऊंगी, और आप ये समझ लीजिए कि ये वो कविता है कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि आप कौन है, ये हर व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो, कि तुम कौन हो, कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो, कि तुम जीवन के अंधेरों को चीरता सा प्रकाश हो, कि तुम ज्ञान से, तुम कर्म से, तुम अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण से और तुम अपने हाथों की लकीरों से कई आगे निकल चुका भाग हो, और तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत, तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, सिर्फ जौहरी ही समझेगा तुम्हारी कीमत। और सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निज फल की इच्छा त्याग, सिर्फ कर्म ही करते रहना, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा कर्म है, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, कर्म करते रहना।
0: अद्भुत अनुपम
1: सर, धन्यवाद जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत प्रेरणाप्रद है आपकी ये रचना, और सच में सारी रचनाएं और सारी बातचीत भी सुनने वाले का उत्साह, हौसला और ज्ञान में, उसके सुजान में वृद्धि करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में, यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना चाहें तो आपका वेलकम है।
1: बस यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं, हमें सबके लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक कविता ऐसे ही मैंने लिख दी थी, आधी आधी सी याद है मुझे, कि तुम समंदर से भी गर्जा मिलो। सो ऐसा था कि आप अपनी प्योरिटी मत छोड़िए, आप अपनी वास्तविकता मत छोड़िए, कि कितना धुआं धुआं, कि कितना धुआं धुआं, इस धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम, इतने धुएं धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। और समंदर से भी अगर जा मिलो, समंदर से भी यदि जा मिलो, तो भी नदी की पावन मुस्कान रहना तुम। और दिखावट बनावट छलावट वाली इस दुनिया में तुम वो बनना कि एक आदमी तुमसे हंसकर गले मिल सके, एक आदमी तुमसे गले मिलकर रो सके, कम से कम इतने तो इंसान रहना तुम, इतने तो इंसान रहना तुम। ऐसी एक कविता है मेरी,
0: बहुत बहुत
1: मुझे याद आ गई,
0: बहुत ही मानवीय धरातल को संभालती ये रचना है। और सच में हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बेबाक बेलाग बेलौंस किसी से मानवीय धरातल पर गले मिल सकें, हक कर सकें उसे, और
1: जी,
0: अपने
1: जी।
0: सुख दुख को शेयर कर सकें। तभी तो मानव मानव के लिए है, और तभी ये संसार है, ये दुनिया है और ये कायनात है।
1: बिल्कुल जी, जी।
0: बहुत अच्छा लगा। सोनम उपाध्याय नौमी हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। हम तो बीच में बताना ही भूल गए कि हमारे श्रोता क्या सुन रहे हैं, किस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सोनम जी आपका,
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इस खूबसूरत बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान रही सोनम उपाध्याय नौमी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ। एक जमाना था बहुत बहुत बहुत युग पहले, जब हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच अपार्थेड से भी कट्टर सेग्रीगेशन था। मिलना नामुमकिन, इजाजत के बिना घर से निकलना नियायती मुश्किल, और इसीलिए बाय चांस भी ओपोजिट जेंडर की नाक हाथ कान आँख कुछ भी दिख जाए मोहब्बत अनिवार्य थी। केस इन पॉइंट, मेरे महबूब तुम्हें मोहब्बत की कसम, सर से बुरखे में ढकी लड़की की आंखें और तेरी मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, वॉज क्वाइट इनफ फॉर लाइफ लॉन्ग इश्मुश। उसके बाद जमाना बदला, सिनेमा बदला, थोड़े ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और बढ़े। अमेरिका से चाचा जी कुछ इंग्लिश मूवीज के वीएचएस टेप्स जो लाते थे, ग्रीस से लेके घोस्ट से लेके टॉप गन तक सब देख ली, और दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। तब तक माँ बाप हल्के प्रोग्रेसिव टाइप हो गए थे, या उनको होना पड़ गया था। तो सडनली इट वॉज ओके टू मीट अ फ्रेंड ऑफ द ऑपोजिट सेक्स फॉर कॉफी, स्वीट कॉर्न सूप 1/2 या सड़क वाली चाउमीन वगैरह वगैरह। पर तब भी ये तो तय था, ग्रुप में मिल रहे हो तो अलग बात है, मिक्स जेंडर फ्रेंडशिप काफी नॉर्मल सी बात हो गई थी तब तक। बट अकेले वन ऑन वन अगर मिल रहे हो तो फिर बेबी लोग बाबा लोग उस मुलाकात को कुछ खास मुलाकात कहेंगे। हमारे आज का एपिसोड है मुलाकात किससे कब कहां, ये बताने आ रहे हैं मेरे आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के खजाने से मेरे कोहिनूर। सुनते हैं हमारा आज का पहला नगमा संतोष जी और सीमा जी से।

लता मंगेशकर, खयाम, नक्श लैलपुरी, है ना क्लासिक बुलसाई, रोमांटिक रेट्रो हिट भी, मासूम भी है, विकेट भी है, मेलोडियस भी है, अपबीट भी है, जेंटल भी है, नॉटी भी है। उफ, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, बिना खुद से झूठ बोले, बिना वो सबसे अच्छा बच्चा वाला हेलो स्विच ऑन करके, बिल्कुल बिना किसी झूठ के, ये बताइए वो कौन सा चेहरा है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे पहले मिलना चाहेंगे, इस जिंदगी के भागम भाग से दूर भाग के। ओए, हैंग ऑन, आई डिडंट से शुड मीट, मीट टू मीट, ऑट टू मीट और मस्ट मीट, आई सेड वांट टू मीट। मुझे भी पता है, जैसे ही हम अपने बायो बबल यानी कि इस मास से बिल्कुल दूर हट जाएंगे, अनिवार्य है हमें इन सब से मिलना, चाहे फिर वो क्यों ना हो, काम की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर, आउट ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कंपल्शन। पर वो है कौन जिनसे सबसे पहले आप मिलना चाहोगे, हो सकता है मिलना मुमकिन भी ना हो या डेफर करनी पड़े दूसरी प्रायोरिटीज के आगे, पर दिल में कौन सा चेहरा है ये तो बताइए। आइए सुनते हैं अगला गीत, जय सरकार और पूर्णा की मधुर आवाज।

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चलो ड्राइव ना सही, एक फ्लाइट ही सही। अगर एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट की दूरी पे भी हो तो हम मिलने का पूरा प्रयास करते हैं। पॉइंट ये है, अगर मिलना मुनासिब है तो अधिकतर लोग वो एफर्ट जरूर करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर टाइम लाइक दिस व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड बाय आवर ओन मोर्टैलिटी, वी विल डेफिनेटली गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू मीट द वन वी लव।

सुना रहे थे आपको राहुल और गायत्री अपनी मधुर आवाज में। कीजिए कीजिए, मिस कीजिए उन्हें जिनसे मिलने की इच्छा है पर क्षमता नहीं। क्या आप उसी सोच शंका शको शुभा में घुसे हुए हैं आप कि तब मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उनकी जिंदगी कहीं दूर और मेरी कहीं और। वैसे तो बातचीत हालचाल पूछना सब होता ही है दूर से, हैप्पी बर्थडे से हैप्पी दिवाली तक, कभी स्टिकर वाली विश तो कभी मोटिवेशनल फॉरवर्ड। फेसबुक से तो सब पता चल ही जाता है कि उधर सब ठीक ठाक है, उनके हाल अच्छे हैं, खुश हैं, मामला अंडर कंट्रोल है। तो फिर आप क्यों अंडर कंट्रोल है उस मुलाकात के लिए? वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, होम स्कूलिंग, न्यूज फीड, ऑनलाइन चैलेंजेस, कुकिंग, क्लीनिंग, 50 मिनट्स वर्कआउट, ईट रिपीट, म्यूजिक एप्स, वेब सीरीज, मूवीज, बिंजिंग, गेमिंग एप्स के बीच में भी उस मुलाकात का ख्याल आता है। सुनाने आ रहे हैं हमारा ये अगला गाना श्रीपद और विद्या अपनी सुरीली आवाज।

हाँ, ख्याली पुलाव तो पक्के बिरयानी बन चुकी है। मन है कि जा बसा है अनजान के नगर में, कुछ खोजता है पागल खोए हुए डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। लिखा शैलेंद्र ने, लेकिन कोस आप रहे हैं कि हाउ डज दिस पोएट लिरिसिस्ट डू इट एवरी टाइम, रीच इनटू योर हार्ट एंड क्रश योर इमोशंस इनटू इंक। सुनते हैं हमारा आज का ये आखिरी गाना कविता और अजय जी से।

प्रसाद का आज आया कैसे। ऐसा नहीं कि सबका सीक्रेट है या सबके मन में है, पर यह हकीकत है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हमारे जहन में कई बार ऐसी यादें, ऐसी बातें और ऐसे लोग आते हैं जो उन उम्र नहीं आते, नीचे कहीं मन की गहराई में दबे रहते हैं। और जब हम इतने मसरूफ होते हैं, हर वक्त लोगों की भीड़ में नहीं होते, क्यूबिकल से कैबिन, कैबिन से कॉफी मशीन, लिफ्ट से पार्किंग लॉट, पार्किंग से ट्रैफिक, इन सब एक्टिविटीज ट्रैप में नहीं होते, तो हम निहत्ते होते हैं खुद ही के सामने। कल की मुलाकात का वादा करते हुए आज इजाजत लेती हूँ मैं आपसे रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से, मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी एंड जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो मिनाली जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
2: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा। लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें पूरा करने का एक हौसला दिया, और दोनों शहरों ने मेरी

0: जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है।
1: जी जी
0: अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करो तो मुझे वहाँ का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहाँ का
1: जी
0: बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह हर प्रांत में कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
1: जी, लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान, और
0: बहुत
1: एक वहाँ
0: बहुत
1: के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
0: बिल्कुल।
1: जहाँ के
0: नहीं,
1: समोसे बड़े फेमस हैं।
0: लखनऊ में तीन चार चीजें जो खान पान जिसको आपने अभी मेंशन किया है,
1: जी
0: मतलब चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है,
1: जी
0: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी पिछले 50 सालों से चल
1: जी
0: रही है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
1: जी
0: सुना
1: हाँ,
0: है कि नहीं,
1: सुना है, बहुत
0: तो
1: सुना
0: ये लखनऊ की मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में,
1: है।
0: तो इसका
1: जी
0: मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और
1: जी
0: बिरयानी,
1: बिल्कुल।
0: टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं, तो
1: जी
0: इसके लिए तो मैं आपको मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं।
1: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा आपको?
0: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ पे यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है बिकॉज सही बात बोलूँ तो मसाले यहाँ का मीडियम, यहाँ का जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट मटन चिकन कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा, जो हम मसालों का जो फ्लेवर जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा।
1: बहुत अंतर दिखेगा। जी जी
0: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा, इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
1: जी बिल्कुल, क्योंकि
0: मुझे
1: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद होता
0: अलग
1: है,
0: रहता है। नो
1: पर
0: डाउट
1: जहां
0: नो
1: पर
0: डाउट
1: हम बेस्ड होते हैं, वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
0: अलग ही
1: वो
0: है।
1: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी, हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मीनाली जी के, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का इंटरेक्शन रहता है लोगों से
0: जी।
1: और लोगों को बीच में अपने टीम को कैसे विश्वास दिलाना, कैसे टीम वर्क सिखाना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे लिए
0: जी।
1: एयरलाइंस तो आप जानते हैं कि बेहद ही एक चुनौतीपूर्ण जगह रहता है हमेशा,
0: बिल्कुल,
1: जहां हर दिन नई नई परिस्थितियां आती थी। लेकिन हम एचआर के होके बहुत डायरेक्ट नहीं आते थे बट हमारा लोगों से संपर्क रहता था जो एयर होस्टेसेस थी या कस्टमर्स रिलेशंस थी, तो वहां भी मैंने बहुत डिसिप्लिन और समय का टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान करना, कैसे कैसे टीम वर्क में लोगों के साथ रहना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी।
0: तो मीनाली जी, जैसे आजकल अक्सर न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं कि फलानी एयरलाइंस में या फलानी फ्लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, उनको लैंड करना पड़ा, या जो एक बहुत ही दुखद भरी फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से चली थी वो क्रैश हो गई थी, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत आते हैं, तो इसके साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपका बीइंग एन एचआर लीडर क्या इसमें आपका इंटरेक्शन रहता था?
1: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस मेरे वक्त पे ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था बट हमारे एयरलाइंस में उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं। यस, एक टेक ओवर हुआ था, एक हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ बाय जेट एयरवेज, तो फिर वो जो पूरा ऑन बोर्ड चेंज होना पड़ा लोगों को, हमने फिर से रिक्रूट किया, फिर से उनको हमने डिपार्टमेंट वाइज उनको हमने प्लेस किया, वो काम मेरा पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा ही रोल उसमें ज्यादा था
0: जी।
1: इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानती थी और लोगों को मैं किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करके प्लेस करूं, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाह भी बराबर रहे या उनके रिक्वायरमेंट्स या उनके वो, मैं, मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था
0: जी,
1: तो
0: जी, जी।
1: वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा। अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे बट दैट वाज
0: दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ,
1: या उतना कंसिडर नहीं किया हमने।
0: जी जी जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं और हम वापस इन किस्सों में आएंगे, इससे पहले हम

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा?
1: सच कहूँ तो ये डिसीशन, ये निर्णय आसान नहीं था। एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के जीने के बाद
0: 13 वर्ष
1: अचानक,
0: आप बता रही हैं।
1: यस
0: जी,
1: यस
0: जी।
1: जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था।
0: जी
1: तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था मुझे। शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर का काम ही इतना है कि वो टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था। तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया। बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए, काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
0: बिल्कुल।
1: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है, मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम
0: बिल्कुल
1: अंजाम दे के ही रहो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा
0: एक्चुअली
1: चूंकि
0: डबल
1: लखनऊ से,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी अगर हम प्रोफेशन
1: टोटली
0: में हैं तो।
1: टोटली
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो फिर बच्चे छोटे, एंड उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया, तो ही वॉज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 years उनको बाहर रहना पड़ा। ही वॉज इन दुबई।
0: अच्छा।
1: तो फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग मेरी सासू माँ थी जो मेरे
0: जी
1: साथ
0: जी
1: रहती थी,
0: जी
1: तो फिर उनको देखना, और मेरे बच्चे छोटे ही थे, मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी,
0: जी
1: तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है,
0: जी
1: तो मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे। तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप कुछ महीने चली, बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया। और फिर आप जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रह के जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था। तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई,
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
0: फक्र
1: है कि
0: है।
1: मैं
0: जी जी जी
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली जो
1: समझ।
0: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
1: यस
0: नहीं
1: यस
0: होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: बड़ी
0: एक
1: बात कही
0: ऐसा
1: है
0: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सब की
1: जी।
0: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे।
1: पूरे पूरे पूरे
0: जी, तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
1: देखिए, मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं
0: जी
1: है कि मैं नहीं गाती थी। मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल
0: क्या
1: और
0: बात
1: ऐसे
0: है,
1: करके
0: क्या बात है।
1: तो बोला जाता था। तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी। कोविड के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला। वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, यूएस में थी,
0: जी।
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में। बट वो धीरे धीरे वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
0: जी।
1: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले। तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया। मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
0: जी
1: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया, और फिर जब उस सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
0: देयर वाज
1: किया,
0: नो लुकिंग बैक।
1: देयर वाज नो लुकिंग बैक, अब तक चल ही रहा है। मतलब वो
0: जी
1: अब उसके वजह से मैं, मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया, एंड प्रॉबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना, और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि
0: जी
1: यहाँ पे
0: जी
1: भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है, मतलब आई हैव सो मेनी शोज
0: वाह
1: कमिंग अप,
0: वाह
1: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
0: जी
1: बट
0: जी
1: लाइव
0: जी
1: शोज विद म्यूजिशियंस करना ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है।
0: जी
1: ये
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: बहुत सारे, मैं जनरली लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ, बट अदरवाइज मैं मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ, मतलब
0: जी
1: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
0: बहुत खूब
1: तो
0: बहुत खूब
1: यही चल रहा है बस अभी।
0: जी। तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं।

0: मिनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफ़ी यूज़ किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी जी जी
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना। फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी जी
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो
1: लेट
0: आपने
1: नहीं
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था।
0: गाना था?
1: जी,
0: हाँ जी।
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन मुझे दो बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा। फिर
0: जी
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500+ लोग थे,
0: वाह।
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अपलॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गई।
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार की
1: बिल्कुल,
0: असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना हो तो आप
1: हाँ हाँ
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: मैं तो बोलूंगी, देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है
0: जी।
1: तो वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने
1: हाँ
0: जाना।
1: ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें, मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया क्या गुजरेगा। वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं,
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन
0: नहीं।
1: में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल। किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने
1: हम
0: के लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: लेकिन फिर भी ये दो गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है, आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता है,
0: जी।
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊं अपने पैशन को निभा पाऊं इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: इच्छा।
0: देखा जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह, अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी।
1: करके।
0: सो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना। और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान, जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।

तू है कभी जवान कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे दिल दीवाने। तू है कभी जवान कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे

जी हाँ, ये सलाह दे रहे थे हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा पंजाब से। आपकी आवाज, आपकी पहचान और इस सलाह के बाद हवा क्या कहती है, हवा का रुख क्या है, आइए ये भी जान देते हैं। आपकी आवाज में, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हवाओं की बातें हवाओं से बातें। जी हाँ, हवाओं की बातें हवाओं से बातें बातें कर रहे हैं आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और तेरी आंखों में क्या है वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आवाज जगदीश अरोड़ा की।

इसमें मेरा कसूर क्या है सनम? आपने सुना हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा जी को। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम।

आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगंज मंडी से, डिजिटल वॉइस वर्ड के जयपुर रेडियो वर्ड से आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा के कुछ हटके नए गीत।

0: डीलर वॉइस वर्ल्ड के जब रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार रहे जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ से। आपको जगदीश जी के गीत कैसे लगे हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो शंभू।